ओमेगा हर्ट्स पर ए है तुहां सारें दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला जी श्रोताओं कन तुहां सारे कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कन्ना।

रेडियो गुंजन धर्मशाला गूंज अपने बंदी।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये तुहा सारे दा अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला कनेश्वरों तुहा सारे अपने पसंदीदा कार्यक्रम सुना दे जिसका नाम है माटी दी महक। सुन दे कार्यक्रम दा अगला गीत।

अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला कनिष्ठो तो हाँ सारे इस कार्यक्रम सुन दे माटी दी महक तो सुन दे ना कार्यक्रम दा अगला गीत तो हाँ सारे इन बनी रिया कने सुन दे रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला गूंज अपने बंदी।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ए तोहां सारिया दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला जी श्रोताओं कने तोहां सारे कार्यक्रम सुना दे थे माटी दी महका। आज दे कार्यक्रम च बस इतना ही। तोहां सारे ए बनी रिया सुन दे रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।
1: हर घर

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: सचू ने
2: 5 YouTube वीडियो को लाइक करके 5 लोगों को स्क्रीनशॉट भेजने से पर वीडियो 500 रुपए अर्न करे।
1: क्या बात कर रहा है?
2: हाँ देख,
1: तुझे क्या लगता है ये जेन्यून है?
2: अरे हमें कहाँ पैसे देने हैं, ट्राई करके देखते हैं ना। ला देख। अरे हाँ यार, मुझे 500 रुपए मिल गए, इटमीन्स ये जेन्यून है।
1: अरे अब तो मुझे भी ये करना है।
2: 20,000 रुपए में प्राइम मेंबरशिप लेने से 50,000 तक अर्न कर सकते हैं।
3: क्या बात है यार।
4: अरे ठहरो, ये क्या करने जा रहे हो?
2: ऑनलाइन टास्क से पैसे कमा रहे।
3: अननोन लिंक पर क्लिक करके पैसे देकर ऐसा नहीं करना चाहिए। SMS, WhatsApp, ईमेल या टेलीग्राम पर आने वाले किसी भी अननोन लिंक को क्लिक ना करें। कोई भी अजनबी अगर आपको ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करने के लिए कहें तो उसे बिल्कुल भी डाउनलोड ना करें। ऑनलाइन टास्क के जरिए ज्यादा पैसा कमाने के लालच देने वाले विज्ञापनों से दूर रहें। सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बिना पूरी जानकारी के कोई भी वित्तीय लेन देन ना करें और उनकी लालच भरी बातों में तो बिल्कुल ना फंसें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में।
5: अब उठो, देश के भाग जगाने हैं हमको, निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं हमको। अब कोना कोना जगमग जगमग होना ही है, अब ठान के मुद्दे स्वच्छता की ज्योत जागी है, स्वच्छता की ज्योत जागी है।

0: पर एचआईवी कभी न दूं।
1: अगर आप मां बनने वाली हैं, तो एचआईवी टेस्ट जरूर करवाएं। सरकारी अस्पताल के आईसीटीसी में सलाह और एचआईवी टेस्ट मुफ्त है और गोपनीय भी। बच्चे को एचआईवी से बचाने के लिए जल्द पता लगाना और वक्त पे दवाई दिलवाना जरूरी है।
2: एक कदम जिंदगी की ओर।
3: जितनी होशियारी करनी है कर लो, जितनी चालाकी करनी है कर लो, जितनी बेईमानी करनी है कर लो, जितनी फरेबी चाल चलनी है चल लो, लेकिन याद रखना जब तुम्हारा कर्म तुम्हारे पास लौट कर आए तो उस समय हैरान मत होना, उस समय परेशान मत होना, उस समय घबराना मत, क्योंकि जो आपने किया है अगर छल किया है, कपट किया है, किसी के साथ गलत व्यवहार किया है, तो वो कई गुना होकर आपके पास जब लौटेगा उस समय आश्चर्य मत करना, क्योंकि कर्म की अदालत में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। जैसा किया है वैसा भोगना ही पड़ेगा। कर्म के सिद्धांत को कोई बदल नहीं सकता। जय बिहारी जी की।

0: अरे भैया ये आप सबने हेलमेट क्यों पहना है? ये तो बाइक वाला हेलमेट है ना।
1: अब आप नहीं पहन रहे तो सोचा हम ही पहन लेते हैं।
2: असलियत में हेलमेट किसको शोभा देता है ये तो सबको पता है। बाइक चलाते वक्त सर बचाएं, हेलमेट पहनें। वेयर अ हेलमेट ऑलवेज बिकॉज हेलमेट सेव्स।
3: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: सुबह से मुंह फुला के घूम रही है ये।
6: मेरी बीवी को पता चल गया मैं किसी और से प्यार करता हूँ।
5: हैं? किससे?
6: वो मुझे भी नहीं पता, वो बस इसे ही पता है, रात को सपने में देखा था ना।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

91.2 FM पर यह है आप सभी का अपना मन पसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

तो श्रोतो, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह है आप सभी का अपना मन पसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

91.2 MHz पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। गीत सुहाने नए पुराने, तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्म शाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

91.2 MHz पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ, गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 FM पर यह आप सभी का अपना मन पसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

91.2 MHz पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। गीत सुहाने नए पुराने, तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओ, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: सचुन है।
2: पांच YouTube वीडियो को लाइक करके पांच लोगों को स्क्रीनशॉट भेजने से पर वीडियो 500 रुपए अर्न करे।
1: क्या बात कर रहा
2: है? हाँ देख,
1: तुझे क्या लगता है ये जेन्यून है?
2: अरे हमें कहाँ पैसे देने हैं, ट्राई करके देखते हैं ना। ला देख। अरे हाँ यार, मुझे 500 रुपए मिल गए, इतने से ये जेन्यून है।
1: अरे अब तो मुझे भी ये करना है।
2: 20,000 रुपए में प्राइम मेंबरशिप लेने से 50,000 तक अर्न कर सकते हैं।
3: क्या बात है यार।
4: अरे ठहरो, ये क्या करने जा रहे हो?
2: ऑनलाइन टास्क से पैसे कमा रहे हैं।
4: अननोन लिंक पर क्लिक करके पैसे देकर ऐसा नहीं करना चाहिए। SMS, WhatsApp, ईमेल या टेलीग्राम पर आने वाले किसी भी अननोन लिंक को क्लिक ना करें। कोई भी अजनबी अगर आपको ऑनलाइन ऐप्स डाउनलोड करने के लिए कहें तो उसे बिल्कुल भी डाउनलोड ना करें। ऑनलाइन टास्क के जरिए ज्यादा पैसा कमाने के लालच देने वाले विज्ञापनों से दूर रहें। सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बिना पूरी जानकारी के कोई भी वित्तीय लेन देन ना करें और उनकी लालच भरी बातों में तो बिल्कुल ना फंसें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में।
5: अब उठो, देश के भाग जगाने हैं आपको, निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं आपको। अब गोना गोना जगमग जगमग होना ही है, अब ठान के स्वच्छता की ज्योत जागी रहे, स्वच्छता की ज्योत जागी रहे।

0: पर एचआईवी कभी न दूं। अगर आप मां बनने वाली हैं, तो एचआईवी टेस्ट जरूर करवाएं। सरकारी अस्पताल के आईसीटीसी में सलाह और एचआईवी टेस्ट मुफ्त है और गोपनीय भी। बच्चे को एचआईवी से बचाने के लिए जल्द पता लगाना और वक्त पे दवाई दिलवाना जरूरी है।
1: एक कदम जिंदगी की ओर।
2: जितनी होशियारी करनी है कर लो, जितनी चालाकी करनी है कर लो, जितनी बेईमानी करनी है कर लो, जितनी फरेबी चाल चलनी है चल लो, लेकिन याद रखना जब तुम्हारा कर्म तुम्हारे पास लौट कर आए तो उस समय हैरान मत होना, उस समय परेशान मत होना, उस समय घबराना मत, क्योंकि जो आपने किया है अगर छल किया है, कपट किया है, किसी के साथ गलत व्यवहार किया है, तो वो कई गुना होकर आपके पास जब लौटेगा उस समय आश्चर्य मत करना, क्योंकि कर्म की अदालत में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। जैसा किया है वैसा भोगना ही पड़ेगा। कर्म के सिद्धांत को कोई बदल नहीं सकता। जय बिहारी जी के।

0: अरे भैया ये आप सबने हेलमेट क्यों पहना है? ये तो बाइक वाला हेलमेट है ना।
1: अब आप नहीं पहन रहे तो सोचा हम ही पहन लेते हैं।
2: असलियत में हेलमेट किसको शोभा देता है ये तो सबको पता है। बाइक चलाते वक्त सर बचाएं, हेलमेट पहनें। Wear a helmet always, because helmet saves.
3: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है। पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: सुबह से मुंह फुला के घूम रही है ये।
6: मेरी बीवी को पता चल गया मैं किसी और से प्यार करता हूँ।
5: किससे?
6: वो मुझे भी नहीं पता, वो बस इसे ही पता है। रात को सपने में देखा था ना।

फ्रीक्वेंसी 91.2 पर श्रोताओं, इस समय आप जुड़ चुके हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। इस प्यारी सी सुबह में सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं हाजिर हो चुकी है आपकी दोस्त आपकी सेवा में लेकर ढेर सारी जानकारियां और प्यारे प्यारे गीत। तो श्रोताओं कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कार्यक्रम के इस प्यारे से गीत के साथ। तो आप बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। गीत के बाद हम फिर से मिलेंगे और ढेर सारी जानकारियाँ और भी आपके साथ साझा करेंगे।

शोध और इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से हम वापस आ चुके हैं आपकी सेवा में लेकर बहुत सारी जानकारियाँ। तो इन जानकारियों में आज की विचार की ओर थोड़ा सा रुख करें तो श्रोताओं कहते हैं, फूलों की खुशबू केवल वायु की दिशा में फैलती है लेकिन अच्छे व्यक्तित्व की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात कही है। जो फूल अपनी खुशबू देता है तो चारों ओर खुशबू ही खुशबू फैल जाती है। कहीं हम बैठे हों तो अचानक से खुशबू आती है और उस खुशबू से ही हम पहचान लेते हैं कि कौन से फूल की खुशबू है। उसी तरह से हमें जीवन में अपना अच्छा व्यक्तित्व रखना चाहिए। जब हमारा व्यक्तित्व अच्छा हो, व्यवहार अच्छा हो, बोलचाल अच्छा हो, तो हर व्यक्ति जो है तारीफ़ करता है और कहता है, नहीं, इंसान बहुत अच्छा है। और कहते हैं, कर्म ऐसे कीजिए कि जाने के बाद भी हर कोई याद करे। तो जीवन में आए हैं तो हर कुछ अच्छा करते जाए और अच्छे कर्मों का फल भी ऊपर वाला अच्छा ही देता है। ज़िंदगी का सफ़र बहुत लंबा है श्रोताओं, तो हर किसी की मदद करते जाए। बहुत कुछ होता है जीवन में जिसे कि हम अपने व्यक्तित्व में निखार ला सकते हैं, व्यक्तित्व को संवार सकते हैं। उसके लिए ईमानदारी और अच्छा बोलचाल, हर किसी की मदद करना, हर चीज़ शामिल होती है। तो जब आपको समय मिले ज़रूर किसी की मदद करें। हम किसी के काम आ सके, इससे बड़ा काम और क्या हो सकता है। फिलहाल इस समय हमें भी अपने दोस्तों के काम आना है और अपने दोस्तों तक, अपने श्रोताओं तक पहुंचाना है कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा गीत। तो आइए मिलकर एंजॉय करते हैं कार्यक्रम के इस प्यारे से गीत को।

जी हाँ श्रोताओ, बिल्कुल सही बात गीत में कही है कि ये पल बीत गए तो हम बरसों याद करेंगे। कोई भी पल हो उसे हम लगभग याद करते ही हैं, और इन पलों से याद आ गया और बदलते मौसम से थोड़ी सी बात हमें भी याद आ गई कि कहते हैं अजीब दस्तूर है इंसान की फितरत का। कल तक हम लोग गर्मियों के मौसम में धूप को कोसा करते थे, लेकिन आज हमें बारिश पर भी एतराज़ हो रहा है। सही बात है ना श्रोताओ, इसी तरह से हम लोगों के साथ बीतता है। जब मौसम सर्दियों का हो तो हम सर्दियों से परेशान हो जाते हैं, मौसम गर्मियों का हो तो हम गर्मी से परेशान हो जाते हैं, और आजकल मौसम बरसात का चल रहा है तो थोड़ा सा एतराज़ हम लोगों को बारिश से भी हो रहा है, क्योंकि बारिश जब बहुत ज़्यादा होती है ना तो कहीं ना कहीं हम सभी परेशान हो जाते हैं, और इस बारिश में बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारी दिक्कतें हम सभी को आती है, पहनने की, खाने पीने की, रहने की, उठने की, चलने की, फिरने की, और ख़ासकर अपने कामकाज पर जाने की भी हमें दिक्कत होती है। तो श्रोताओ, वैसे बदलाव कहते हैं जीवन में बहुत ज़रूरी होता है, और कुदरत का नियम है कि बरसात होती है, गर्मी आती है और सर्दी आती है। खैर, हमें भगवान के दिए हुए इस प्रकृति के नियम को भी निभाना है और रहना तो इसी में ही है। अगर हम चाहें कि आज धूप लग जाए या सर्दी हो जाए तो हमारे कहने से कुछ नहीं होगा, ऊपर वाला जिस हाल में हमें रखता है उसी मौसम का हमें इंजॉय भी करना है और बढ़िया से जीना है, और थोड़ा सा जीने के लिए संगीत भी जीवन में ज़रूरी होता है। तो आइए मिलजुल कर हम लोग इंजॉय करते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो आप जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

0: तो इसी प्यारे से गीत के साथ है कार्यक्रम में समय हो गया है 9:20। तो आइए चलते हैं प्रादेशिक समाचारों की ओर।
1: दिवसीय स्मारक कार्यक्रम आज से शुरू। कारगिल युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर जवानों को दी जाएगी श्रद्धांजलि। और चंबा का अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला कल से होगा शुरू, राज्यपाल करेंगे शुभारम्भ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले में सख्त कानून लाने को लेकर जारी किए गए अपने वीडियो संदेश पर मिले लोगों के सुझावों और प्रतिक्रियाओं के लिए आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए नया विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में अगले सप्ताह पेश किया जाएगा। इस विधेयक के मसौदे को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जनता के साथ उनका रिश्ता विश्वास और सहयोग पर आधारित है और ये जुड़ाव आगे भी लगातार मजबूत होता रहेगा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के इंस्टाग्राम वीडियो ने नया रिकॉर्ड बनाया है। इस वीडियो को 24 घंटे में 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा गया है। इसके साथ ही ये दुनिया में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो बन गया है। इससे पहले ये रिकॉर्ड 30 करोड़ व्यूज का था। केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में अहम कदम है। साथ ही पेपर लीक के मामले को लेकर विवादों में रही एजेंसी में किए जा रहे व्यापक बदलावों का हिस्सा भी है। केंद्र सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों से जुड़ी मांगों को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी CJP के प्रतिनिधिमंडल के साथ आज एक और दौर की बातचीत करेगी। इससे पहले कल भी नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने CJP प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी, जिसके बाद JP नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार को लेकर CJP की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया है। उन्होंने बताया कि CJP ने 3 प्रमुख मांगें रखी हैं और परीक्षा पेपर लीक रोकने के लिए कुछ सुधारों के सुझाव भी दिए हैं।
2: लगभग 2 घंटे चली सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह की बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई।
1: राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा है कि 51 शक्तिपीठ भारत की आध्यात्मिक विरासत और राष्ट्रीय एकता के सशक्त प्रतीक हैं। श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय कटरा में 4 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी शक्ति मीमांसा के शुभारंभ सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि शक्ति केवल आराधना का विषय नहीं बल्कि सृजन, ज्ञान, करुणा, साहस और राष्ट्र चेतना की शाश्वत ऊर्जा है। राज्यपाल ने शक्ति परंपरा के वैज्ञानिक अध्ययन, डिजिटल प्रलेखन और वैश्विक प्रचार प्रसार पर बल दिया। राज्यपाल ने इस अवसर पर युवा पीढ़ी से आधुनिक ज्ञान के साथ साथ अपनी सांस्कृतिक जड़ों और भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ने की भी अपील की। लद्दाख के द्रास में

0: स्थित कारगिल युद्ध स्मारक ऑपरेशन विजय में भारत की विजय की याद में मनाए जाने वाले 27वें कारगिल विजय दिवस के भव्य समारोह की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। 2 दिवसीय स्मारक कार्यक्रम आज से शुरू होंगे, जिसमें 1999 के कारगिल युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों के साहस और सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। आज के कार्यक्रम में लामोचन व्यू पॉइंट पर युद्ध स्मरण, विश्वनाथन स्टेडियम में गौरवमय संस्कृति, विजय भोज और कारगिल युद्ध स्मारक पर शौर्य संध्या समारोह शामिल है, जिसमें पूर्व सैनिक शहीदों के परिजनों, वरिष्ठ सेना अधिकारियों और गणमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल श्रद्धांजलि समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। वे स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री वीर नारियों और वीर माताओं से बातचीत करेंगे और शौर्य विजय यात्रा मोटरसाइकिल रैली को हरी झंडी दिखाएंगे। कारगिल युद्ध स्मारक उन बहादुर सैनिकों के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता को दर्शाता है, जिनके साहस और बलिदान ने देश की संप्रभुता की रक्षा की। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार के युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय के तहत मेरा युवा भारत योजना के माध्यम से युवाओं के विकास, नेतृत्व क्षमता और राष्ट्र निर्माण के लिए एक डिजिटल और भौतिक मंच प्रदान किया जा रहा है। ऊना में मेरा युवा भारत की जिला सलाहकार समिति की बैठक में जिले के ग्रामीण युवाओं में नेतृत्व के गुणों और उनका व्यक्तित्व विकास, साक्षरता, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तिकरण जैसे सामाजिक मुद्दों पर जागरूक करने बारे विस्तार से चर्चा की गई। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे ऊना जिला संवाददाता।
1: ग्रामीण युवाओं के सर्वांगीण विकास और उन्हें राष्ट्र निर्माण में शामिल करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा संचालित मेरा युवा भारत की जिला सलाहकार समिति की बैठक बीते दिन ऊना के अतिरिक्त उपायुक्त ईशान जसवाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उन्होंने बताया कि योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण युवाओं में नेतृत्व के गुणों को विकसित करने के अलावा साक्षरता, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तिकरण जैसे सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता फैलाने और युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। योजना के सभी पात्र युवाओं को पोर्टल पर अपना ऑनलाइन पंजीकरण करवाने बारे भी जानकारी दी गई और वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जिला कार्य योजना पर भी चर्चा की गई। आकाशवाणी के लिए ऊना राजेश शर्मा।
0: चंबा का अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला कल 26 जुलाई से शुरू हो रहा है और प्रशासन ने मेले को लेकर सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता इस मेले का शुभारंभ करेंगे। मक्की की फसल में मिंजर आने की खुशी में प्राचीन काल से ही ये मेला मनाया जाता है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे चंबा जिला संवाददाता।
2: वर्ष भर चंबा जिला के लोगों को मिंजर मेले का इंतजार रहता है और राजकाल से चली आ रही मिंजर मेले की परंपरा का निर्वहन आज भी किया जा रहा है। इस परंपरा को सहेजे रखने के लिए सरकारी व प्रशासनिक स्तर पर किए जाने वाले प्रयास सराहनीय हैं। मेले का मुख्य आकर्षण रहने वाली सांस्कृतिक संध्याओं के दौरान इस वर्ष पार्श्व व पंजाबी गायकों को बुलाने के साथ ही हिमाचली कलाकारों को भी प्राथमिकता के आधार पर मंच उपलब्ध कराया जाएगा। आकाशवाणी के लिए चंबा से विकास ठाकुर।
0: प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादल छाए हुए हैं, जबकि लाहौल स्पीति और चंबा जिले में सुबह से रुक रुक कर हल्की वर्षा हो रही है। प्रदेश में वर्षा के कारण हुए भूस्खलन के चलते 121 सड़क मार्ग अवरुद्ध हैं, जबकि 63 बिजली ट्रांसफार्मर और 179 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हैं। मौसम विभाग ने आज ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी जिलों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने प्रदेश के अन्य स्थानों पर हल्की वर्षा की संभावना भी जताई है। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशनरों को एक माह के भीतर अपना EKYC सत्यापन करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि EKYC की अंतिम तिथि इस वर्ष 28 फरवरी निर्धारित की गई थी, लेकिन विभाग ने अंतिम अवसर के तहत पेंशन लाभार्थियों को एक माह का और समय दिया है। प्रवक्ता ने बताया कि पेंशन लाभार्थी अपना EKYC संबंधित तहसील कल्याण अधिकारी के कार्यालय में करवा सकते हैं। अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर। आज सभी समाचार पत्रों ने लाहौल स्पीति में कल हुए दर्दनाक हादसे से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, टाटा सुमो पर टूटा पहाड़, 13 लोगों की मौत। लाहौल स्पीति के कडूनाला के पास चट्टानों के नीचे दबा वाहन। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, लाहौल में पहाड़ी टूटकर टैक्सी पर गिरी, 6 महीने की बच्ची समेत 13 की मौत। अमर उजाला लिखता है, 2010 बैच के अनुबंध लेक्चरों को नियमित करने के फैसले पर रोक, 4 अक्टूबर 2024 को एकल पीठ ने दिया था निर्णय। पंजाब केसरी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हवाले से लिखता है, शिक्षण संस्थानों में विदेशी भाषाओं के नए पाठ्यक्रम किए जाएंगे शुरू। दिव्य हिमाचल की एक खबर है, हिमकेयर में 300 करोड़ के क्लेम विजिलेंस राडार पर। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए सख्त कानून लाएगी सरकार। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार को लेकर सरकार का रवैया सख्त, पेपर लीक मामले में 47 अधिकारी बर्खास्त। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा, 51 शक्तिपीठ भारत की आध्यात्मिक विरासत व राष्ट्रीय एकता के सशक्त प्रतीक। कारगिल विजय दिवस के 2 दिवसीय स्मारक कार्यक्रम आज से शुरू, कारगिल युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर जवानों को दी जाएगी श्रद्धांजलि। और चंबा का अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला कल से होगा शुरू, राज्यपाल करेंगे शुभारंभ। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ, हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।

शोधाइसी गुंज के साथ कार्यक्रम में हम फिर से आगे बढ़ते हैं और कुछ जानकारियां और आपके लिए हम लेकर आए हैं, उन्हें भी थोड़ा सा आपके साथ साझा करते हैं। श्रोताओ, आज करते हैं आज की यानी 25 जुलाई की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की, महत्वपूर्ण जानकारियों की। तो आज के दिन दुनिया का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म हुआ था और भारत में राष्ट्रीय पद की शपथ की परंपरा और विज्ञान तथा अंतरिक्ष से जुड़ी अन्य बड़ी बातें भी आज के दिन में शामिल हैं, उन्हें भी हमें आप तक पहुंचाना है। तो बात करते हैं शुरुआत की यानी 2018 की। भारत में कोलकाता में हुगली नदी पर पहली बार नौका दौड़ प्रतियोगिता हुई थी। 1978 में दुनिया की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी, जैसे हमने अभी बात की, लुई ब्राउन का ब्रिटेन में जन्म हुआ था और भारत में इसी तकनीक से डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय के प्रयास से कंचन नाम की बच्ची का जन्म हुआ था। 1977 में भारत की राजनीतिक इतिहास में 25 जुलाई से एक नई परंपरा शुरू हुई थी, जब देश के अधिकांश राष्ट्रपतियों नीलम संजीव रेड्डी से लेकर द्रौपदी मुर्मू तक ने इसी तारीख को अपने पद की शपथ ली थी। 2000 की बात करें तो एयर फ्रांस का सुपरसोनिक विमान कार्ड पेरिस में उड़ान भरने से दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसमें 113 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो श्रोता, और भी जानकारियां हम आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में रुकते हैं और आप सभी का करवाते हैं मनोरंजन कार्यक्रम के इस अगले प्यारे से गीत के साथ। तो आप जुड़े रहिए रेडियो।

चलो, इस प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से हमारी वापसी हो चुकी है। तो हम गीत से पहले बात कर रहे थे 25 जुलाई की, यानी आज के दिन की। तो श्रोताओं, आज के दिन जन्मे खास व्यक्तियों की बात करें तो गोविंद नारायण सिंह मध्य प्रदेश के 5वें मुख्यमंत्री थे। उनका जन्म आज के दिन हुआ था 1929 में। सोमनाथ चटर्जी, प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ का जन्म हुआ था, और साथ ही साथ जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्य नेताओं में से भी एक थे। 1922 में श्यामाचरण दुबे भारतीय समाजशास्त्री तथा इतिहासकार थे। उनका जन्म भी आज ही के दिन हुआ था। 1894 में परशुराम चतुर्वेदी, विद्वान शोधकर्मी समीक्षक थे, उनका जन्म भी आज ही के दिन हुआ था। तो शो तो देखिए कितने महान व्यक्तियों के जन्म आज के दिन हुए थे। 1966 की बात करें तो हरी सिम सिमरत कौर बादल, भारत के प्रसिद्ध राजनीतिक, वर्तमान में भारत सरकार के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योग मंत्री का जन्म भी आज ही के दिन हुआ था। आज ही के दिन जन्मे व्यक्तियों की जानकारी तो हमने आपके साथ साझा कर ली। शो तो अब थोड़ी सी बात हम करेंगे जिन खास व्यक्तियों के निधन आज के दिन हुए थे। 1880 में गणेश वासुदेव जोशी, सार्वजनिक कार्यकर्ता थे, उनका निधन आज के दिन हुआ था। और साथ ही साथ 1956 में गोदावरीश मिश्र, उड़ीसा के प्रसिद्ध समाज सुधारक, साहित्यकार और सार्वजनिक कार्यकर्ता रहे थे, उनका निधन भी आज ही के दिन हुआ था। 1981 में मनमोहन सूरी, भारतीय यांत्रिक इंजीनियरिंग इंजीनियर और केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर के निदेशक रहे थे, उनका निधन भी आज ही के दिन हुआ था। और साथ ही साथ 2012 में बीआर इशारा, प्रसिद्ध फिल्म निदेशक, उनका निधन भी आज ही के दिन ही हुआ था। तो श्रोताओं, कुछ महान व्यक्तियों के जन्म आज के दिन हुए थे और कुछ महान व्यक्तियों के निधन भी आज ही के दिन हुए थे। इन्हीं जानकारियों के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा संगीत। तो आप जुड़े रहिए रेडियो।

श्रोताओं, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में फिर से हम वापस आ चुके हैं। और जब गीत चल रहा था तो बहुत सारी बातें, बहुत सारे ख्याल जो है दिमाग में चलते रहते हैं। यूँ ज़िंदगी को लेकर भी बहुत सारी बातें होती हैं और ज़िंदगी बहुत हसीन भी है अगर इसे खुशी के साथ जिया जाए। और थोड़ा सा अगर ज़िंदगी में टेंशन परेशानी हो और हम उन परेशानियों को अपने ऊपर हावी करके जिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो श्रोताओं, ये सोचकर हमें ज़िंदगी के सफ़र में आगे बढ़ना चाहिए कि ज़िंदगी में किसके टेंशन और परेशानियाँ नहीं हैं। आजकल के समय में तो हर कोई टेंशन और परेशानियों से जूझ रहा है और ज़िंदगी खैर लंबी भी है। ज़िंदगी से याद आया एक तजुर्बा, कहते हैं ज़िंदगी का हिसाब लगाया तो हमें मालूम चला मुनाफा खुद के जीने में था और हम दूसरों के लिए ही जीते चले गए। खैर, जो हो गया सो हो गया। श्रोताओं, जो जैसे ऊपर वाले ने लिखा होता है उसी के अनुसार ही हम लोग चलते हैं। खैर, अपनी ज़िंदगी में ऐसा होना था वो हो चुका, तो कहते हैं जो बीत चुका उसके लिए पछतावा करने से अच्छा है कि ज़िंदगी के सफ़र में हम आगे बढ़ें। जो सफ़र हमारा रह चुका है उसे अच्छे से जिए और खुशी से जिए और आगे बढ़ें। ज़िंदगी बहुत हसीन है। श्रोताओं, आप भी प्यार से जिए, खुशी से जिए और अपने काम काज में व्यस्त रहें, अपने जीवन में मस्त रहें, अपने फैमिली की जिम्मेदारियों को उठाएं खुशी खुशी से और देखिए फिर कितना अच्छा लगता है अपने परिवार के साथ रहना, उठना बैठना, चलना फिरना। और यूं कहें तो रिश्तेदारी में भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हमारी होती हैं, उन्हें भी हमें निभाना पड़ता है। इन चीज़ों को निभाते निभाते जो है हमारा ये लंबा सफ़र भी कट जाता है। और वैसे रही बात अपने कार्यक्रम की करें तो अपने प्यारे से मित्रों के साथ मिलते और बातें करते करते कभी ये सफ़र हमारा 2 घंटे का बीत जाता है, हमें भी पता नहीं चलता है। बहुत सारी बातें हम दिल में यूं ही लिए चले जाते हैं कि अगले बार अपने दोस्तों के साथ फिर से मिलेंगे और फिर से साझा करेंगे। तो श्रोताओं, इसी तरह से आपसे मिलना और बातें करना हमें बहुत अच्छे लगता है। तब तो चले जाते हैं हम आपसे मिलने और ढेर सारी जानकारियाँ और बातें साझा करने। तो इन बातों और जानकारियों के साथ साथ थोड़ा सा अपने मूड को और फ्रेश करते हैं और साथ ही साथ अपने श्रोताओं के मूड को भी फ्रेश करने की कोशिश करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, इस दुविधा में होंगे कि किस तरह से फ्रेश किया जाए। जी हाँ श्रोताओं, उसके लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं ना गीत संगीत। तो ये प्यारा सा गीत संगीत आप तक पहुँचाते हैं, तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे रेडियो गुंजन धर्मशाला और प्यारा सा गीत हम लेकर हाजिर हुए थे। अब कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि जानकारियों का पिटारा अभी भी हमारे पास बाकी है। तो श्रोताओ, इन्हीं जानकारियों में अब हम थोड़ी सी बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले के बारे में। हिमाचल प्रदेश में चंबा का प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला सावन महीने के दूसरे रविवार से शुरू होता है और ये धान और मक्का की फसल की खुशी में मनाया जाने वाला एक रंग बिरंगा कृषि और सांस्कृतिक उत्सव है। हम श्रोता सभी जानते हैं लगभग, क्योंकि खैर चंबा हमारे यहाँ से दूर है, लेकिन जाने वाले या फिर जो शौकीन है मेला देखने के, वो ज़रूर अपना योगदान वहाँ पर देते हैं और जाते हैं। जो ऐतिहासिक चौगान मैदान में आयोजित होता है और साथ ही साथ मेले के इतिहास और श्रोता अर्थ की अगर हम बात करेंगे तो मिंजर का अर्थ, मिंजर शब्द मक्के के फूल यानी मिंजरी से बना होता है और साथ ही साथ विजय का प्रतीक है ये मेला। ये मेला जो है लगभग 935 ईसा में त्रिगत कांगड़ा के शासक पर चंबा के राजा की जीत की याद में शुरू हुआ था और साथ ही साथ थोड़ा सा सांस्कृतिक मेल जोल की श्रोताओ अगर हम बात करें तो ये उत्सव आपसी प्रेम और भाईचारे का बड़ा उदाहरण हमारे सामने पेश होता है। और कुछ मुख्य आकर्षक और परंपराओं की बात करें, क्योंकि हमारे जो मेले हैं हमारी संस्कृति और हमारी परंपराओं से जुड़े होते हैं और इसमें झंडा भी फहराया जाता है। ऐतिहासिक चौगान में मेले का आधिकारिक झंडा फहराया जाता है, क्योंकि किसी भी मेले की शुरुआत में थोड़ा सा जो मेले की शुरुआत होती है उसमें झंडा फहराया जाता है, पूजा अर्चना की जाती है। अगर कोई इष्ट देव की कथा उससे जुड़ी हुई होती है तो उन्हें भी याद किया जाता है और लोगों तक, जन जन तक उसे भी पहुंचाया जाता है। अब मिंजर अर्पण की बात करें तो रावी नदी में नारियल फल और मिंजर चढ़ाने का विशेष जो है ये परंपरा रही है और शुरू से होती आ रही है। इसके साथ साथ श्रोता हम थोड़ी सी बात शोभा यात्रा की करें तो परंपरा वाद यंत्रों और स्थानीय वेशभूषा के साथ रंग बिरंगा जुलूस भी इसमें निकाला जाता है और लोक संगीतों को शोधो हम कैसे भूल सकते हैं। हमारी संस्कृति जो है लोक संगीतों से भरी हुई है और भारत में प्रसिद्ध पारंपरिक गीत कुंजरी मल्हार गाए जाते हैं। तो श्रोताओ, हम सभी जानते हैं कि मेले की शुरुआत अगले कल से होने जा रही है, तो दूर दराज के क्षेत्र से जो भी लोग हैं, जैसे हम खुद की बात करें तो धर्मशाला से हम लोग हैं, तो जाने के इच्छुक हमारी धर्मशाला से भी बहुत सारे लोग होंगे जो मिंजर देखने के शौकीन होंगे और कहते हैं कि मेले में अपना योगदान तो ज़रूर देना चाहिए, थोड़ा बहुत ज़रूर जाना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या होता है मेले में, किस तरह का मेला होता है, क्योंकि हमारे यहाँ के ये प्रसिद्ध मेले हैं तो इनमें ज़रूर जाना चाहिए। खैर, अपने बच्चों को भी इस इन मेलों में ले जाना चाहिए, बच्चों को भी हर चीज़ का पता होना चाहिए और मेलों की जानकारियों के साथ साथ थोड़ा सा हम अपनी बातों को भी विराम देते हैं। श्रोताओं को तो कहीं लग रहा है हमारी बातचीत ज़्यादा हो रही है और हमारे गीत थोड़े से रुक चुके हैं, तो गीतों की ओर बढ़ते हैं और सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा गीत। तो आप जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

श्रोताओ, इस समय आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। इस प्यारी सी सुबह में हमारे बहुत सारे श्रोता अभी अभी हमारे साथ जुड़े होंगे, तो उन्हें एक बार फिर से प्यारी सी नमस्ते बोलते हैं और स्वागत करते हैं अपने श्रोताओं का। तो श्रोताओ, हम चंबा मिंजर की बात कर रहे थे गीत से पहले। तो चंबा का मिंजर मेला सबसे लोकप्रिय मेला है, ये पूरे देश में बहुत से लोग इसमें शामिल होते हैं। और ये मेला, जैसे हमने पहले भी बात की, श्रावण महीने के दूसरे रविवार को आयोजित किया जाता है और मेले की घोषणा मिंजर के वितरण से ही शुरू की जाती है, जो पुरुष और महिलाओं के पहने पोशाकों के कुछ हिस्सों पर रेशम की लटक रूप के समान रूप पहनी जाती है। ये लटकन धान और मक्का की कटाई का प्रतीक होती है, जो वर्ष के इस समय के आसपास उनकी स्थिति बनाते हैं। जब ऐतिहासिक चौगान मैदान में चंबा का झंडा फहराया जाता है, तब हफ्ते भर का मेला शुरू हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा सबसे अच्छा पोशाक धारण करने से चंबा शहर बहुत ही रंगीन, बहुत ही प्यारा लगता है। हर जगह से लोग वहां पहुंचते हैं इस मेले का आनंद लेने के लिए, और खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। तो श्रोताओ, ये तो थी हमारी बातें और जानकारियाँ, अभी और भी हम आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल आप तक पहुँचाते हैं कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा गीत। तो आप जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

श्रोताओं, इस समय आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। गुड मॉर्निंग धर्मशाला में थोड़ी सी हम आपको मिंजर मेले की सैर श्रोता करवा रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश का लगभग हर हिस्सा पर्यटकों को पसंद आता है, लेकिन अगर हम हिमाचल प्रदेश के अनोखी संस्कृति की बात करें, अनोखे मेलों की बात करें, खासकर मिंजर मेले की बात करें, तो ये मेले बहुत ही अच्छे होते हैं और बेहतरीन जगह यानी चंबा पर लगते हैं। और ये मेला सावन के जैसे दूसरे रविवार से शुरू होकर सप्ताह भर तक चलते हैं। और पहले भी हमने बात की श्रोता, यहाँ पर मक्के की बलियों को मिंजर कहते हैं और उसी से मेले का नाम पड़ा है। इस मेले की शुरुआत भगवान रघुवीर और लक्ष्मी नारायण को मिंजर भेंट करने से होती है। ये खास मेलों को एक मुस्लिम परिवार रेशम डोरी मोती और तिलों से तैयार करता है। एक हफ्ते बाद इसे चंबा की रवि नदी में बहाया जाता है और मिंजर मेले में पहले दिन भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है और इसे रस्सियों से खींचकर चंबा के ऐतिहासिक चौगान तक लाया जाता है। हिमाचल में लगभग सभी गांवों का अपना एक देवता होता है और इस मेले में करीब 200 देवी देवताओं की पारंपरिक तरीके से पहुंचते हैं। तो श्रोताओं, ये तो थी हमारी जानकारियां भी और भी हम साझा करेंगे। फिलहाल एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो आप जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और सुनते रहिए रेडियो गुंजन को।

फ्रीक्वेंसी 91.2 पर श्रोता इस समय आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं इस वक्त अपने अपने रेडियो सेट पर गुड मॉर्निंग धर्मशाला। गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम में कुछ स्थानीय जानकारियां श्रोता हम आपके लिए लेकर आते हैं हर बार और आज भी लेकर आए हैं, तो आइए उन्हें आपके साथ साझा करते हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखिंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश भवन तथा अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के माध्यम से विदेशी भाषा के पाठ्यक्रम शुरू करने की संभावना तलाशने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आज यहां तक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा है कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम के माध्यम से कुशल युवाओं को विदेशों में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए हर संभव सहयोग प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा है कि युवाओं को आवश्यक भाषा कौशल का ज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य से विदेशी भाषा के नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। ठाकुर सुखिंदर सिंह सुख ने कहा है कि विदेशों में रोजगार प्राप्त कर चुके हिमाचल युवाओं की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी विकसित कर रही है। तो श्रोताओं, ये तो थी हमारी जानकारियाँ। अपनी जानकारियों के साथ साथ हम फिर से बढ़ते हैं गीत संगीत की ओर और करते हैं एंजॉय इस प्यारे से गीत का।

श्रोताओं, इस समय आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम में हम बात कर रहे थे मिंजर मेले की और आपको कहीं ना कहीं सैर भी करवा रहे थे। तो मिंजरों की बात से थोड़ी सी बात और हमें याद आ गई कि मिंजर में हिमाचली पकवान, नाटी और लोक कला के अलावा खेलकूद और शॉपिंग का आनंद लेने भी हम लोग वहाँ पहुँचते हैं और हर दिन अपने आप में खास होता है। और सदियों से चली आ रही श्रोताओं, ये परंपरा को हमें आगे भी बढ़ाना है। वैसे भी जिस जगह पर मेला लगता है वे चौगान भी अपने आप में दिल खुश कर देने वाली जगह है। चंबी का चौगान ऊंची पहाड़ियों पर बना एक शानदार मैदान है। अपनी चारों ओर बर्फ से लदालद हिमालय की चोटियां यहां से नज़र आती है और नीचे रावी नदी अपने पूरे उफान के साथ बहती है और देखने में भी बहुत सुंदर लगती है। तो श्रोताओं, यहां के लोकल जो लोग हैं वो एक कहावत कहते हैं कि चंबे एक दिन औणा करने महीने रैणा। खैर, हमारे बहुत सारे श्रोता जो है पहाड़ी को तो समझते ही है। उनका कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग जो है चंबा एक दिन रहने के लिए आते हैं, लेकिन कई महीने या लगभग एक महीना तो रहकर जाते ही हैं। यहाँ की सुंदर पहाड़ियाँ, खूबसूरत जगह और हरियाली देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है। ये हम लोगों को अपनी ओर भी आकर्षित करती है। और वैसे भी अपने हिमाचल की बात की जाए तो हिमाचल के नज़ारों की अलग ही बातचीत है। तो श्रोताओ, हिमाचल के नज़ारों की हमने आपको सैर करवा दी। अब थोड़ा सा हम बढ़ते हैं संगीत की ओर, एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का

फ्रीक्वेंसी 91.2 पर श्रोता इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम आप सभी के रेडियो सेट पर भी चल रहा है गुड मॉर्निंग धर्मशाला। तो इसी बातों जानकारियों के साथ साथ श्रोता कार्यक्रम में लेते हैं एक अंतराल, अंतराल के ठीक बाद हम आपके साथ मिलेंगे और भी जानकारियां आपके साथ साझा करेंगे।

तो इसी गूंज के साथ हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात हमारी मेलों के ऊपर हो रही थी। सैर हमें हम आपको मेलों की करवा रहे थे, तो मेलों में जाते समय या वक्त, जो वक्त हम वहाँ बिताते हैं उस वक्त की बात करें, तो थोड़ा सा हमें मेलों में भी अपना ध्यान और ख्याल रखना है। खैर, ये मौसम जो होता है अपना ख्याल रखने वाला होता है, और साथ ही मौसम में बारिश का आनंद तो हम खूब लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें सेहत का भी ध्यान रखना पड़ता है, थोड़ा सा हमें चौकन्ना रहना पड़ता है, क्योंकि इस मौसम में हल्की बारिश से हमें ठंड भी लगती है और कई बार फ्लू भी तेज़ी से फैलता है। साथ ही साथ फ्लू के साथ बहुत सारी बातों और परेशानियों से हमें दो चार भी होना पड़ता है, संक्रमण बढ़ जाता है और इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण भी ज़्यादा होता है। और मानसून के मौसम में तापमान और आर्द्रता में बदलाव के कारण जो है वायरस का फैलना आसान हो जाता है। इसमें श्वसन संबंधी समस्या, बुखार, गले में खराश, शरीर में दर्द आदि हो जाती है, और फ्लू एक अच्छे खासे इंसान को भी बिस्तर पर लाकर पटक देता है। तो श्रोता, इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, ख्याल रखना है। बिस्तर में तो हमें बिल्कुल नहीं पड़ना है, क्योंकि भाई हमें देखने हैं मिंजर मेले, और मिंजर मेले देखने हैं तो उसके लिए रहना पड़ेगा स्वस्थ। जब रहेंगे स्वस्थ तो करेंगे हर चीज़ का इंजॉय, खूब सारी शॉपिंग करेंगे, खूब सारी चाट पकौड़ी भी मेले में खाएंगे और झूले भी झूलेंगे। इसके साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आनंद हम लेंगे, और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ है श्रोताओं, मुझे भी याद आ गया कि इस समय हमें भी अपने श्रोताओं को सुनवाना है एक और प्यारा सा गीत। तो बिल्कुल देरी ना करते हुए मिंजर के साथ साथ हम रेडियो मिंजर के गीतों का भी आनंद ले लेते हैं। तो आइए सुनते हैं मिलकर इस प्यारे से गीत को।

श्रोताओ, इस समय आप बने हुए हैं रेडियो मुझे धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। तो श्रोताओ, मिंजरों की बात हम कर रहे थे। मिंजर मेले में जाना है तो अपना रखना है सभी को ध्यान और ख्याल। इसी ख्याल के साथ कुछ स्वास्थ्य से जुड़ी बातें हम कर लेते हैं, क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा है तो हमें अपने स्वास्थ्य का बेहद ख्याल रखना है। इन दिनों हमें जो भी भोजन खाना है साफ़ सुथरा खाना है, और हरी सब्जियाँ, प्रोटीन युक्त आहार, ताज़े फल और साबुत अनाज इसमें शामिल करना है, और ताकि आपका इम्यून सिस्टम भी सही और मजबूत रहे। इसके साथ साथ बुखार और अन्य इन्फेक्शन का डटकर मुकाबला भी करना है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको थोड़ा बहुत सर्दी, बुखार, जुखाम, गले में दर्द, इस तरह की परेशानियों से अगर दो चार होना पड़ रहा है तो तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाएं और अपना इलाज ज़रूर करवाएं, और खूब सारा पानी पिए। पानी की बात से मुझे याद आ गया श्रोताओ, जब भी कहीं बाहर जाएं तो जब तेज़ गर्मी लगती है तो एकदम ज़्यादा प्यास लगती है, तो ऐसे में मन करता है पानी पीने को, तो ज़रूर अपनी बॉटल अपने साथ रखें, क्योंकि जब हम इधर उधर का पानी पीते हैं तो कई बार वो पानी साफ़ नहीं होता है, और अपनी बॉटल में भरा हुआ पानी जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, और इसे पीकर हम अपनी प्यास भी बुझा सकते हैं, और प्यास लगने पर हमें इधर उधर भी नहीं ताकने पड़ता है। खैर, और भी बातें आपके साथ हम साझा करेंगे, लेकिन बातों के साथ साथ हमें ध्यान आ जाता है कि अरे भाई, हमारे श्रोताओं को गीतों का भी इंतज़ार होगा। तो आइए फिर से सुनते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

जी हाँ अशो, तो जीते तो हम एक दूसरे के सहारे हैं, चाहे अपने फैमिली के सहारे जिए, चाहे अपने पार्टनर के सहारे जिए, जीना तो पड़ेगा। और इस संसार में आए हैं तो बिना जिए तो गुजारा भी नहीं होगा। जैसे भी जिए, इंजॉय करें, खूब मस्ती करें और जीवन को बड़े प्यार से जिए। और फिर से हम

बढ़ते हैं मेले में, जाना तो है श्रोताओं, तो आपको भी साथ लिए चलते हैं, अकेले क्यों जाना। जब साथ मिलकर जाते हैं तो मेले का मज़ा भी दो गुना बढ़ जाता है। इस समय हम अपने श्रोताओं के साथ थोड़े सा मेले की सैर कर रहे हैं। तो श्रोताओं, बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में जब बारिश लगी हो तो मन करता है गर्मा गर्म चाय पीने को। कम से कम एक कप चाय तो ज़रूर बनता है मेले में। अच्छा होगा कि हम चाय में अदरक और इलायची भी डाल कर ले तो चाय का पीने का मज़ा और बढ़ जाता है, थकावट भी उतर जाती है और सर्दी भी कम लगती है। और अदरक वाली चाय तो पीने का एक अलग ही मज़ा होता है, एक सुकून मिलता है, राहत मिलती है। और ये प्राकृतिक एंटीबायोटिक का काम भी हमारे शरीर में करती है, एक एनर्जी सी आ जाती है, एक चुस्ती सी चाय को पी कर आ जाती है। और उस समय मज़ा आता है, मेला देखने के साथ साथ हम जब चाय की चुस्कियाँ ले रहे हों, इधर उधर रौनक, खूब सारे बच्चे इधर उधर दौड़ते हैं, जाते हैं, ये लेना वो लेना, बहुत सारी महिलाओं को भी शौक होता है मेले में घूमने का। और हमारे भाई पुरुष भाई क्यों पीछे रहें, वो तो सबसे पहले मेले में पहुंचते हैं, औरतों को ये कहकर कि भाई बारिश लगी है, आपका क्या काम है मेले में, बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे, बैठे आराम से घर पर। तो यही कहना होता है ना हमारे पुरुष भाइयों का, कहीं ना कहीं पुरुष भाइयों के चेहरे पर मुस्कान तो ज़रूर आई होगी कि भाई हमारी तो इसी तरह के से हमारे मन में चलती है बातचीत। तो कहाँ रेडियो वालों को भी ये पता लग गया, तो कहीं ना कहीं भाई आपकी चोरी भी पकड़ी गई है। इसी तरह से सब पुरुष भाई अकेले ही घूमना चाहते हैं, अपनी पत्नियों को घर पर छोड़कर। जी हाँ श्रोताओं, हम तो यही कहना चाहते हैं कि हमारे पुरुष भाई हमारी बहनों को भी ज़रूर साथ लेकर जाएं, बच्चों को भी लेकर जाएं, पूरे परिवार के साथ खूब इंजॉय करें इस मेले में। और इस समय कार्यक्रम में हम भी इंजॉय करते हैं। कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत तो आप सुनते रहिए, रेणी गुंजन धर्मशाला।

फ्रीक्वेंसी 91.2 पर शो तो इस समय आप एंजॉय कर रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला, और साथ ही साथ हम आपको सैर भी करवा रहे हैं मेलों की, और सावधानियां भी आपके साथ साझा कर रहे हैं कि थोड़ी सी हमें सावधानियां भी ऐसी जगहों पर जाने से पहले या जाते समय या वहां होते हुए बरतनी चाहिए। तो क्या होता है कि जब हम भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाते हैं तो ज़रूरी हो जाता है कि वहाँ हमें मास्क ज़रूर पहन लेना चाहिए। ये इन्फेक्शन को फैलने से भी रोकता है और कहीं ना कहीं हमें इन्फेक्शन से बचाता भी है। और मेले की जगह जो देखकर मन करता है इधर भी जाया जाए, उधर भी जाया जाए, ये भी खा लिया जाए, वो भी खा लिया जाए, तो थोड़ा थोड़ा हमें इन चीज़ों से परहेज करना है। ठंडी आइसक्रीम, गोला, कोल्ड ड्रिंक या फिर अन्य ठंडे पेय पदार्थों का सेवन हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही बारिश होती है मौसम हो जाता है ठंडा और ऐसी चीज़ें खाकर हो जाता है हमारा गला ख़राब, और फिर अगर हम मेले से वापस आएँ बीमारियाँ लेकर तो घर पर भी डांट पड़ती है। इसलिए अच्छा है कि मेले में रहकर खूब इंजॉय करें, थोड़ा सा उन चीज़ों से परहेज करें जिनसे हमें बीमार होने का खतरा हो, क्योंकि मौसम में वायरल इन्फेक्शन जो है तुरंत फैल जाता है। इसके साथ साथ श्रोताओं हमें रहना है एक चीज़ से दूर, वो है तनाव, क्योंकि तनाव को ख़त्म करने के लिए एक सार्थक की ज़िंदगी से दूर हटकर हम इंजॉय करने मेले में जा रहे हैं तो तनाव लेने से क्या होता है, स्वास्थ्य को हानि होती है और हमारा हो जाता है नुकसान, हमारी सेहत बिगड़ जाती है। इसलिए तनाव से कोसों दूर रहें। फ्लू भी तेज़ी से जकड़ लेता है तनाव होने पर। स्ट्रेस लेने से इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है और ठीक ठाक होने के चांस जो है थोड़े ज़्यादा कम हो जाते हैं, समय लग जाता है ठीक ठाक होने में। और इसलिए अगर आप चाहते हैं कि जीवन को भी इंजॉय करें, मेलों का भी आनंद लें, क्योंकि मेले हमारे लोकल भी होने वाले हैं, अगले कल भी बाल मेला में हमारे नगरोटा में लगने वाला है, उसका भी अगर आपने इंजॉय करना है तो आपको रहना पड़ेगा तंदुरुस्त। तंदुरुस्ती की हालत में श्रोताओं आप देखें मेले। और चलते चलते हम आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अंतिम प्यारा सा गीत, तो आप जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और सुनते रहिए प्यारे प्यारे गीत रेडियो गुंजन के जरिए।

तो इसी गीत के साथ ही सावन में आप रहें स्वस्थ व्यस्त और अपने अपने कार्य में भी थोड़ा सा मस्त रहकर काम कीजिए तो काम करने का अपना ही मजा आता है। अब अनुमति दीजिए कार्यक्रम समाप्त करने की। श्रोताओं, अगली बार फिर से मिलेंगे नई बातों और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।

आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: सचुन है।
2: पांच YouTube वीडियो को लाइक करके पांच लोगों को स्क्रीनशॉट भेजने से पर वीडियो 500 रुपए अर्न करे।
1: क्या बात कर रहा है?
2: हाँ देख,
1: तुझे क्या लगता है ये जेन्यून है?
2: अरे हमें कहाँ पैसे देने हैं, ट्राई करके देखते हैं ना। ला देख। अरे हाँ यार, मुझे 500 रुपए मिल गए। इट मीन्स ये जेन्यून है।
1: अरे अब तो मुझे भी ये करना है।
2: 20,000 रुपए में प्राइम मेंबरशिप लेने से 50,000 तक अर्न कर सकते हैं।
3: क्या बात है यार।
4: अरे ठहरो, ये क्या करने जा रहे हो?
2: ऑनलाइन टास्क से पैसे कमा रहे हैं।
4: अननोन लिंक पर क्लिक करके पैसे देकर ऐसा नहीं करना चाहिए। SMS, WhatsApp, ईमेल या टेलीग्राम पर आने वाले किसी भी अननोन लिंक को क्लिक ना करें। कोई भी अजनबी अगर आपको ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करने के लिए कहें तो उसे बिल्कुल भी डाउनलोड ना करें। ऑनलाइन टास्क के जरिए ज्यादा पैसा कमाने के लालच देने वाले विज्ञापनों से दूर रहें। सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बिना पूरी जानकारी के कोई भी वित्तीय लेन देन ना करें और उनकी लालच भरी बातों में तो बिल्कुल ना फंसें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में।
5: अब उठो, देश के भाग जगाने हैं आपको। निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं। अब कोना कोना जगमग जगमग होना ही है। अब ठान के स्वच्छता की ज्योत जागी है। स्वच्छता की ज्योत जागी है।

0: पर एचआईवी कभी न दूं।
1: अगर आप मां बनने वाली हैं, तो एचआईवी टेस्ट जरूर करवाएं। सरकारी अस्पताल के आईसीटीसी में सलाह और एचआईवी टेस्ट मुफ्त है और गोपनीय भी। बच्चे को एचआईवी से बचाने के लिए जल्द पता लगाना और वक्त पे दवाई दिलवाना जरूरी है।
2: एक कदम जिंदगी की ओर।
3: जितनी होशियारी करनी है कर लो, जितनी चालाकी करनी है कर लो, जितनी बेईमानी करनी है कर लो, जितनी फरेबी चाल चलनी है चल लो, लेकिन याद रखना जब तुम्हारा कर्म तुम्हारे पास लौट कर आए तो उस समय हैरान मत होना, उस समय परेशान मत होना, उस समय घबराना मत, क्योंकि जो आपने किया है अगर छल किया है, कपट किया है, किसी के साथ गलत व्यवहार किया है, तो वो कई गुना होकर आपके पास जब लौटेगा उस समय आश्चर्य मत करना, क्योंकि कर्म की अदालत में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। जैसा किया है वैसा भोगना ही पड़ेगा। कर्म के सिद्धांत को कोई बदल नहीं सकता। जय बिहारी जी के।

0: अरे भैया ये आप सबने हेलमेट क्यों पहना है? ये तो बाइक वाला हेलमेट है ना।
1: अब आप नहीं पहन रहे तो सोचा हम ही पहन लेते हैं।
2: असलियत में हेलमेट किसको शोभा देता है ये तो सबको पता है। बाइक चलाते वक्त सर बचाएं, हेलमेट पहनें। Wear a helmet always, because helmet saves.
3: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है। पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: सुबह से मुंह फुला के घूम रही है ये।
6: मेरी बीवी को पता चल गया मैं किसी और से प्यार करता हूँ।
5: किससे?
6: वो मुझे भी नहीं पता, वो बस इसे ही पता है। रात को सपने में देखा था ना।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

0: 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।
1: चोरी चोरी चुपके से आके मेरी आंखों में समा जा, धीरे

आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: सचुन है।
2: पांच YouTube वीडियो को लाइक करके पांच लोगों को स्क्रीनशॉट भेजने से पर वीडियो 500 रुपए अर्न कर रहे।
1: क्या बात कर रहा
2: है? हाँ देख,
1: तुझे क्या लगता है ये जेन्यून है?
2: अरे हमें कहाँ पैसे देने हैं, ट्राई करके देखते हैं ना। ला देख। अरे हाँ यार, मुझे 500 रुपए मिल गए, इतने से ये जेन्यून है।
1: अरे अब तो मुझे भी ये करना है।
2: 20,000 रुपए में प्राइम मेंबरशिप लेने से 50,000 तक अर्न कर सकते हैं।
3: क्या बात है यार।
4: अरे ठहरो, ये क्या करने जा रहे हो?
2: ऑनलाइन टास्क से पैसे कमा रहे हैं।
4: अननोन लिंक पर क्लिक करके पैसे देकर ऐसा नहीं करना चाहिए। SMS, WhatsApp, ईमेल या टेलीग्राम पर आने वाले किसी भी अननोन लिंक को क्लिक ना करें। कोई भी अजनबी अगर आपको ऑनलाइन ऐप्स डाउनलोड करने के लिए कहें तो उसे बिल्कुल भी डाउनलोड ना करें। ऑनलाइन टास्क के जरिए ज्यादा पैसा कमाने के लालच देने वाले विज्ञापनों से दूर रहें। सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बिना पूरी जानकारी के कोई भी वित्तीय लेन देन ना करें और उनकी लालच भरी बातों में तो बिल्कुल ना फंसें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में।
5: अब उठो, देश के भाग जगाने हैं आपको। निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं आपको। अब कोना कोना जगमग जगमग होना ही है। अब ठान के मुद्दे स्वच्छता की ज्योत जागी है। स्वच्छता की ज्योत जागी है।

0: एचआईवी कभी न दूं।
1: अगर आप मां बनने वाली हैं, तो एचआईवी टेस्ट जरूर करवाएं। सरकारी अस्पताल के आईसीटीसी में सलाह और एचआईवी टेस्ट मुफ्त है और गोपनीय भी। बच्चे को एचआईवी से बचाने के लिए जल्द पता लगाना और वक्त पे दवाई दिलवाना जरूरी है।
2: एक कदम जिंदगी की ओर।
3: जितनी होशियारी करनी है कर लो, जितनी चालाकी करनी है कर लो, जितनी बेईमानी करनी है कर लो, जितनी फरेबी चाल चलनी है चल लो, लेकिन याद रखना जब तुम्हारा कर्म तुम्हारे पास लौट कर आए तो उस समय हैरान मत होना, उस समय परेशान मत होना, उस समय घबराना मत, क्योंकि जो आपने किया है अगर छल किया है, कपट किया है, किसी के साथ गलत व्यवहार किया है, तो वो कई गुना होकर आपके पास जब लौटेगा उस समय आश्चर्य मत करना, क्योंकि कर्म की अदालत में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। जैसा किया है वैसा भोगना ही पड़ेगा। कर्म के सिद्धांत को कोई बदल नहीं सकता। जय बिहारी जी के।

0: अरे भैया ये आप सबने हेलमेट क्यों पहना है? ये तो बाइक वाला हेलमेट है ना।
1: अब आप नहीं पहन रहे तो सोचा हम ही पहन लेते हैं।
2: असलियत में हेलमेट किसको शोभा देता है ये तो सबको पता है। बाइक चलाते वक्त सर बचाएं, हेलमेट पहने। वेयर अ हेलमेट ऑलवेज बिकॉज हेलमेट सेव्स।
3: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: सुबह से मुंह फुला के घूम रही है ये।
6: मेरी बीवी को पता चल गया मैं किसी और से प्यार करता हूँ।
5: किससे?
6: वो मुझे भी नहीं पता, वो बस इसे ही पता है, रात को सपने में देखा था ना।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो गुंजन धर्मशाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी की अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल अच्छे हैं और अपनी सेहत का ध्यान बहुत ही अच्छे से आप सभी रख रहे हैं बदलते मौसम के साथ। तो दोस्तों, इस हफ्ते भी आप सभी के लिए बहुत ही खास जानकारी, बहुत ही खास कार्यक्रम आप सभी इंजॉय करते हैं, मन संवाद एक प्रयास मन की ओर। और इस कार्यक्रम में आप सभी जुड़ते हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका और साथ ही
1: प्रेयसी के साथ।
0: जी, तो स्वागत है मैम आपका हमारी इस अगली कड़ी में हमारे प्यारे प्यारे श्रोताओं के साथ।
1: थैंक यू सो मच रुचिका
0: जी। तो कैसे हैं आप? और आप हमारे दोस्त तो बहुत ही अच्छे से अपना ध्यान रख रहे हैं स्वास्थ्य का, आप किस तरह से अपना ध्यान रख रहे हैं?
1: हम अच्छे हैं, काफी अच्छे हैं। बदलते मौसम के साथ गर्म पानी का जो उपयोग है वो बढ़ चुका। देखिए, जहाँ तक स्वास्थ्य की बात करते हैं तो उसमें हमारा सिर्फ जो फिजिकल हेल्थ है वही नहीं, लेकिन हमारा मेंटल हेल्थ भी हमारे स्वास्थ्य का ही हिस्सा है।
0: बिल्कुल।
1: तो जैसे कि सुबह होती है, सुबह होते ही मॉर्निंग वॉक पर जाना, नेचर के बीच में पानी को बहते हुए देखना, सूरज की पहली किरणों को देखना, चिड़िया को आवाजों को सुनना, ये एक ऐसी चीज है जो हमारे दिन को बहुत ही बेहतर और खूबसूरत बना देती है। क्योंकि इसके साथ साथ हमें सिर्फ फिजिकली नहीं फायदा हो रहा है, हमें मेंटली इमोशनली भी बहुत फायदे होते हैं। उसके बाद वही अपना काम, अपना डेली का रूटीन, हेल्दी डाइट और समय से सो जाना।
0: बिल्कुल। तो दोस्तों, आपने बहुत ही ये एक सही और जरूरी बात आप सभी के लिए, बातों ही बातों में लेकिन देखिए कितनी जरूरी बात आप सभी तक पहुंची है। और इसे हम एक कह सकते हैं कि दिन की शुरुआत इस तरह से अगर हम करें तो बहुत ही प्यारा सा दिन जाता है। यानी कि सुबह की शुरुआत अच्छी होगी तो हर पल हमारे लिए अच्छा ही जाएगा। तो जैसे कि मैम ने कहा कि मॉर्निंग वॉक और प्यारे प्यारे पक्षियों की वो मीठी सी आवाज जब हम सुन लेते हैं तो सच में एक अलग ही सुकून मिल जाता है। और अगर थोड़ा बहुत भी आलस है तो वो भी दूर हो जाता है। तो बिल्कुल दोस्तों, इस तरह से अगर हम सुबह की शुरुआत करें, क्योंकि अक्सर हम क्या करते हैं मैम कि सुबह उठते ही बस ये होता है टेंशन कि बस हमें ये काम निपटाना है और फटाफट से बस उस रूटीन में हम शुरू हो जाते हैं।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: तो ये जरूरी सी चीजें अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं, भूल जाते हैं, जो कि हमारे हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं हेल्थ से रिलेटेड ही, और अभी हमने बात भी कर ली कि रूटीन किस तरह से, तो मुझे लगता है कि आज के कार्यक्रम में हमें अपने दोस्तों के लिए एक बहुत ही खास बात जो है वो बतानी चाहिए, या यूं कहें कि जानकारी दोस्तों तक पहुंचानी चाहिए। तो अभी बात की ना कि हर चीज हमारी हेल्थ के लिए जरूरी है, मेंटल हेल्थ के लिए भी जरूरी है। तो आजकल मैम आपको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा एक प्रॉब्लम, चाहे बच्चों की बात करें या बुजुर्ग, खैर उनकी एज के साथ साथ तो चेंजेस आते हैं, लेकिन बच्चों की या युवाओं की हम बात करें तो स्लीपिंग का एक पैटर्न जो है वो कहीं गड़बड़ा सा गया है?
1: डेफिनेटली।
0: तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए, स्लीप अपने आप में एक रिदम के अनुसार काम करती है, इसको हम बोलते हैं स्लीप वेक साइकिल। तो जैसे प्रकृति में आप हर जगह देखेंगे तो हर चीज एक साइकिल के तौर पे चलती है, चाहे वो वाटर साइकिल हो या फिर आपका ब्लड सर्कुलेशन हो। तो यानी अंदरूनी दुनिया हो या बाहरी दुनिया, हर चीज एक साइकिल के तौर पे चल रही है। ठीक उसी

0: प्रकार से हमारी स्लीप वेक साइकिल होती है, जो हमारी सर्काडियन, जिसको हम सर्काडियन रिदम भी बोलते हैं। तो ये एक ऐसी रिदम है जो नेचर के साथ अलाइन होकर हमारे जो हार्मोन्स है उसमें बदलाव लाती है और हमारी बॉडी का ख्याल रखने में हमारी सहायता करती है। तो जब हम स्लीप वेक साइकिल हमारी डिस्टर्ब होती है, देखिए इसके बहुत सारे कारण होते हैं। तो जैसा आपको पता है रुचिका, आज के समय पे जो हमारा लाइफस्टाइल हो गया है, जो फोन का यूसेज इतना बढ़ चुका है, और यहाँ तक कि इवन काम के लिए भी लोगों को नाइट शिफ्ट्स करनी पड़ती है
1: जी।
0: और लोगों में इतना अकेलापन आ चुका है क्योंकि फोन साथ में है हमेशा, तो एक डिस्कनेक्ट हो चुका है फ्रॉम ह्यूमन कनेक्शन इटसेल्फ, और एआई के बढ़ते हुए ये चीज बस बढ़ती ही जा रही है। तो इन सब के होते हुए हमारी स्लीप वेक साइकिल या स्लीप का डिस्टर्ब होना बहुत आम हो चुका है।
1: बिल्कुल। तो दोस्तों देखिए, ये प्रॉब्लम जैसे अभी हमने बात की, तो आपको भी लग रहा होगा कि ये तो आए दिन हमारे साथ भी होता है। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इस बात को पेश कर रहे होंगे। तो बिल्कुल दोस्तों, ये जैसे ही हम अपने आप को कुछ चीजों से अलग करना चाहते हैं, क्योंकि कई बार हमें रियलाइज हो जाता है, तो फिर हम अगर खुद को दूर करना चाहें लेकिन जो फैसिलिटीज है वो हमें और अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। अब जैसे जहां हम ये चाह रहे थे कि हम फोन का यूज ज्यादा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम स्क्रीन टाइम को कम करें, लेकिन अब एआई का जो एक और न्यू एडिशन हमारी लाइफ में हो गई है, तो फिर हम और छोटी छोटी सी चीजों के लिए उसके सहारे पे मतलब मोबाइल के साथ फिर से कनेक्ट हो गए हैं,
0: डिपेंडेंसी
1: बढ़ गई है। तो बिल्कुल दोस्तों, आज के कार्यक्रम में जो हम स्लीपिंग की बात कर रहे हैं, तो उस पर बातचीत करने वाले हैं। बहुत खास ये जानकारी आप सभी के लिए रहने वाली है, क्योंकि ये इशू बहुत ज्यादा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, चाहे वो छोटे बच्चे हैं, क्योंकि आजकल आप सभी जानते हैं कि बच्चा जन्म लेते ही थोड़ा सा टाइम अभी उसे होता है और फोन हाथ में पहले ही आ जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं नींद डिस्टर्ब होती जाती है, तो हमारी जो एक डेली रूटीन है उस पर भी प्रभाव पड़ता है। तो जरूर बात करेंगे, लेकिन मैम एक प्यारा सा छोटा सा ब्रेक लें।
0: बिल्कुल
1: जी। तो दोस्तों मिलते हैं आप सभी से इस प्यारे से गीत के बाद। आप सभी इसी तरह से एंजॉय कीजिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने की।

0: तो दोस्तों इस प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और बहुत ही खास ये कार्यक्रम मन संवाद एक प्रयास मतियौर आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका और
1: प्रेयसी के साथ।
0: जी दोस्तों, तो मैम आपके लिए बहुत ही खास जानकारियां लेकर आते हैं और ये हमारी डेली रूटीन से जुड़ी हुई होती है, तो जितना ध्यान से हम इन्हें जान सके, जितना ध्यान से हम इन्हें सुन सके और अपनी जिंदगी में से अप्लाई कर सके, वो हमारे लिए उतना ही बेहतर रहेगा। तो हमारी ये कोशिश है कि आप अपने आप को सतर्क करें हर एक छोटी सी छोटी बात के लिए। तो उसी के चलते आज हम ये बहुत ही खास स्लीपिंग से संबंधित बातचीत आप सभी के लिए लेकर आए। तो मैम, अभी आपने बात की कि जो हमारा स्लीपिंग वेक साइकिल होता है तो वो किस तरह से रोल रहता है, क्या रहता है, तो सबसे पहले तो हमारे दोस्तों को ये जानना जरूरी है कि स्लीपिंग वेक साइकिल होता क्या है, इसका क्या रोल रहता है।
1: बिल्कुल, देखिए हमारे शरीर में एक हार्मोन रहता है जो हमें नींद प्रोड्यूस करता है बेसिकली, और इस हार्मोन का नाम है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे डे टाइम या सनलाइट के एकदम डायरेक्टली प्रभाव में रहता है। तो जैसे जैसे दिन चढ़ता है, जैसे जैसे सनलाइट आती है, वैसे वैसे मेलाटोनिन का असर कम होने लगता है, तो इंसान वेकिंग स्टेट में आने लगता, और जैसे जैसे शाम होने लगती है, सनसेट होने लगता है, वैसे वैसे मेलाटोनिन का प्रोडक्शन हमारे अंदर बढ़ने लगता है, जिसके कारण वर्ष हमें नींद आने लगती है। अब आप देखेंगे प्रकृति में जितने भी लिविंग बींग्स हैं, चाहे वो चिड़िया हो या पेड़ पक्षी हो या पौधे हो, वो सब सनलाइट या डे और नाइट का जो स्केड्यूल है उसके अनुसार जागते हैं और सोते हैं, राइट?
0: जी।
1: ठीक इसी प्रकार से ह्यूमन बींग्स का डेवलपमेंट भी ऐसा ही हुआ है, लेकिन अफसोस की बात है कि अब ये काफी ज्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड हो चुका है। जब हम बात करते हैं स्लीपिंग की, तो स्लीप की अपनी एक अलग साइकिल है। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप सोने जाते हैं तो कैसे धीरे धीरे जाकर नींद आती है,
0: बिल्कुल,
1: और उसके बाद कभी कुछ सपने आ रहे होते हैं, फिर कभी कुछ जो भी आज के दिन में जो भी कुछ हुआ होता है वो सारी चीजें बातें चल रही होती हैं, उसी का ही सपना भी बन जाता है, और सोते वक्त बीच बीच में हम करवटें लेते हैं, हमारी आंखें हल्की सी खुलती हैं, हम करवट लेते हैं और फिर से सो जाते हैं, और जब सुबह होती है तब नींद इतनी गहरी होती है कि उठने का मन ही नहीं करता, लगता है नींद कितनी अच्छी आ रही है।
0: सही बात,
1: अब हमें कोई ना उठाए,
0: वो सर्दियों में खासकर बहुत ही ज्यादा हो जाता है,
1: बहुत ज्यादा हो जाता है।
0: जी।
1: तो ये सारा जो एक प्रक्रिया चल रही है सोने के समय पर, इसको हम बोलते हैं स्लीप साइकिल, और इसके डिफरेंट डिफरेंट फेजेस होते हैं जिसको हम इन्हीं बिहेवियर्स या इन्हीं एक्सपीरियंसेस के थ्रू महसूस करते हैं। तो इसमें देखिए दो तरह के फेज बताए जाते हैं, तो हर एक साइकिल जो है वो 1.5 आवर की है, और ये 1.5 आवर डिवाइड करे गए हैं टू डिफरेंट फेजेस में। पहला फेज होता है NREM, यानी कि नॉन रैपिड आई मूवमेंट। NREM में भी तीन डिफरेंट फेजेस हैं, तो तीन स्टेजेस हैं इसके। तो आपको पहले धीरे धीरे नींद आनी शुरू होगी, फिर वो नींद के बाद आपको कुछ सपने आने शुरू हो जाएंगे जो आपकी डेली लाइफ के रूटीन में होंगे, या आज जो भी कुछ हुआ वो बेसिकली मेमोरी कंसोलिडेशन हो रहा होता है कि आज हमने दिन में क्या क्या किया है। उसी में हमें कई बार थोड़े झटके भी लग जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि अरे हम गिरने वाले हैं, और एकदम से आंख खुल जाती है, राइट? फिर आती है स्टेज 3, जहां पर वो डीप स्लीप की स्टेज में व्यक्ति पहुंच चुका होता है। NREM फेज जैसे ही खत्म होता है, फिर आता है सेकंड फेज, जिसको हम बोलते हैं REM, यानी रैपिड आई मूवमेंट। ये एक ऐसा फेज है जिसमें व्यक्ति अपना बिल्कुल सुदबुद्ध होके सपने में डूबा हुआ होता है। इसमें बहुत ही क्लियर ड्रीम्स आते हैं, यहाँ तक कि वो ड्रीम्स बहुत रियल लगते हैं। तो कभी ऐसे लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि सपना देख रहे हैं और हम पसीने पसीने हो गए जब हम उठे, या जब हमने सपना देखा वो इतना रियल था कि हम बता ही नहीं सकते थे कि वो सपना था। तो वो चीजें एक्चुअली हमारे REM फेज में हो रही होती है। REM फेज का एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि जब जब REM फेज स्टार्ट होता है तब तब हमारा ब्रेन एक सिग्नल भेजता है कि हमारे सारे वॉलंटरी फंक्शंस ऑफ हो जाए। तो बेसिकली हमारे नेक के नीचे का जितना भी पार्ट है बॉडी का वो सारा शट डाउन हो चुका होता है फॉर वॉलंटरी पार्ट्स, जिससे कि हमारी नींद में जो भी हमारी मसल्स हैं वो सारे कम्प्लीटली रिलैक्स हो सके और पूरी तरीके से जो सेल्स का रिजुविनेशन है वो हो सके। देखिए दिन भर में हम लोग जो उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, उन सब की वजह से हमारे मसल्स में टेंशन डेवलप हो जाती है, और उसको रिलीज करने के लिए REM फेज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ ऐसी होती है स्लीप साइकिल।
0: तो मैम, जैसे कि अभी आपने दो फेज बताए और स्लीप साइकिल का ये प्रोसेस बताया, तो जैसे आपने इसके इसकी टाइमिंग बताई,
1: वन एंड हाफ आवर
0: की। तो अगर हम बात करें तो ये मतलब कि रिपीट होते हैं?
1: यस,
0: है ना, क्योंकि वन एंड हाफ आवर तो पहले एक फेस होगा, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड।
1: यस,
0: है ना, साइकिल
1: exactly. तो साइकिल में चलता जाता है। तो फर्स्ट फेस चला, देन सेकंड, देन फर्स्ट, देन सेकंड, देन फर्स्ट, देन सेकंड। तो इसलिए हमारे यहाँ पर ये रेकमेंड किया जाता है कि आप 1.5 आवर के मल्टीपल में अलार्म लगाए जब आपको उठना है। क्योंकि ऐसा मानिए कि इनमें ना हमारे डिफरेंट ब्रेन वेव्स भी डेवलप होती हैं, और जब ऐसा होता है तब सेकेंड फेज जैसे एंड हो रहा होता है और फर्स्ट फेज आ रहा होता है, तो वहां पे जो थोड़ा सा टाइम होता है ना, टाइम ड्यूरेशन, वो एक ऐसी फेज होती है जब आप आसानी से उठ सकते हैं
0: जी।
1: तो इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि 1.5 आवर के मल्टीपल में आप अलार्म लगाए, लाइक दैट।
0: तो बिल्कुल दोस्तों, देखिए अभी आपने भी ये बातें सुनी, और अभी तक मुझे लगता है बहुत से लोगों को ऐसा नहीं पता था कि ये साइकिल भी होता है, है ना, स्लीप साइकिल भी होता है। तो हमें तो ऐसा लगता है कि बस हम सो गए, हमें सपना आया, फिर हमें ऐसा लगता है कि नहीं ये तो सच में रियल है। और कई बार तो सपने ऐसे होते हैं कि हमें डर लगता है कि कहीं ये सच में सच तो नहीं है, और जैसे ही नींद आती है फिर हम थोड़ा सा सांस लेते हैं कि नहीं शुक्र है ये सपना ही था। तो इस तरह से भी होता है। तो लेकिन ये बात अभी पता चल रही है कि ये एक साइकिल है, हमारी स्लीपिंग साइकिल है, जिसमें कि ये सारी चीजें एक पैटर्न की तरह चलती रहती हैं। तो अभी आपने अभी ब्रेन वेव्स की बात की है, तो इसके बारे में हम जरूर जानेंगे कि स्लीप और ब्रेन का क्या रोल रहता है, क्या इसमें जो है मतलब क्या प्रोसेसिंग है। तो लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि एक छोटा सा ब्रेक होना चाहिए। तो आइए दोस्तों एंजॉय करते हैं कार्यक्रम में ये खूबसूरत सा गीत, उसके बाद फिर से मुलाकात होगी आप सभी की इस बहुत ही खास बातचीत के साथ।

0: दोस्तों 91.5 तो मेगा हर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम बहुत ही प्यार के साथ एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ही इस खास बातचीत को अपनी जिंदगी के साथ रिलेट करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो आइए हम भी कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आप सभी को और ज्यादा सतर्कता की ओर लेकर चलते हैं, जानकारी की ओर लेकर चलते हैं। तो स्लीपिंग के आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं। तो मैम अभी आपने बहुत ही अच्छे से बताया कि किस तरह से जो हमारा स्लीपिंग साइकिल है उसके फेसेस रहते हैं और ये साइकिल किस तरह से प्रोसेस करता है, लेकिन आपने बीच में बात की कि ब्रेन वेव्स की जिक्र आपने किया, तो मैं ये जानना चाह रही थी कि स्लीप का और ब्रेन का जो है क्या कनेक्शन है, किस तरह से ये कनेक्ट रहते हैं या क्या प्रोसेस रहता है इनका?
1: देखिए ब्रेन तो हमारा कमांडिंग सेंटर है, वो हर कमांड ब्रेन से ही आती है
0: जी।
1: लेकिन जब हम लोग कुछ भी कॉग्निटिव फंक्शंस करते हैं, कॉग्निटिव फंक्शन यानी कि जो भी कोई काम कर रहे हैं थिंकिंग के एस्पेक्ट पे, प्रोसेसिंग हो गया, एनालाइजिंग हो गया, ऑब्जर्विंग हो गया, ये सारे जो हम आम तौर पे काम कर रहे होते हैं जिनको हम लोग स्किल्स बोलते हैं अपने लेमेन टर्म्स में
0: जी।
1: तो ये बेसिकली इन सभी में हमारे डिफरेंट डिफरेंट ब्रेन वेव्स का अपना एक रोल होता है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि हमारी जो बॉडी है उसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू ही हर इंफॉर्मेशन फ्लो करती है। तो यानी कि There is an electrical field around us and जो भी electrons हैं उनकी अपनी एक wave है। तो basically brain किस तरीके से काम कर रहा है उसके लिए भी हम उसकी waves के आधार पर ही understand करते हैं। इसको हम बहुत simple terms में समझाने का प्रयास करेंगे रुचिका
0: जी।
1: देखिए हमारे अलग अलग प्रकार की brain waves हैं जिसकी वजह से हम क्या काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं वो impact होता है। जैसे कि हमारी एक अल्फा वेव होती है। अल्फा वेव एक ऐसी ब्रेन वेव है जब हम इंसान रिलैक्स्ड होता है उस समय पर ब्रेन में अल्फा वेव प्रेजेंट रहती है। अच्छा इसमें एक वेव ही प्रेजेंट रहे ब्रेन में ये जरूरी नहीं है, अलग अलग वेव्स इकट्ठा भी प्रेजेंट हो सकती हैं। तो अल्फा वेव से अगर हम थोड़ा ऊपर जाएं तो उसको हम बोलते हैं बीटा वेव। तो बीटा ब्रेन वेव जो है उसकी फ्रिक्वेंसी अल्फा वेव से ज्यादा होती है। बीटा ब्रेन वेव जब होती है तब इंसान कुछ काम कर रहा होता है, कहीं पर फोकस्ड होता है, जैसे कि गाड़ी चलाना या अटेंटिवली कोई काम करना या ऐसी कॉन्वर्सेशन करना जो अभी हम लोग कर रहे हैं
0: जी।
1: बीटा वेव से और हायर एक वेव होती है जिसको बोलते हैं गामा वेव। गामा वेव की फ्रिक्वेंसी और भी ज्यादा हाई होती है देन बीटा वेव। गामा वेव तब डेवलप होती है ब्रेन में जब इंसान कोई बहुत ज्यादा हायर कॉग्निटिव फंक्शन कर रहा हो, जैसे कि एक पायलट एक प्लेन उड़ा रहा हो या फिर हम कोई बहुत मैथमेटिकल एल्गोरिदम सॉल्व कर रहे हैं, इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, तो इस तरह के जितने भी काम होता है, एक सर्जन ऑपरेशन कर रहे हैं, ये सब चीजें में गामा वेव प्रेजेंट रहती है। फिर अगर हम अल्फा वेव जो एक रिलैक्स्ड स्टेट है, तो जब भी हम मेडिटेशन करते हैं या कुछ भी करते हैं तो हमारा अल्फा वेव में प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। तो हमारे ब्रेन में वो अल्फा वेव आनी बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या होता है बीटा में क्या रहेगा, ओवरथिंकिंग चलती रहेगी राइट। फिर अल्फा वेव से जब हम नीचे आते हैं तो आती है हमारी थीटा वेव। तो थीटा वेव की जो फ्रिक्वेंसी वो अल्फा से कम है, समझ रहे हैं। तो अल्फा एक प्रकार से एक न्यूट्रल है जो रिलैक्स्ड है, उसके ऊपर बीटा और गामा है और अल्फा के नीचे हमारी स्लीपिंग स्टेट्स आ जाती है। तो उसके बाद आता है हमारा थीटा ब्रेन वेव और थीटा ब्रेन वेव में हमारी जो एनआरईएम स्टेज है वो स्टार्ट होती है। तो कई बार आपने नोटिस किया होगा कि जब हम लोग रिलैक्स भी होते हैं और हम थोड़ा थोड़ा ड्राउजी भी फील करने लगते हैं, थोड़ी नींद आने लगती है और दिमाग नहीं काम करता, जैसे कि स्कूल में स्टूडेंट पढ़ रहा है, टीचर पढ़ा रही है पर स्टूडेंट को नींद आ रही है और जो टीचर पढ़ा रही है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा तो ये वो स्टेज है जहां पर बच्चे के ब्रेन में अल्फा और थीटा वेव दोनों प्रेजेंट है। इस प्रकार से जब अल्फा वेव निकल जाती है, खत्म हो जाती है, क्योंकि वो एक वेकिंग स्टेट आ जाती है, तो थीटा वेव जब रह जाती है तब हमारी स्लीप साइकिल स्टार्ट होती है जहां पर हमारी एनआरईएम फेज स्टार्ट होता है। और उससे भी जब हम और थोड़ा नीचे जाते हैं तो हम बोलते हैं उसको डेल्टा वेव। जो डेल्टा वेव है दैट इज रिलेटेड विद आर आरईएम फेज, जो हमारी डीप स्लीप स्टेट है। तो इस प्रकार से ब्रेन वेव्स के आधार पे अलग अलग जो ब्रेन वेव्स आएंगी उसके आधार पे इंसान के बिहेवियर्स, उनके फंक्शंस और उनकी स्लीप वेक साइकिल इम्पैक्ट होती है।
0: बिल्कुल दोस्तों, तो देख लीजिए कि किस तरह से स्लीपिंग के भी अलग अलग एक प्रोसेसिंग है, क्योंकि ये तो पहले हमने मैथ्स में सुना था लेकिन आज हम इसको स्लीपिंग पैटर्न में भी इंजॉय कर रहे हैं, सुन रहे हैं और जान रहे हैं कि आखिर स्लीपिंग में भी ये अल्फा बीटा गामा थीटा जो है वो काम में आते हैं। तो देखिए दोस्तों, अक्सर बहुत सारे बच्चों के साथ क्या बड़ों के साथ भी ऐसा होता है, जब हम किसी लेक्चर को सुन रहे होते हैं या कहीं बैठे होते हैं या हमें वो इंटरेस्टेड सा ना लग रहा हो, तब भी हमें नींद आनी शुरू हो जाती है, तो शायद हम उस थीटा वाली स्टेज में पहुंच चुके होते हैं। तो मैम, जैसे हम बात करें तो जैसे कि ये स्टेजेस की हम बात कर रहे हैं, अल्फा बीटा थीटा, तो इसमें हमारे लिए न्यूट्रल जो है वो अल्फा है, है ना। तो जैसे ये साइकिल है, पूरा प्रोसेसिंग है और स्लीपिंग का है, तो सबसे पहले तो हमारे लिए ये भी जरूरी है कि ये प्रोसेस होना है तो इसके लिए टाइमिंग भी, मतलब स्लीपिंग सोना भी तो जरूरी है। तो अक्सर आज के समय की हम बात करें तो आज के समय में हम नींद तो उतनी ले नहीं पाते, क्योंकि बच्चों की बात करें या बड़ों की ही बात करें, कई बार तो बच्चों को प्रेशराइज किया जाता है पढ़ाई के लिए, तो वो 10 11 12 बजे तक पढ़ाई कर रहे हैं, सुबह 4 बजे फिर से उठ जा रहे हैं, तो वो तो प्रॉपर उस साइकिल को पूरा कर नहीं पा रहे हैं। तो मैं ये जानना चाह रही थी कि हमारे लिए जो एक सही वाली स्लीपिंग टाइम है या स्लीपिंग है वो किस तरह से हम ले सकते हैं या कितने समय की होनी चाहिए।
1: बिल्कुल रुचिका, आपका जो प्रश्न है बहुत ही वैलिड है, लेकिन उससे भी ज्यादा वैलिड है जो आपने पहले इस प्रश्न से पहले बोला, यानी कि लोगों को इतना है प्रेशर कि वो अपनी नींद को पूरी नहीं कर पा रहे हैं और वो नींद को छोड़कर काम कर रहे हैं या वो पढ़ाई कर रहे हैं
0: जी।
1: सो हम इस पर नजर डालना चाहते हैं।
0: बिल्कुल,
1: कि कैसे सोसाइटी में नींद को खो के कुछ काम करने को एक बहुत ही ग्लोरीफाइड चीज मानी जा रही है
0: जी,
1: जो कि बहुत हार्मफुल है। क्योंकि अगर आपकी स्लीप डिस्टर्ब हुई, देखिए स्लीप साइकिल क्या है, एक हैबिट है, ये हैबिट बिल्डिंग है, अगर आपने इसकी आदत को बिगाड़ा तो फिर ये बिगड़ती चली जाएगी और इसको सुधारने में बहुत समय लग जाएगा
0: जी।
1: अगर हमारी स्लीप डिस्टर्ब हो गई तो हमें मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, हमें फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम दोनों होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। ऐसा मानिए कि डेफिनेटली होगी ही होगी, क्योंकि स्लीप प्रॉब्लम्स फिर क्रॉनिक बन जाती है, क्योंकि ग्लोरीफाई किया जाता है कंटिन्यूएशन में, और बच्चा जो है जो 14 इयर्स का है, जो 10th में है, 16 इयर्स का है, 17 का है, जो 12th में है, एंड देन ग्रेजुअली जब वो कॉलेज में जाता है तब फिर उसको रहता है अब तो उसको रात को नींद ही नहीं आती है तो चलो मस्ती करते हैं
0: जी,
1: है ना, फोन देखते हैं, कुछ और करते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, जो हमारा यूथ है वो पूरा बिगड़ता जा रहा है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि नींद को सेक्रीफाइस करके आप अपनी ड्रीम्स को अचीव करने का प्रयास ना करें, क्योंकि अगर आप ड्रीम को अचीव कर भी लेंगे तो भी आप अपनी हेल्थ को गवा देंगे, और ड्रीम अचीव करने के बाद, अपना हाई पैकेज मिलने के बाद, वो पैसे मिलने के बाद, आप अपनी हेल्थ में ही उन पैसों को लुटा रहे होंगे
0: जी।
1: तो इस साइकिल से भी बाहर आना बहुत जरूरी है। तो थैंक यू रुचिका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपने मेंशन किया। नाउ कमिंग टू कि कितने नंबर, कितने आवर्स ऑफ स्लीप की रिक्वायरमेंट रहती है। देखिए वैसे तो ये एज से वेरी करता है, जैसे छोटा बच्चा है तो उसका ब्रेन डेवलपमेंट तभी हो रहा होता है जब वो सो रहा होता है, तो उसको सोने की बहुत जरूरत है, तो वो उसको आराम से सोने दे। पर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे उसके जो स्लीपिंग टाइम है, स्लीपिंग आवर्स है, वो धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि अगर बच्चा पहले स्टार्टिंग में 18 घंटे सो रहा है, फिर 16 घंटे सो रहा है, फिर 12 घंटे सो रहा है, धीरे धीरे वो कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर यूथ की बात करी जाए तो देखिए 7 से 7.5 से 9 घंटे के बीच का टाइम बहुत अच्छा है। कुछ लोग 6 घंटे भी सोते हैं, अगर आप हैबिट बिल्ड कर लें टू स्लीप फॉर 6 आवर्स, जो कि आप एक यंग व्यक्ति हैं, अब आप एक एडल्ट हो चुके हैं, तो 6 आवर्स ऑफ गुड स्लीप इज आल्सो गुड। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट अच्छा है। अगर आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो आपको वो क्वालिटेटिव स्लीप उन 6 आवर्स में भी नहीं मिल पाएगी। तो ये जो एक आर का जो है वो, उसको आई वुड रिकमेंड रिक्वायरमेंट कि 6 से 9 आवर्स के बीच में डिपेंडिंग अपॉन द एज एंड द काइंड ऑफ वर्क यू आर डूइंग वो वेरी करता है।
0: जी बिल्कुल। तो दोस्तों बहुत ही गंभीर बात आप सभी के सामने रखी है, तो मुझे लगता है कि इस गंभीर बातचीत से निकलने के लिए थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। तो लेते हैं एक प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद फिर से आप सभी के साथ जुड़ते हैं इस बहुत ही खास बातचीत के साथ।

0: तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं हमारे साथ इस बहुत ही खास बातचीत के साथ। तो आज की इस बहुत ही खास बातचीत को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका और
1: प्रियशी के साथ।
0: जी तो उम्मीद है दोस्तों कि आप सभी जरूर बहुत सारी बातें जान रहे हैं और उन्हें अपनी जिंदगी में जरूर अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। जितना चेंज हम कर सके अपने आप को इन छोटी छोटी सी बातों से, उतना ही हमारे लिए बेहतर है। क्योंकि नींद की हम बात करें तो आज के समय में ये बहुत बड़ा इशू बन गया है। कई बार बच्चे सोना चाहते हैं तो पेरेंट्स सोने नहीं देते हैं, और अगर यूं बात करें हमें जब मतलब कि जैसे जैसे मैच्योरिटी बढ़ जाती है तो वैसे वैसे हमें खुद को भी लगता है कि नहीं। और एक बात कही भी जाती है मैम कि अभी अगर आप सोएंगे तो बाद में जागना पड़ेगा, अभी आप अगर जागेंगे तो बाद में आराम से सो सकते हैं। मतलब कि आराम कर सकते हैं, कहने कहावत के तौर पे कहा जाता है।
1: लेकिन तब जब आराम करने की बात आएगी तब आराम कर सकेंगे,
0: तब हम हॉस्पिटल के चक्कर लगा लगा के
1: तब परेशान रहेंगे कि नींद ही नहीं आ रही है, अब आराम कैसे करें।
0: तो दोस्तों कहने का मतलब एक ही है कि हम कहने को तो सही है, मतलब कि मेहनत करना जरूरी है, लेकिन अपनी हेल्थ के उस पे बिल्कुल भी नहीं, मतलब हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करके नहीं, हेल्थ को साथ में लेकर चलकर भी हम बहुत सारी मेहनत कर सकते हैं। तो ये बातचीत तो खैर बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन हाँ अपनी मेन मुद्दे पे आते हैं। तो मैम अभी आपने बात की थी कि स्ट्रेस की बात की, स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात की, तो स्लीपिंग के साथ ये किस तरह से रिलेट होता है? यानी कि स्ट्रेस तो आज की डेट में हर किसी को परेशान करता ही है। छोटी छोटी बात जब हम मन में रखते हैं, दिमाग में रखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस का रूप ले लेती है। तो हमारी स्लीपिंग को स्ट्रेस किस तरह से इम्पैक्ट करता है?
1: देखिए, नींद एक नेचुरल मैकेनिज्म है। ये प्रकृति ने ही एक ऐसा नियम बनाया है कि सिर्फ इंसान नहीं, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सोएगा, जिससे कि उसकी बॉडी को एक वापस से वो अपनी बैटरी रिचार्ज करेगा। क्योंकि हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है, नर्वस सिस्टम, मसल्स है, वो सब भी तो काम कर रहे हैं, उनको भी रिलैक्स चाहिए। और ये हम भूल जाते हैं, हमें लगता है सिर्फ हमारा साइकोलॉजिकल आइडेंटिटी ही है जो जी रहा है, पर हमारे भीतर के जो भी ऑर्गन्स हैं हमें उनका भी ख्याल रखना, क्योंकि वो भी हमारा उतना ही ख्याल
0: रखते हैं। बिल्कुल।
1: तो ये प्राकृतिक रूप से नेचुरल तरीके से ही हमें नींद आनी चाहिए, लेकिन होता क्या है, आती ही नहीं।
0: एक बार पैटर्न बिगड़ गया
1: मुश्किल
0: हो जाती है।
1: अब देखिए, इसका साइकोलॉजिकल लेवल पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है नींद का। नींद इंसान को तब आती है जब वो अल्फा स्टेट में एटलीस्ट रहे। अल्फा स्टेट से ही वो थीटा में जा सकता है, वो बीटा से सीधा थीटा में नहीं जाएगा। बीटा के बाद अल्फा आएगी, अल्फा के बाद आएगी थीटा, तभी आएगी नींद।
0: जी।
1: अब अल्फा में कौन इंसान आ पाएगा? वो इंसान जो टेंशन से दूर हो, जो पीस ऑफ माइंड में हो। तो यदि आपका पीस ऑफ माइंड ही नहीं है तो अल्फा ब्रेन वेव डेवलप ही नहीं हो पाएगी। आप ओवर थिंकिंग में रहेंगे तो क्या होगा, बीटा वेव में ही रह जाओगे। अल्फा नहीं आएगी तो क्या होगा, थीटा नहीं आ पाएगी। सो बेसिकली जिस भी व्यक्ति के पास पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब हो चुका है जिनका, उनको नींद की प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी। अब उनका पीस ऑफ माइंड किस लिए खराब हुआ है, वो मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो सकती है, फाइनेंशियल स्ट्रगल हो सकती है, या कोई और बात हो सकती है। सो इसीलिए स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहाँ तक कि रुचिका, नींद को हम लोग अक्सर सोचते हैं कि रात को ऐसा क्या किया जाए जिससे कि फायदा हो या नींद अच्छी आए, लेकिन नींद कैसी अच्छी आ रही है इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो हमारे डे टाइम के स्केड्यूल करता है। तो हमारा डे टाइम का स्केड्यूल कैसा है, ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है फॉर हमें नींद कैसी आएगी रात को।
0: तो अभी आपने बात की कि नींद कैसे आए, तो एक बात ये भी है कि जब नींद नहीं आती है तो हम क्या मतलब अलग अलग टेक्निक्स अपनाते हैं ना। पहले तो हम गूगल पे सर्च करेंगे कि नींद नहीं आ रही है, हम क्या करें क्या ना करें, फिर हम सोचते कि बॉडी को थकाया जाए, जितना हम बॉडी को थकाएंगे फिर एटलीस्ट जो है वो नींद आ जाएगी। तो ऐसा भी पॉसिबल होता है?
1: ऐसा भी होता है। देखिए अल्टीमेटली क्या है ना, अगर हमारी बॉडी में एनर्जी बहुत ज्यादा है तो वो हमें सोने ही नहीं देगी, क्योंकि हमने एनर्जी को रिलीज ही नहीं किया। अल्टीमेटली क्या है कि हमारे डे टाइम में हम कितना काम कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। अब आप नोटिस करेंगे कि अगर आपके आसपास ही आप स्वयं ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत मेहनत से अपना काम कर रहे हैं और आप थक जाते हैं, तो आपको नींद आसानी से आ जाती, क्योंकि जब इंसान थक चुका है तो बॉडी को पता है कि अब मेरे मसल्स में बहुत सारी टेंशन है, और ब्रेन उस चीज को समझता है और ब्रेन फट से सिग्नल्स भेजता है कि अब आपको सो जाना चाहिए, अब आपकी बॉडी और काम नहीं कर सकती।
0: नहीं कर सकती।
1: तो ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि आप जीवन में, आप डे टाइम में, दिन के दौरान आप अपने स्केड्यूल में क्या क्या कर रहे हैं।
0: तो ये जो एक तो होता है ना मैम नेचुरल प्रोसेस कि मतलब नेचुरली हमें नींद आ जाती है टाइम, एक तो जब हम शुरुआती दौर से गुजरते हैं तब हमारी रूटीन बिल्कुल परफेक्ट होती है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो वो पैटर्न कहीं ना कहीं बिगड़ता जाता है। तो क्या उसमें हमारी ये जो डेली रूटीन या लाइफ स्टाइल है ये इम्पैक्ट करता है, या हम इसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है, या फिर ये नेचुरली चीजें होती हैं?
1: नहीं, ये नेचुरली बिल्कुल नहीं है। ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमने अपनी लाइफस्टाइल का ध्यान नहीं रखा है। हमने नींद को, जो चीज नेचुरली आनी चाहिए, उसको हमने इतना इम्पैक्ट होने दिया है कि अब वो नेचुरली आ ही नहीं रही है। तो अब आप सोचिए वो कितनी ज्यादा डिसऑर्डर्ड हो चुकी है। तो देखिए, कोई भी चीज में अगर बैलेंस की कमी होगी तो वो गड़बड़ी होगी, है ना?
0: बिल्कुल।
1: और सबसे बड़ी बात, लोगों को अक्सर लगता है कि नींद जो है वो एक क्वांटिटी है, एज इन उसकी ड्यूरेशन कैसी है, लोग उसको उस तरीके से समझते हैं। लेकिन नींद की सिर्फ क्वांटिटी ही नहीं बट क्वालिटी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है। सो जितना बेहतर लाइफस्टाइल रहेगा उतना ज्यादा अच्छी और बेहतर हमारी नींद होगी। देखिए, इसके लिए ना रुचि का एक टर्म है, इसको बोलते हैं स्लीप हाइजीन। तो जिस प्रकार से हम अपना डेली हाइजीन का ध्यान रखते हैं, साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारी स्लीप हाइजीन भी है।
0: उसमें क्या मतलब, किस तरह से हम उसका ध्यान कैसे रख सकते हैं? क्योंकि हमारी जो हाइजीन है वो तो खैर रख लेते हैं, लेकिन ये स्लीपिंग हाइजीन का थोड़ा सा अलग सा कॉन्सेप्ट है, तो इसके बारे में जानना तो बहुत जरूरी है।
1: देखिए, आपने ये स्लोगन सुना होगा, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, है ना? तो ये जो है ये कम्प्लीटली इन सिंक है विद आर डे नाइट साइकिल। सो इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, जैसा हमने बताया शुरुआत में, मेलाटोनिन।
0: जी।
1: तो अगर हम अपने लाइफस्टाइल को डे और नाइट की साइकिल के साथ अलाइन करेंगे तो दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप फॉर टेकिंग केयर ऑफ आवर स्लीप वेक साइकिल, क्योंकि वो चीज क्या है ना, वो नेचुरली हमारी बॉडी उसको सिग्नल देती है। दूसरा, हमारा डेली का जो दिन का जो शेड्यूल है उसमें हमारी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, इसलिए व्यायाम बहुत जरूरी है। एक्सरसाइजेस करो, नेचर वॉक करो। सुबह सुबह उठते ही लोग कहते हैं आप सूर्य नमस्कार करो, क्योंकि वो आपके अंदर एनर्जी को बढ़ाता है। तो दिन भर आप जो काम करोगे उसके लिए आपके भीतर एनर्जी रहेगी। और रात को उस एक होती है मून, जैसे कि सूर्य नमस्कार है वैसे एक चंद्र नमस्कार है, तो वो आपकी बॉडी को रिलैक्स करता है। तो शाम को जब आप करें तो आप योगा में चंद्र नमस्कार करें। ठीक इसी प्रकार से आप मॉर्निंग में आप जिम जाएं, लेकिन शाम को जिम ना जाए, क्योंकि जिम जाकर क्या होता है, लोगों को लगता है हम थक जाएंगे तो सो जाएंगे, लेकिन नहीं, जिम जाने से हमारे शरीर में हमारा एड्रेनलिन बढ़ता है जिसकी वजह से मेलाटोनिन कम हो जाता है। सो उससे क्या होगा, क्या हमें पीसफुल माइंड रहेगा? हमारा नहीं रहेगा, हमारे ब्रेन में वो अल्फा वेव डेवलप ही नहीं हो पाएगी, वो हाई एनर्जी वाली वेव रहेगी जिसकी वजह से हम फिर से हमारी स्लीप साइकिल खराब हो जाएगी। तो स्लीप हाइजीन में ये बहुत ध्यान रखना है कि आप जो भी एक्सरसाइज फॉलो कर रहे हैं उसमें आप जो हाई बीट चीजें हैं उसको आप मॉर्निंग के टाइम पे करें, और जो रिलैक्स वाली चीजें हैं, हाँ, जैसे कि हल्का योगा हो गया या फिर मेडिटेशन हो गया, प्राणायाम हो गया, ये चीजें आप लोग शाम को करें, जो आपको हेल्प करेगी टू फॉल इनटू स्लीप। इसके अलावा देखिए, खाना, पानी पीना, आपका फोन, ये अलग अलग चीजें हैं जिनका इस्तेमाल, जैसे अगर आपका सोने का समय आ रहा है तो इनको आप धीरे धीरे कम करना शुरू कर दें। शाम होते ही आप अपनी लाइट्स को डिम कर दें घर की, आप हल्की लाइट्स चलाएं जैसे कि लैंप हो गया, आप अपने फोन से दूर रहें और आप हल्का खाना खाएं, और फिर या जो भी अच्छा सा खाना खाइए, और सोने से करीब 2-3 घंटे पहले आप खाना खा चुके होने चाहिए, और उसके बाद पानी का कंजम्पशन थोड़ा कम करेंगे शाम को। दिन के समय पे खुला पानी पियेंगे लेकिन शाम को कम पियेंगे, क्योंकि फिर नींद टूटती है, आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, तो उससे आपकी स्लीप क्वालिटी खराब होती है। तो इन कुछ चीजों का आप ख्याल रखें, साथ में जो आपका रूम टेम्परेचर है वो आपका जो भी क्लाइमेट है वहां पे, जो भी वेदर है उसके अनुकूल होना चाहिए, उसके अनुसार होना चाहिए, और उसके साथ साथ एक कंफर्टिंग बेड हो, कंफर्टेबल चीजें हों, आपके पास रजाई हो, आपके पास कंबल हो, सॉफ्ट राइट काइंड ऑफ पिलो हो, वरना आपको नेक में पेन रहेगा और आप सो नहीं पाएंगे। सॉफ्ट म्यूजिक प्ले कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी म्यूजिक आते हैं जिसमें आपके थीटा वेव्स रहते हैं रिकॉर्डेड, तो वो थीटा वेव्स वाले अगर आप म्यूजिक प्ले करते हैं या नेचर साउंड आप प्ले करते हैं तो दैट ऑल्सो हेल्प्स यू टू स्लीप, क्योंकि वो आपको रिलैक्स करते हैं। तो रिलैक्स करेंगे यानी कि अल्फा वेव प्रोड्यूस होगी, और अल्फा वेव प्रोड्यूस होगी तो थीटा वेव आने में ज्यादा मुश्किल
0: समय नहीं लगेगा।
1: और जिनको दिक्कत होती है ना, वो बुक रीड कर सकते हैं। जिनको बुक रीडिंग बोरिंग लगता है, दिस इज फॉर देम। देयर आर सम पीपल हु लव टू रीड बुक्स, ये उनके लिए नहीं है।
0: रात बैठे रहे
1: बिल्कुल ये उनके लिए नहीं है। पर जिन लोगों को पढ़ाई से दिक्कत है, वो पढ़ना शुरू कर दे
0: नींद आ जाएगी
1: डेफिनेटली। सो ये कुछ ऐसी चीजें हैं, एंड ऑब्वियसली रोजिका ये सब जानते हैं कि फिर कैफीन का यूसेज हमें कम करना है।
0: बिल्कुल जी दोस्तों, तो बहुत ही खास बातें आप सभी ने जानी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर से आप सभी के साथ मिलते हैं। और आप सभी उतनी देर के लिए इंजॉय कीजिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

0: दोस्तों, इस प्यारे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं इस बहुत ही खास बातचीत के साथ। तो आइए अपनी बातचीत को बढ़ाते हैं आगे। और नींद की हम बात कर रहे हैं तो नींद तो सबको प्यारी होती है, खास करके एग्जाम्स टाइम में बच्चों को तो बहुत ही ज्यादा प्यारी होती है। तो मैम, अभी आपने बात की कि जैसे हमारा जो सोने का टाइम होता है तो उस टाइम हमें जो है फोन खुद से दूर रख देना चाहिए, लेकिन ये बहुत कम लोगों के साथ हो पाता है कि फोन दूर रखते, क्योंकि हमें जरा सी नोटिफिकेशन की आवाज सुनाई देती है तो फटाफट से हम फोन उठा के जो है देखने लग जाते हैं कि किसका मैसेज आया है और किस चीज की नोटिफिकेशन है। तो मतलब वहां पे हम खुद को मैनेज नहीं कर पाते। तो इसमें हम किस तरह से अपना एक रोल प्ले कर सकते हैं, कैसे हम अपनी उस टाइम स्लीपिंग को ध्यान में रखें?
1: देखिए, हमारे पास जब फोन आया ना तो फोन में लोगों ने बहुत डिफरेंट प्रकार के फीचर्स डाले
0: जी,
1: लेकिन अफसोस की बात यह हम उन फीचर्स का सही तरीके से उपयोग नहीं करते
0: जी।
1: तो जब व्हाट्सएप है या कोई भी ऐसी चीज है तो बेसिकली हर एप्लीकेशन की सेटिंग्स में आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आपको नोटिफिकेशन साउंड जो है आप उसको ऑन ऑफ या वाइब्रेशन पे कर सकते हैं। तो जहां तक रही मैसेजेस की बात, तो आप अपने फोन के नोटिफिकेशंस को ऑफ कर सकते हैं और आप अपने स्लीपिंग मोड को भी एक्टिव कर सकते हैं, एक स्लीप मोड भी आता है। आप अपना इंटरनेट ऑफ कर सकते हैं, जिससे कि जो भी हो, इंस्टाग्राम हो, कोई भी प्रकार का सोशल मीडिया हो, वहां से लोग आपको अप्रोच ना कर पाए, और जो सिर्फ इमरजेंसी वाले हो, आपके पेरेंट्स हो या कोई, तो वही आपको रीच आउट कर सके अगर कोई इमरजेंसी या परेशानी की बात हो तो।
0: जी बिल्कुल। और साथ ही मैं ये भी जानना चाह रही थी कि जैसे हमने बात की कि हमें कम से कम जो है 6 से 9 घंटों की जो है नींद लेनी चाहिए, वो हमारे लिए ज्यादा बेहतर रहती है, लेकिन कई बार हमारे साथ ऐसा भी होता है कि हमारा दिन में भी हम बैठे हो तो सोने का मन करता है, जरा सा बेड पे बैठे कि लेटे या नींद आ जाती है, जरा सा बैठे कि नींद आ जाती है। तो वो मतलब एक पैटर्न बिगड़ा हुआ ही कह सकते हैं। जब पैटर्न वो डिस्टर्ब हो जाता है तो हम ज्यादा ही नींद में चले जाते हैं, तो 9 के फिर 18 घंटे ही मान के चलो, तो उसे हम कैसे समझे या किस तरह से उसे किस वे मिले?
1: देखिए, जब भी कोई चीज बैलेंस से दूर जाएगी उसका डिसऑर्डर में तब्दील होना लिखा है। अब ऐसे समझिए कि जब भी ड्यूरेशन, इंटेंसिटी या फ्रिक्वेंसी बढ़ जाए या कम हो जाए, जैसे हम लोग बहुत पहले भी इस बारे में बात करी है, जब भी ऐसा हो तो यानी कि कोई ऐसी चीज है जो डिसऑर्डर का शेप ले रहा है। तो जब नींद बहुत ज्यादा आए वो भी एक डिसऑर्डर का हिस्सा है, और जब नींद कम हो जाए वो भी एक डिसऑर्डर का हिस्सा है, और इसका डायरेक्ट एक इम्पैक्ट पड़ता है फ्रॉम स्ट्रेस।
0: जी, तो दोस्तों ये स्लीपिंग डिसऑर्डर में जाके जो है रिलेट हो जाता है, तो इसके बारे में भी हम जरूर बात करेंगे, क्योंकि स्लीपिंग का ये एक बातचीत ही इतनी गंभीर है और लंबी है और गहराई से जानने वाली बातचीत है, क्योंकि ये नींद का इशू जो है ना ये सबके साथ है, और चाहे बड़े हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे कोई भी है, किसी भी एज ग्रुप के साथ हम निकल रहे हैं तो हर किसी को ये फेस करनी पड़ती है। तो ये बातें जानना हमारे लिए बहुत जरूरी, तो इसलिए हम आपको एक एक बात जो है गहराई के साथ बताना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि शॉर्ट वे में बता के जो है, एक कहते हैं ना कि सर का बोझ नहीं उतारना है हमें, धीरे धीरे करके आपको स्टेप बाय स्टेप जो है सारी बातें आप सभी तक पहुंचानी है, ताकि आप अपनी जो एक डेली रूटीन है उसे भी एक सही ढंग से सेट कर सकें, और अपनी हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को, फिजिकल हेल्थ को, सारी चीजों को न्यूट्रल वे में जो है बैलेंस कर सकें। तो ये जो स्लीपिंग डिसऑर्डर है ये हम अगले एपिसोड में आप सभी के साथ इस पे एक डिटेल में बातचीत करेंगे, गहराई से जानेंगे कि स्लीपिंग डिसऑर्डर जो है वो क्या होता है, किस तरह से होता है, और इसमें क्या प्रोसेसिंग रहती है, कैसे हम खुद को इससे बचा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम में हमने बात की है स्लीपिंग की। तो देख लीजिए दोस्तों, नींद कहने के लिए छोटा सा शब्द है, लेकिन इसकी आज हमने गहराई को जाना है तो बहुत ज्यादा है। तो मैम, आज की ये बहुत ही खास बातचीत मुझे उम्मीद है कि हमारे दोस्तों के लिए बहुत ही एक इम्पैक्टफुल रही होगी, है ना, अपनी जिंदगी में प्रभावशाली रहेगी अगर वो चाहेंगे, क्योंकि जिसे अपनी हेल्थ से लगाव होगा, जो चाहते हैं कि हम हॉस्पिटल्स के चक्कर ना लगाएं, तो वो जरूर अपने फोन को भी खुद से दूर रखेंगे और वो नोटिफिकेशंस जो है वो भी ऑफ रखेंगे। तो आज के कार्यक्रम का समय फिलहाल जो है हमारा इस समय अलविदा लेने का हो चुका है। है। तो बहुत ही खास बातचीत आप सभी के साथ साझा की है दोस्तों। अगले एपिसोड में फिर से आप सभी के साथ मुलाकात होगी, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगी कि अगर आपको इस बात से संबंधित अभी भी कोई कंफ्यूजन है, अभी भी कोई डाउट है, तो आप मैम के क्लिनिक में जाके उनके साथ जो है डिस्कस कर सकते हैं या उन्हें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो मैम अपने सेंटर का और फोन नंबर जो है हमारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।
1: जी, सेंटर का नाम है वैराग्य माइंड एंड वेलनेस सेंटर और फोन नंबर है 93541-34057। ये शीला धर्मशाला में स्थित है।
0: जी दोस्तों, तो आप सभी को हमने अपना नंबर भी बता दिया है और सेंटर का पता भी बता दिया है। तो अभी भी कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो जरूर आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं या आप जो है सेंटर में जाके डायरेक्ट जो है डिस्कस कर सकते हैं। तो फिलहाल दीजिए अनुमति अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका और
1: प्रियशिका
0: कार्यक्रम संपन्न करने की। फिर होगी मुलाकात आप सभी के साथ एक नई बातचीत के साथ। तब तक आप सभी इसी तरह से हंस रही, मुस्कुराते रही और गुनगुनाते रहिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

बनी हुई है। राज्य में 115,000 से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली है। सबसे अधिक प्रभावित जिले शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट हैं। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 61 हो गई है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। वहीं गुजरात में तेज बारिश के बाद बचाव और राहत कार्य युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में राज्य के 265 क्षेत्रों में बारिश हुई है। राज्य राहत आयुक्त ने 5 मौतों की पुष्टि की है। मौसम विभाग ने कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गंगा क्षेत्र, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आज मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले में सख्त

मंत्री ने कहा है कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए नया विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में अगले सप्ताह पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों से जुड़ी मांगों को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के साथ आज एक और दौर की बातचीत करेगी। इससे पहले कल भी नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी। श्री नड्डा ने इस बैठक को सकारात्मक बताया था। सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि संसद के बाहर मीडिया को दिए गए बयान के साथ एआई का दुरुपयोग कर छेड़छाड़ की गई और एक डीप फेक वीडियो तैयार कर उसे गलत सूचना फैलाने के उद्देश्य से प्रसारित किया गया। सोशल मीडिया पर साझा किए गए पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि इस मामले में आज सुबह चाणक्यपुरी पुलिस थाने में FIR दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि फर्जी वीडियो बनाने, प्रसारित करने या उसे बढ़ावा देने में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल NS राजा सुब्रमणि ने कहा है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शनों के कारण 30,000 सेना के जवानों ने इस्तीफा दे दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि ये वीडियो फर्जी है और AI से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा से टेलीफोन पर बातचीत की और राज्य में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। सोशल मीडिया पर पोस्ट में श्री शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों में केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शर्मा ने कहा कि असम के लोग इस कठिन समय में प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन और अटूट समर्थन के लिए उनके प्रति अत्यंत आभारी हैं। प्रधानमंत्री मोदी कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम से प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे। इस अवसर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 400 से अधिक युवा प्रतिभागी प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे। खेलों में ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। उन्होंने 190 किलोग्राम भार उठाकर तीसरा पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एथलीट झंडू कुमार को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कुमार के प्रदर्शन को शानदार बताया और कहा कि ये उपलब्धि उनके अदम्य शक्ति, अटूट दृढ़ संकल्प और वर्षों के अनुशासित प्रयासों का सशक्त उदाहरण है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: सचू ने
2: 5 YouTube वीडियो को लाइक करके 5 लोगों को स्क्रीनशॉट भेजने से पर वीडियो 500 रुपए अर्न करे।
1: क्या बात कर रहा
2: है? हाँ देख,
1: तुझे क्या लगता है ये जेन्यून है?
2: अरे हमें कहाँ पैसे देने हैं, ट्राई करके देखते हैं ना। ला देख। अरे हाँ यार, मुझे 500 रुपए मिल गए, इट मीन्स ये जेन्यून है।
1: अरे अब तो मुझे भी ये करना है।
2: 20,000 रुपए में प्राइम मेंबरशिप लेने से 50,000 तक अर्न कर सकते हैं।
3: क्या बात है यार।
4: अरे ठहरो, ये क्या करने जा रहे हो?
2: ऑनलाइन टास्क से पैसे कमा रहे हैं।
4: अननोन लिंक पर क्लिक करके पैसे देकर ऐसा नहीं करना चाहिए। SMS, WhatsApp, ईमेल या टेलीग्राम पर आने वाले किसी भी अननोन लिंक को क्लिक ना करें। कोई भी अजनबी अगर आप

0: से दूर रहें। सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बिना पूरी जानकारी के कोई भी वित्तीय लेन देन ना करें और उनकी लालच भरी बातों में तो बिल्कुल ना फंसें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में।
1: अब उठो, देश के भाग जगाने हैं आपको, निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं आपको। अब गोना गोना जगमग जगमग होना ही है, अब ठान के स्वच्छता की ज्योत जागी रहे, स्वच्छता की ज्योत जागी रहे।

0: पर एचआईवी कभी न दूं।
1: अगर आप मां बनने वाली हैं, तो एचआईवी टेस्ट जरूर करवाएं। सरकारी अस्पताल के आईसीटीसी में सलाह और एचआईवी टेस्ट मुफ्त है और गोपनीय भी। बच्चे को एचआईवी से बचाने के लिए जल्द पता लगाना और वक्त पे दवाई दिलवाना जरूरी है।
2: एक कदम जिंदगी की ओर।
3: जितनी होशियारी करनी है कर लो, जितनी चालाकी करनी है कर लो, जितनी बेईमानी करनी है कर लो, जितनी फरेबी चाल चलनी है चल लो, लेकिन याद रखना जब तुम्हारा कर्म तुम्हारे पास लौट कर आए तो उस समय हैरान मत होना, उस समय परेशान मत होना, उस समय घबराना मत, क्योंकि जो आपने किया है, अगर छल किया है, कपट किया है, किसी के साथ गलत व्यवहार किया है, तो वो कई गुना होकर आपके पास जब लौटेगा उस समय आश्चर्य मत करना, क्योंकि कर्म की अदालत में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। जैसा किया है वैसा भोगना ही पड़ेगा। कर्म के सिद्धांत को कोई बदल नहीं सकता। जय बिहारी जी के।

0: अरे भैया, ये आप सबने हेलमेट क्यों पहना है? ये तो बाइक वाला हेलमेट है ना।
1: अब आप नहीं पहन रहे तो सोचा हम ही पहन लेते हैं।
2: असलियत में हेलमेट किसको शोभा देता है ये तो सबको पता है। बाइक चलाते वक्त सर बचाएं, हेलमेट पहने। वेयर अ हेलमेट ऑलवेज बिकॉज हेलमेट सेव्स।
3: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: सुबह से मुंह फुला के घूम रही है ये।
6: मेरी बीवी को पता चल गया मैं किसी और से प्यार करता हूँ।
5: किससे?
6: वो मुझे भी नहीं पता, वो बस इसे ही पता है, रात को सपने में देखा था ना।

दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका, हाजिर हो गई हूं आप सभी के लिए कार्यक्रम लेकर पंजाबी गीतों का ये प्यारा सा सफर। बिल्कुल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से सफर में। तो आइए बढ़ते हैं इस सफर में आगे और आप सभी को लेकर चलते हैं एक खूबसूरत से पंजाबी म्यूजिकल ट्रैक के सफर में।

दोस्तों आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं पंजाबी गीतों का। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और कार्यक्रम में सुनाते हैं आप सभी को ये प्यारा सा पंजाबी गीत।

291.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन कार्यशाला और आप सभी पंजाबी गीतों का कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिता के साथ। तो आइए श्रोताओं बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं ये प्यारा सा म्यूजिकल ट्रैक।

दोस्तों, इस खूबसूरत से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम पंजाबी गीतों में। तो आइए फिर से लेकर चलते हैं आपको एक और प्यारे से गीत की तरफ। एंजॉय कीजिए ये खूबसूरत सा पंजाबी गीत।

दोस्तों आप सभी अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ जुड़े हुए हैं 91.9 MHz पर। और आज का ये कार्यक्रम यानी कि पंजाबी गीतों का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों बहुत ही खूबसूरत सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया बिल्कुल, और आप सभी एंजॉय कर रहे हैं पंजाबी गीतों का कार्यक्रम अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से लेकर चलते हैं आपको एक और पंजाबी गीत की तरफ। इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

तो 91.9 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना रेडियो रिंजन धर्मशाला, और आप सभी इस समय जुड़े हुए हैं पंजाबी गीतों के कार्यक्रम में। बिल्कुल, कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं अगला ये प्यारा सा खूबसूरत सा पंजाबी गीत।

दोस्तों उम्मीद करते हैं इस प्यारे से पंजाबी गीतों के सफर को आप सभी इंजॉय जरूर कर रहे होंगे। बिल्कुल, आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से सुनते हैं एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों आप सभी एंजॉय कर रहे थे पंजाबी गीतों का ये प्यारा सा सफर अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला गूंज।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।
1: हर घर

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: सचुन है।
2: पांच YouTube वीडियो को लाइक करके पांच लोगों को स्क्रीनशॉट भेजने से पर वीडियो 500 रुपए अर्न करे।
1: क्या बात कर रहा है?
2: हाँ देख,
1: तुझे क्या लगता है ये जेन्यून है?
2: अरे हमें कहाँ पैसे देने हैं, ट्राई करके देखते हैं ना। ला देख। अरे हाँ यार, मुझे 500 रुपए मिल गए, इट मीन्स ये जेन्यून है।
1: अरे अब तो मुझे भी ये करना है।
2: 20,000 रुपए में प्राइम मेंबरशिप लेने से 50,000 तक अर्न कर सकते हैं।
3: क्या बात है यार।
4: अरे ठहरो, ये क्या करने जा रहे हो?
2: ऑनलाइन टास्क से पैसे कमा रहे हैं।
4: अननोन लिंक पर क्लिक करके पैसे देकर ऐसा नहीं करना चाहिए। SMS, WhatsApp, ईमेल या टेलीग्राम पर आने वाले किसी भी अननोन लिंक को क्लिक ना करें। कोई भी अजनबी अगर आपको ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करने के लिए कहें तो उसे बिल्कुल भी डाउनलोड ना करें। ऑनलाइन टास्क के जरिए ज्यादा पैसा कमाने के लालच देने वाले विज्ञापनों से दूर रहें। सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बिना पूरी जानकारी के कोई भी वित्तीय लेन देन ना करें और उनकी लालच भरी बातों में तो बिल्कुल ना फंसें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में।
5: अब उठो, देश के भाग जगाने हैं आपको, निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं। अब कोना कोना जगमग जगमग होना ही है। अब ठान के मुद्दे स्वच्छता की ज्योत जागी रहे, स्वच्छता की ज्योत जागी रहे।

0: पर एचआईवी कभी न दूं।
1: अगर आप मां बनने वाली हैं, तो एचआईवी टेस्ट जरूर करवाएं। सरकारी अस्पताल के आईसीटीसी में सलाह और एचआईवी टेस्ट मुफ्त है और गोपनीय भी। बच्चे को एचआईवी से बचाने के लिए जल्द पता लगाना और वक्त पे दवाई दिलवाना जरूरी है।
2: एक कदम जिंदगी की ओर।
3: जितनी होशियारी करनी है कर लो, जितनी चालाकी करनी है कर लो, जितनी बेईमानी करनी है कर लो, जितनी फरेबी चाल चलनी है चल लो, लेकिन याद रखना जब तुम्हारा कर्म तुम्हारे पास लौट कर आए तो उस समय हैरान मत होना, उस समय परेशान मत होना, उस समय घबराना मत, क्योंकि जो आपने किया है अगर छल किया है, कपट किया है, किसी के साथ गलत व्यवहार किया है, तो वो कई गुना होकर आपके पास जब लौटेगा उस समय आश्चर्य मत करना, क्योंकि कर्म की अदालत में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। जैसा किया है वैसा भोगना ही पड़ेगा। कर्म के सिद्धांत को कोई बदल नहीं सकता। जय बिहारी जी के।

0: भैया ये आप सबने हेलमेट क्यों पहना है? ये तो बाइक वाला हेलमेट है ना।
1: अब आप नहीं पहन रहे तो सोचा हम ही पहन लेते हैं।
2: असलियत में हेलमेट किसको शोभा देता है ये तो सबको पता है। बाइक चलाते वक्त सर बचाएं, हेलमेट पहनें। वेयर अ हेलमेट ऑलवेज बिकॉज हेलमेट सेव्स।
3: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: सुबह से मुंह फुला के घूम रही है ये।
6: मेरी बीवी को पता चल गया मैं किसी और से प्यार करता हूँ।
5: किससे?
6: वो मुझे भी नहीं पता, वो बस इसे ही पता है, रात को सपने में देखा था ना।

0: प्यार भरा नमस्ते है। बरसात दा मौसम चलिया है, कने बरसात दे मौसम च तुहां अपना जेड़ा ख्याल है से जरूर रखा दे होने ना। तो जरूर अपना जेड़ा ख्याल है सभी तुहां रखना है, कने इसी कन्ने अहां दे जेड़ा पहले श्रोता हां कन्ने जुड़ चुके हो ना, करते हैं तिना कन्ने गल बात। हेलो
1: रशन जी नमस्कार।
0: नमस्ते जी, स्वागत है
1: ठीक
0: जी।
1: ठाक
0: तो जी ठीक ठाक है
1: और
0: जी।
1: पछाणिया
0: जी नहीं जी, तो हकु तो ते
1: पछाणा ना तो साठ पछाण लांदे मिंजे तो
0: जी ता नरवाणे ते बोला दे जी।
1: हां नरवाणे ते दिखिया
0: जी
1: तोड़े परमानेंट श्रोता
0: जी जी
1: ओके। आज कौन टॉपिक चले आ चाची जी?
0: जी टॉपिक ए चलाया कि बरसात दे मौसम च अपना जेड़ा ख्याल है से किस प्रकार रखी सकदे
1: कने
0: बरसात दा जेड़ा इंजॉय भी करना जरूरी है ना जी।
1: हां जी हां जी हां जी,
0: कने सावन दा महीना भी चलिया इसी कने।
1: हां जी हां जी हां जी,
0: कले ते मिंजर जेड़ा ना, मिंजरा दे मेले जेड़ा ना सभी शुरू हो दे।
1: हां जी हां जी हो दे, पर कोनी जाना मैडम जी, रोड टूटियो अपना घर घरे मैडम जी, मिंजर मारी रुड़ जानी नहीं थपे
0: जी
1: है ना, अपना घर डोल बैठियो
0: जी। नंगोटे दी
1: मैं प्रिकॉशन कदा भी कर रहा
0: जी,
1: ज्यादा करी ना बरसाती से मैडम जी कर रहे हैं
0: जी जी। नगरोटी दी गल
1: बड़े बरसात होता निकला मत मैडम जी
0: जी जी।
1: हां
0: जी
1: नगरोटी ठीक ठाक है ना
0: जी? बिल्कुल ठीक ठाक है जी। कने नगरोटी दी गल करिए ता नगरोटी दा जेड़ा बाल मेल है सभी लगी पिया ना जी।
1: हां जी जा लगी पे मैडम जी, तनु ने रोका ता नेड़ा ने मैडम जी, नगरोटा ता नेड़ा पर मिंजे तो बड़ी दूर है, पानी केड़ा ओदा फेसबुक से दिखा पुल टूटी ओ भरमोरे दे
0: जी जी।
1: हम्म
0: जी, ता सही है कि बरसात दे मौसम च ख्याल
1: हां जी हां जी, आप भी प्रिकॉशन रखना पौनी मैडम जी, सारे बच्चे भी एडवाइस करना चाहिए ना कि रखा अपने कने बरसाती मत निकला बाहर, छो छो ना होना चली पोजे, कोई कुछ कुछ मन दे नहीं पेरेंट्स दो
0: जी
1: जी। प्रिकॉशन दिया कि अपना घर रहा मैक्सिमम बारिश से ना मैडम जी
0: जी, क्योंकि
1: अगर जरूरत होता है निकला ना कहीं कैसे जाना ना
0: जी जी।
1: आजकल छुट्टियां पी बच्चे तो मन दे, बच्चे
0: जी बच्चे नहीं बनते ना
1: बच्चे नहीं बनते मैडम जी
0: जी जी, पर मनाना पौंदे ना जी।
1: हां जी हां जी, मनते नहीं, गोप गोभी निकल जाते तां गायब हो जाते तां गायब हो जाते
0: जी। तां राकेश जी नरवाने दा मौसम कदे है इस
1: टाइम? मौसम ठीक है मैडम जी, धूप निकल इस टाइम ता
0: जी। अच्छा धूप लगी होवे?
1: हां जी मैडम जी
0: जी, ता खरी गल है ना जी।
1: हाँ जी मैडम जी
0: जी, तो आज तो हो कुंदिया गीत सुनना,
1: आज सुनना मैडम जी, कणी दी डाली च खोया भावी है, देर जा दे मारिया बरस कटो दियो आज च
0: जी जी जरूर
1: गीत
0: तो तक।
1: धन्यवाद मैडम जी, बरस कटो दियो आज
0: जी। अगले जेड़ा श्रोता है ना, तिना कन्ने भी कर देना गल बात। हेलो
2: हेलो, नमस्ते सर जी।
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है ना?
2: हां जी हां, ता ठीक ठाक है, तो बोला
0: जी। हां भी ठीक ठाक है जी, तो कुतु ते बोला दे कने तुहांदा ना के है जी?
2: मैं जी तुमरोटी ते बोला दा
0: जी। ता रमेश जी, क्या कामकार तुहां छेड़या, क्या करा दे?
2: बस कामकार कुछ नहीं छेड़या, क्या का बरखा जी ते मैं मैले बाप आ गए तो हाल ही अंदर दे
0: जी। अच्छा, इस टाइम मौसम साफ हुई होना तो तुहा सोचे घरे दे जेड़ा काम मन ती ना करी लैन दे ना जी।
2: अरे पाप हो लंदा तो मैं हुन सच्ची हो रहे ना, कभी सब मार लंदा तो गाड़ा को रख मिलन दे
0: जी जी। चलो अच्छी गल है जी। रमेश जी, आज तुहा कुंदिया गीत सुन गे जी।
2: आज का गाना सुन खिमने वाला
0: जी कुंदिया,
2: मेरा खिन्नू बड़ा उस्ताद
0: जी। अच्छा, मेरा खिन्नू बड़ा उस्ताद जी जी, जरूर ये फरमाइश तो तक पहुंचा दे जी। जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहांदा जी। तशो तो तुहां सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर जहां करने जुड़ सकते, कने आहां करने गल बात जिहड़ा से जरूर करी सकते। इसी गल बात करने आहां अपने कार्यक्रम दे सफर दा जिहड़ा आगाज ऐसे कर देन, तुहां सारी इन्हें सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने बन दी करे जितने भी श्रोता न तिना दी।

0: हाँ बोला दीन, रेडियो गुंजन धर्मशाला ते कने तो हाँ सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो तो शशि कने। इसी कने हाँ फिरी ते वापिस अपनी गलबात ऊपर पूछी होने कने तो हाँ सारे भी अपना अपना रेडियो सेट ऑन करी लिया होना है या मोबाइल फोन च सुना देन, तो जरूर मोबाइल फोन च अपना जेड़ा रेडियो है रेडियो गुंजन धर्मशाला जड़े से करी लिया चालू, कने इसी कने जड़ा फ्रीक्वेंसी है सभी तुहां तक पहुँचाई देन 91.2 MHz पर जड़े से तुहां अपना कार्यक्रम माटी दी मेह कार्यक्रम जरूर जड़े से सुनी सकदे। इसी कने हाँ अपने कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ाते न कने अगले जड़ा श्रोता न तिना कने कर देन गल बात। हेलो
1: नमस्कार मैडम जी।
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक
1: है मैडम जी?
0: जी बिल्कुल ठीक ठाक है जी, तुहां ठीक ठाक है न?
1: हां जी मैडम जी, हां जी
0: जी। तुहां कुथु दे रहने वाले न कने तुहांदा नाम की है जी?
1: पछाणल मैडम जी आज तुहां
0: जी धर्मशाला ते विजय जी बोला देना जी।
1: ठीक है, ठीक ठीक बोल छाणिया जी।
0: जी जी, तो विजय जी धर्मशाला वालों के क्या हाल चाल है?
1: ठीक है मैडम जी, ठीक है
0: जी। तो क्या काम कार छेड़े तो हाँ क्या करा दिया आज?
1: बस मैडम, बस रोटी खा ली है
0: जी। रोटी खा दी कने फ्री ते काम पर शुरू हुई हो ना जी?
1: हाँ जी मैडम जी
0: जी। और नवा ताजा मौसम के दिया इस टाइम धर्मशाला था?
1: मैडम इस टाइम तो बदल ही है
0: जी। अच्छा बदल ही है।
1: हाँ जी
0: जी। तो विजय जी आज तो हाँ कुंडिया गीत सुनना पसंद करिए।
1: आज गाना सुनाई दिया दिन मसरा दी राज दी जगह
0: जी। जी जी जरूर है गीत की फरमाइश तो तक पहुंचान दी जी। जुड़ने वास्ते धन्यवाद जी तुहांदा।
1: ठीक है मैडम ठीक
0: जी। तो श्रोताओं तुहां सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कन्ने। इसी कन्ने तुहां सारे भी कार्यक्रम ते सफर जहां कन्ने जुड़ी सकते। जुड़ने वास्ते जिहड़ा हुंदा नंबर है से तुहां तक एक बारी फ्री ते पहुंचाई देन, नंबर है 701-811-7091। ते नंबर तुहां तक पहुंचाई ते कन्ने अगले जिहड़ा श्रोता न सभी अहां कन्ने जुड़ चुके हो न, पुछदे न से कुत्थों ते बोला दे न कन्ने तिन्हां दा नां की है। हेलो
2: हेलो
0: हेलो, नमस्ते जी।
2: नमस्कार जी। नमस्कार
0: जी, स्वागत है जी तुहां दा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है न?
2: बढ़िया जी बढ़िया
0: जी। तुहां कुत्थों ते बोला दे कन्ने तुहां दा नां की है जी?
2: चैतड़ुए ते बोला दे
0: जी। चैतड़ुए ते बोला दे मंगल जी। जी ता मंगल जी, क्या काम कार तुहां करा दे कदिया की तुहां
2: दा? काम कार क्या करना, मौसम खराब है करी
0: जी। खराब मौसम च ता वैसे भी कोई काम कार नहीं होंदा ना जी?
2: नहीं जी,
0: जी, जी। वैसे भी बरसात लगी हो ता बरसात दे मौसम च अपना जेड़ा ख्याल है से ज्यादा रखने दी जरूरत होंदी, कने जेड़ा खान पान है उसका भी ध्यान रखना हां वास्ते जरूरी है ना जी?
2: हां जी, काम कार है नहीं ना पहले यार, हुन जगराते दी रुपए बंद हुई है, हुन सोचदे ना कुछ हो रहे
0: जी। जी अच्छा, जेड़ा जागरण है ना से हुन बंद हुई हो ना जी? जी नवरात्रे ची शुरू होने फिरी जी। ता आज तो हाँ कुंडिया गीत सुनना पसंद करके?
2: आज तो हाँ अपन गीत पसंद आवाई जे ता खरी गल
0: है जी। जरूर मेरी पसंद दा जेड़ा गीत है से तुहां तक पहुंचा दें जी। जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहां दा।
2: धन्यवाद
0: जी जी। ता श्रोताओं गल बात अगर हां समय दी करिए ता कार्यक्रम च जिहड़ा समय है से 2:15 होई न, कने मौसम उपर हाँ अगर कुछ अपनी जिहड़ा नज़र है से दौड़ान दे न, क्योंकि हर काम हाँ जो मौसम दे अनुसार करना चाहिदा। तो जिहड़ा 25 जुलाई दा जिहड़ा मौसम है से क्या इस टाइम बोला था मौसम जिहड़ा है से आम तौर पर तो हाँ जिहड़ा हंदे श्रोता ने सभी जुड़े थे धर्मशाला ते जुड़े थे नरवाणा ते जुड़े थे चैतड़ुए ते जुड़े थे, तो मौसम जिहड़ा है से बदलोखा ही है। कने जिहड़ा गूगल गूगल ते भी अहाँ जिहड़ा इसे पुछी लैंदे ने कि मौसम जिहड़ा इसे इस टाइम क्या बोला दा। अधिकतम तापमान की गल करिए 23 डिग्री सैलसीयस जिहड़ा इसे अधिकतम तापमान है, कन्ने न्यूनतम जिहड़ा तापमान है इसे वे 18 डिग्री सैलसीयस। तशो तो बारिश का जिहड़ा दौर है इसे रहना है, कन्ने तो जरूर बारिश का जिहड़ा मौसम है इस दे अनुसार चलना भी यहाँ वास्ते जरूरी है, क्योंकि समय के अनुसार हर चीज़ अच्छी लगती है। समय के अनुसार अगर अहाँ बरखा की ओर नज़र दौड़ाते हैं ता ही अहाँ अपने काम करते हैं, ता ही अहाँ अपने जिहड़ा काम आते हैं जो भी अच्छे तरीके ने करी पाते हैं। कने अहाँ का भी जिहड़ा हुण मन करा दा कि तुहां जो अगली फरमाइश की ओर लेकर चलते हैं, सुनते हैं अगली फरमाइश, तुहां सारी भी इंजॉय करा, क्योंकि इंतज़ार तुहां वास्ते बड़ा लंबा आंदा। इंतज़ार दी जिहड़ा घड़ी है से जरूर तुहां तक पहुँचाते हैं। कने काजल जी भी, काजल कपूर जी भी जिहड़ा फेसबुक के माध्यम ने अहां तक फरमाइश पहुँचा देन, तो जरूर तिना जो भी मेरी ओर ते प्यार भरा नमस्कार है, कने तिना दी जिहड़ा फरमाइश है जरूर अहां तिना तक पहुँचाते हैं। पर ये फरमाइश अहां जो आई होवे तंगलोटिया ते, कने तिना दा नाम है रमेश जी, तो जरूर तिना तक कहा गीत पहुँचा देना, तो सारे भी इंजॉय करा।

दर्शकों तो सारे सुनिया ये गीत जरूर तो सारे जी पसंद आया होने कने इस गीत की फरमाइश अहं जो आई वे धर्मशाला ते कने तिना दा ना वे विजय जी तो जरूर विजय जी तक अहां ये गीत पहुंचाया कने तो हां सारे भी इंजॉय कीता। इसी कने कुछ जानकारियां तुह तक पहुंचा देन समय दी ओर नज़र रखिए। नज़र तो रखना पौंदी है ना हर समय, क्योंकि समय के अनुसार चलना भी जरूरी है। थोड़ा दिया भी समय जड़ा है से अहाँ जो बड़ा कुछ सिखाई करी जानते हैं, पर अहाँ फिर भी अगर समय से सीख नहीं लेंदे ना तो अहाँ अपनी जिंदगी जो असफलता की ओर जरूर धकेल देना। तो 2:28 कार्यक्रम चो कने हिमाचल प्रदेश जड़ा शिक्षा दे अधिकार हैं नियम जड़ा 2026 दे जड़ा संशोधन हैं तिना जो लागू करने दे बारे जड़े से नियम जड़ा न से जारी करी दियो न। तो जरूर स्कूलों च जड़ा शिक्षा दे अधिकार हैं अहां दे जड़ा अधिकार हैं शिक्षा दा अधिकार है से हर व्यक्ति जो मिलना कितना ज़्यादा जरूरी है से तो हर सारे जो ही पता है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिक्षा जिला सचिव द्वारा जिले से 11 जुलाई 2026 जो अनुसूचित संशोधन नियम जिला ने से प्रति सभी जिले जिले से भेजी थी न। तो इसी कने जेड़ा भी यहाँ दे शिक्षा दे प्रति अधिकार हैं से हर स्कूल च लागू जेड़ा न से करी थी न। तो शो तो जानकारी तुम तक पहुँचाई कने इसी जानकारी के बाद अहाँ अपनी गलबात पर वापिस आन देन गलबात अह करा देन कि बरसात का मौसम है मानसून जड़ा से चल है कने कई बार अहाँ घूमने फिरने का जड़ा प्लान है से बनाई लैन देन चाहे बरखा होवे चाहे कुछ भी होवे अहाँ जड़ा से घूमना फिरना जाते जाते न। पहाड़ी इलाके न बारिश का मौसम है बारिश का दौर चलिया बरसात का दौर चलिया कई बार फैमिली भी मना करती है कि बरसात का मौसम है तो घरे ते बाहर जड़े से मौसम के अनुसार ही चलना, पर बरसात का मौसम है बारिश का भी कोई पता नहीं होता कलू बरखा ही आनी है कलू मौसम ठीक हो जाना है कोई भरोसा नहीं होता। फिर भी अगर हम मौसम की ओर नज़र नहीं दौड़ाते न कने अपना ही जड़ा अपनी ही मन मर्जी करते हैं ना तो कुती ना कुती से अहाँ जो नुकसान जड़ा है से दिंदी है। अहाँ कोई भी व्हीकल चलाते हैं तो सड़क पर थोड़ा दिया अपना जड़ा ध्यान है से ज़्यादा रखने की जरूरत होती, क्योंकि हर जगह घरे की गल करिए तो फिसलन जड़ा से तो जो मिलती है या पेड़ों की गल करिए तो पेड़ पर भी फिसलन जड़ा से मिलती है, पर जिहड़ा सीजनल फ्रूट हैं तिना पर अहाँ बार बार गल करते रहते हैं पेड़ा पर चढ़ते हैं ताई से अहाँ जो मिलते हैं कने तो हाँ सारे समझी होने ने कि कैदी गल मैं करा दी है। तो हर काम अगर अहाँ थोड़ी सूझबूझ कने करते हैं या अपना जिहड़ा ख्याल है से रखी कर करते हैं तो बड़ी अच्छी गल है, क्योंकि जिहड़ा अहाँ दा स्वास्थ्य है ना सही अहाँ वास्ते सबसे बड़ी दौलत है हर किसी वास्ते से दौलत है। अगर सही दौलत बिगड़ी आती है तो अहाँ का सब कुछ बिगड़ी आता है। तो अपना जिहड़ा स्वास्थ्य है उसका जिहड़ा ख्याल है से जरूर रखा, बच्चों का भी ख्याल जरूर रखा, क्योंकि घर अगर अहाँ रहते ना तो घर भी बच्चों का जिहड़ा ख्याल है से ज़्यादा रखने की जरूरत होती। कने इसी कने अहाँ भी तुहांदा जिहड़ा ख्याल है से जरूर रखते न। कने एक श्रोता न जिहड़ा फेसबुक के माध्यम कने जुड़े थे तो जरूर तिना तक अहाँ आएगी ते फरमाइश पहुँचा देन, तिना दा नाम भी जरूर तुह तक पहुँचाई देन। काजल कपूर जी हैं तिना तक कहाँ आएगी ते फरमाइश पहुँचा देन। अगर से फेसबुक लाइव दिखा देंगे तालू तो तिना दी फरमाइश अहाँ पूरी नहीं करी पाए, पर है रेडियो सेट ऑन किते होंगा तो जरूर तिना तक कहाँ ये फरमाइश पहुँचा देन तो सारे भी इंजॉय करा।

ये तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तुह सारे सुनिया ई प्यारा दिया गीत प्यारी दे धुंद फरमाइश।

फिर ते हाँ वापिस आई हो ना अपनी गलबात उपर कने तो सारी कार्यक्रम एंजॉय करा देने कने अपना जेड़ा कम कार है सभी करा देने न। तो शो तो हम गीते दे बोल बड़े प्यारे थे अगर तो हाँ ध्याने ने सुने होंगे। जिंदगी दा सफर कुछ अपने करने कुछ जेड़ा अपनापन है सहा जो देख रही जानते न। ठीक है अपनापन हाँ किस प्रकार रख देना या किस प्रकार अपनी जेड़ा बातचीत है से रख देना से यहाँ पर निर्भर करते हैं। कने गल बात अहाँ करा देना कि बरसात दे मौसम च अपना जेड़ा ख्याल है से हर जगह ते रखना जरूरी है। जरूरी हर जगह ते छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना जरूरी है। फास्ट फूड की गल करिए तो बरसात के मौसम च जड़े से बाहर का खाना बिल्कुल ही अहाँ जो नहीं खाना चाहिए पर सही अहाँ गलती जड़े से कुथी न कुथी करीन थे कने अपनी सेहत जो बार बार नज़रअंदाज जड़े से करना शुरू करीन थे। सेहत अहाँ दी अहाँ जो बोल दी कि जड़ा फास्ट फ्रूट हैं तिना जो मत खा पर अहाँ जड़े से अपनी जड़ा जीव है वो जो कुतु मना करी पाते पर सही जड़ा फास्ट फूड हैं तलियाँ चीज़ें हैं चाहे से चौमीन है चाहे मोमो हैं चाहे बर्गर है चाहे पिज्जा है चाहे कुछ भी है से खाना हाँ शुरू करी देना कने से अहाँ दे स्वास्थ्य जो कुथी न कुथी नुकसान पहुँचा दी है पर फिर भी अहाँ नज़रअंदाज कर देना कि अहाँ जड़ा स्वास्थ्य है से ठीक है। फिर ते अहाँ खाना शुरू हो जाते ना फिर ते अहाँ जो अहाँ जिहड़ा स्वास्थ्य से दस्तक देना शुरू करी है। दशो तो मैं ही बोलना चाहती कि घरे का जिहड़ा खाना है से अहाँ वास्ते सबसे बेस्ट है चाहे कुछ भी है। घरे का खाना अगर अहाँ खाते ना पानी घरे का जिहड़ा पीना साफ सुथरा पानी अहाँ वास्ते कितना ज़्यादा ज़रूरी है तो हाँ सारे जो पता है। इसी कन्ने जिहड़ा घरे का खाना है सभी अहाँ वास्ते ज़रूरी है कने किस पर अहाँ भरोसा करी सकते या किस प्रकार से खाना बने है या अहाँ वास्ते हरी सब्जियाँ कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो सर्दी जुकाम तो वैसे ही चले रहता कने कुथी ना कुथी अहाँ दी जड़ा सेहत है छोटी छोटी बीमारियाँ जड़ा से अहाँ जो दस्तक जड़ा है से ज़रूर दिनियाँ ना। तो इसी कन्ने अहाँ थोड़ा दे अग्गे बढ़ते ना कने अगली जड़ा फरमाइश है से तुहां तक पहुँचा देना तुहां सारी भी इंतज़ार बिल्कुल ख़त्म है तुहां वास्ते अहाँ भी सुन देना तुहां भी सुना थोड़ा देर इंजॉय यहाँ भी लैन देना क्योंकि गीत की जड़ा धुन है ना से अहाँ जो ज़रूर अपने ओर आकर्षित कर दी है तहाँ भी खोई आंदे ईसा धुंदा च तुहां भी ज़रूर ईसा धुंदा का जड़ा इंजॉय है से लिया।

0: है तुहां सारा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तुहां सारे कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो तो शशि कन्ने इसी कन्ने ये सफर अहां कुथी ना कुथी बरसात दे मौसम कन्ने भी इंजॉय करा देना तने थोड़ा दिया इस मौसम च अपना जेड़ा ख्याल है सभी जरूर रखा देना। ये जेड़ा पहाड़ हैं खूबसूरत पहाड़ खूबसूरत मौसम सुहाना ये मौसम कुथी ना कुथी अपनी ओर आकर्षित जड़े से जरूर करी लेंदे है। पर फिर मन कर दे कि थोड़ा दिया रुकिया उन तो हाँ सोचा दे उन्हें कि कहीं रुकिया क्योंकि मौसम तो अहाँ जो अपनी ओर जरूर आकर्षित कर दे पर कुथी ना कुथी अपना जेड़ा ख्याल है से मौसम के अनुसार रखना भी जरूरी है मौसम के अनुसार चलना भी जरूरी है। चलना कितना जरूरी है कई बार अहाँ जिड़ा अपनी सेहत का जिड़ा ख्याल है से प्रॉपर तरीके ने नहीं रख देना या इस भाग दौड़ भरी दुनिया च अहाँ कुथी ना कुथी अपना जिड़ा ज़्यादा समय मोबाइल फोन च दे देना या अपना जिड़ा काम पर फोकस करा देना कुथी ना कुथी अपनी सेहत जो नज़रअंदाज जड़े से करा देन तो ज़रूर नज़रअंदाज नहीं करने काम तो जो नहीं बोला था कि तुह अपनी सेहत जो नज़रअंदाज करा तो जो पता है कि काम भी मुझे करना पौना है खाना भी मुझे बनाना पौना है बच्चे न तो पढ़ाई भी करना पौनी है स्कूल च तो जो छुट्टियां पियां तो इसी करने हर चीज़ ज़रूरी है। तो इसी कन्ने ये भी सोची करी चला कि सेहत भी अहाँ वास्ते सबसे ज़्यादा ज़रूरी है छोटी छोटी जड़ा गल्ला न तिना दा ध्यान रखना अहाँ दा काम है। बरखा लगी हो है तो बरखा ज़्यादा भीगना नहीं है क्योंकि बच्चों का काम ज़्यादातर यही होंगे कि बरखा दा मौसम है चलो इंजॉय करना भी ज़रूरी है अपना बचपन भी ज़रूर इंजॉय करना है पर अपनी सेहत का ख्याल भी ज़रूर रखना है। सेहत है तो सब कुछ है इसी कन्ने अहाँ भी थोड़ी थोड़ी देर बाद तुहदा जेड़ा ध्यान है से गीत की ओर कर देना क्योंकि तुह जो भी इंतज़ार जेड़ा इसे ज़रूर रहेंदे कन्ने अगले जेड़ा श्रोता ने पहले तिना कन्ने कर देना गलबात फिर ही बाकी दियाँ गल्ला तुह तक कर देना गीत संगीत भी तुह तक पहुँचा देना। हेलो
1: नमस्कार महाराज जी।
0: नमस्ते जी स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च ठीक ठाक है ना।
1: बस ठीक ठाक महाराज जी मालिक दी मौजी है
0: जी मालिक दी मौज तो जरूर चाहिए ना जी।
1: जी महाराज
0: जी जी और नोईता जी
1: नोईता जी जनाब कोई कुछ नहीं है सब पुरानियां ही है ना
0: बिलकुल
1: महाराज बुरे आली खबर तो नहीं होना चाहिए पर जेड़ा कर्म च लिखे होंगे क्या पता तालू क्या हो जाना है
0: जी जी बोलने वास्ते तो हां बड़ा कुछ बोल लेंदे पर एक एक मिनट का हिसाब से चलिया रहा ना जी।
1: हाँ जी हाँ जी मिनट मिनट का हिसाब किताब देना पड़ता महाराज जी।
0: जी जी जी तो डाड़ी साइड कदी है मौसम
1: मौसम जनाब इस वक्त ठीक ही है धूप लगी हुई है बदल भी हुआ देखने धूप भी लगी हुई है
0: जी। डाडे ते बोला थे ना जी।
1: जी महाराज मैं डाड़ से बोला था जी।
0: जी हरदेव जी।
1: जी महाराज
0: जी ता धूप जेड़ा ऐसे लगी हो।
1: हां जी लगी है जी।
0: जी जी और नोईता जी डाट दी रौनक लगी है चमंडा मंदिर।
1: जी महाराज जी रौनक लगी है उस माता दी मेहरबानी सारे लोग ओ दे जा दे दर्शन करा दे ने हैं कने जेड़े मतलब जगह हर वाले लारन बाई दरन दा दरिया दे किनारे मत जा हैं।
0: जी जी उस साइड भी ज्यादा जेड़ा ऐसे दरिया है तो खतरा रहंदा ना जी बंडेर का।
1: हाँ जी हाँ जी खतरा रहा महाराज जी पर थोड़ा मतलब समझ भी है पंजाब नहीं समझे समझे जनाब
0: कई बार इना न्यूज वगैरह च दिखते रहते लगता कि नहीं ये गल भी जरूर श्रोता तक पहुंचाना जरूरी है कि अह जो अलर्ट बार बार मिलता है फिर भी अह उस जोखिम जो लेंदे ना जी
1: जी
0: जी, तो थोड़ा जी अपना, चलो लोकल तां पता है कि नहीं, बारिश दा पता नहीं होंदा, एकदम बरसात दा मौसम है, तां कल बरखा शुरू हो जानी है, कल जेड़ा दरिया न स्याही आने न जी।
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: जी, तां छोटी छोटी जेड़ा चीजां न तिन्हां दा ध्यान रखना आंदा ही काम है, कने अगर अहां अगला जेड़ा व्यक्ति है तीजो भी दस देना तां और भी अच्छी गल है ना जी।
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: जी, तां हरदेव जी कदिया लगता तो जो एक कार्यक्रम।
1: महाराज जी, तुम्हारा कार्यक्रम बिल्कुल अच्छा लगता जनाब, बिल्कुल अच्छा लगता। हाँ, सारे जो अच्छा लगता, जेड़े सुनते सुन सारे अच्छा लगता, बोलते बजाना चाहिए, पर टाइम ही उतना रखिया, क्या करना।
0: जी,
1: जी
0: सुनने वास्ते तोहंदा भी बड़ा बड़ा धन्यवाद जी, इतना ज्यादा तोहां रेडियो गुंजन धर्मशाला जो प्यार दिंदे ना जी।
1: जी महाराज जी,
0: जी, तो हरदेव जी आज तो हाँ कुंदिया गीत सुनना पसंद करके।
1: आज जी मैं भजन सुनना जी, बाबा जी दा, अगे
0: जी
1: अगे बाबा जी बैठे पीछे संगत सारी जी, जाग
0: जी रंग बिरंगा जहाज बने।
1: बनाया जी महाराज जी।
0: जी, जरूर ये गीत ये भजन तो तक पहुंचा दें जी, जरूर जुड़ने
1: ठीक
0: वास्ते धन्यवाद जी तो हाँ।
1: ठीक है महाराज जी, धन्यवाद।
0: जी, तो ऐशो तुम तो सारी भी कार्यक्रम दे सफर च जुड़ी सकते, पर इस सफर जो अगे बढ़ाते न कने फरमाइश अहाँ पहुँचाते न हरदेव जी तक, तो सारे भी इस फरमाइश जो इंजॉय करा, इस भजने जो जरूर इंजॉय करा, कने नहीं सुनते रे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

माटी दी मेहर कार्यक्रम तो हाँ सारे ही सुना दे थे अपनी रेडियो तो शशि कन्ने। इसी कन्ने तो हाँ सारे जो पता है कि इस कार्यक्रम का जेड़ा सफर है इसे तो हाँ तक रहा है 2 से 3 बजे तक। तो जरूर ये सफर उन्होंने हाँ जो बोला दे कि तू हाँ सारे अपनी रेडियो तो शशि जो दिया अनुमति कने जाते जाते फरमाइश भी जरूर तुह तक पहुँचा देने। तो हाँ हमेशा अपना जेड़ा ख्याल है से जरूर रखा कने अपने माता पिता का भी ख्याल जड़ा है से जरूर रखा कने अहाँ तुहों का ख्याल रखते हैं तो जरूर इसी कने तुह सारे ही अपनी रेडियो तो शशि जो दिया अनुमति।

आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: भी डाउनलोड ना करें। ऑनलाइन टास्क के जरिए ज्यादा पैसा कमाने के लालच देने वाले विज्ञापनों से दूर रहें। सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बिना पूरी जानकारी के कोई भी वित्तीय लेन देन ना करें और उनकी लालच भरी बातों में तो बिल्कुल ना फंसें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में।
1: अब उठो, देश के भाग जगाने हैं आपको, निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं आपको। अब गोना गोना जगमग जगमग होना ही है। अब ठान के मुद्दे स्वच्छता की ज्योत जागी रहे, स्वच्छता की ज्योत जागी रहे।

0: पर एचआईवी कभी न दूं।
1: अगर आप मां बनने वाली हैं, तो एचआईवी टेस्ट जरूर करवाएं। सरकारी अस्पताल के आईसीटीसी में सलाह और एचआईवी टेस्ट मुफ्त है और गोपनीय भी। बच्चे को एचआईवी से बचाने के लिए जल्द पता लगाना और वक्त पे दवाई दिलवाना जरूरी है।
2: एक कदम जिंदगी की ओर।
3: जितनी होशियारी करनी है कर लो, जितनी चालाकी करनी है कर लो, जितनी बेईमानी करनी है कर लो, जितनी फरेबी चाल चलनी है चल लो, लेकिन याद रखना जब तुम्हारा कर्म तुम्हारे पास लौट कर आए तो उस समय हैरान मत होना, उस समय परेशान मत होना, उस समय घबराना मत, क्योंकि जो आपने किया है अगर छल किया है, कपट किया है, किसी के साथ गलत व्यवहार किया है, तो वो कई गुना होकर आपके पास जब लौटेगा उस समय आश्चर्य मत करना, क्योंकि कर्म की अदालत में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। जैसा किया है वैसा भोगना ही पड़ेगा। कर्म के सिद्धांत को कोई बदल नहीं सकता। जय बिहारी जी के।

0: अरे भैया ये आप सबने हेलमेट क्यों पहना है? ये तो बाइक वाला हेलमेट है ना।
1: अब आप नहीं पहन रहे तो सोचा हम ही पहन लेते हैं।
2: असलियत में हेलमेट किसको शोभा देता है ये तो सबको पता है। बाइक चलाते वक्त सर बचाएं, हेलमेट पहनें। वेयर अ हेलमेट ऑलवेज बिकॉज हेलमेट से

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: मैं नहीं करूंगी आज के बाद तुम्हारा कोई काम। क्यों सुबह से मुंह फुला के घूम रही है ये?
3: मेरी बीवी को पता चल गया मैं किसी और से प्यार करता हूँ।
2: हैं? किससे?
3: वो मुझे भी नहीं पता, वो बस इसे ही पता है, रात को सपने में देखा था ना।

मेरे प्यारे दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से शुरू हो गया है कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने। मैं आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो लीजिए कार्यक्रम का पहला गीत प्रस्तुत करते हैं आपकी नजर।

गीत सुहाने नई पुरानी, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नई पुरानी। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

गीत सुहाने नई पुरानी, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नई पुरानी। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: सचिन है।
2: पांच YouTube वीडियो को लाइक करके पांच लोगों को स्क्रीनशॉट भेजने से पर वीडियो 500 रुपए अर्न करे।
1: क्या बात कर रहा
2: है? हाँ देख,
1: तुझे क्या लगता है ये जेन्यून है?
2: अरे हमें कहाँ पैसे देने हैं, ट्राई करके देखते हैं ना। ला देख। अरे हाँ यार, मुझे 500 रुपए मिल गए, इतने से ये जेन्यून है।
1: अरे अब तो मुझे भी ये करना है।
2: 20,000 रुपए में प्राइम मेंबरशिप लेने से 50,000 तक अर्न कर सकते हैं।
3: क्या बात है यार।
4: अरे ठहरो, ये क्या करने जा रहे हो?
2: ऑनलाइन टास्क से पैसे कमा रहे हैं।
4: अननोन लिंक पर क्लिक करके पैसे देकर ऐसा नहीं करना चाहिए। SMS, WhatsApp, ईमेल या टेलीग्राम पर आने वाले किसी भी अननोन लिंक को क्लिक ना करें। कोई भी अजनबी अगर आपको ऑनलाइन ऐप्स डाउनलोड करने के लिए कहें तो उसे बिल्कुल भी डाउनलोड ना करें। ऑनलाइन टास्क के जरिए ज्यादा पैसा कमाने के लालच देने वाले विज्ञापनों से दूर रहें। सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बिना पूरी जानकारी के कोई भी वित्तीय लेन देन ना करें और उनकी लालच भरी बातों में तो बिल्कुल ना फंसें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में।
5: अब उठो, देश के भाग जगाने हैं आपको, निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं आपको। अब गोना गोना जगमग जगमग होना ही है, अब ठान के मुद्दे स्वच्छता की ज्योत जागी रहे, स्वच्छता की ज्योत जागी रहे।

0: पर एचआईवी कभी न दूं।
1: अगर आप मां बनने वाली हैं, तो एचआईवी टेस्ट जरूर करवाएं। सरकारी अस्पताल के आईसीटीसी में सलाह और एचआईवी टेस्ट मुफ्त है और गोपनीय भी। बच्चे को एचआईवी से बचाने के लिए जल्द पता लगाना और वक्त पे दवाई दिलवाना जरूरी है।
2: एक कदम जिंदगी की ओर।
3: जितनी होशियारी करनी है कर लो, जितनी चालाकी करनी है कर लो, जितनी बेईमानी करनी है कर लो, जितनी फरेबी चाल चलनी है चल लो, लेकिन याद रखना जब तुम्हारा कर्म तुम्हारे पास लौट कर आए तो उस समय हैरान मत होना, उस समय परेशान मत होना, उस समय घबराना मत, क्योंकि जो आपने किया है अगर छल किया है, कपट किया है, किसी के साथ गलत व्यवहार किया है, तो वो कई गुना होकर आपके पास जब लौटेगा उस समय आश्चर्य मत करना, क्योंकि कर्म की अदालत में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। जैसा किया है वैसा भोगना ही पड़ेगा। कर्म के सिद्धांत को कोई बदल नहीं सकता। जय बिहारी जी के।

0: अरे भैया ये आप सबने हेलमेट क्यों पहना है? ये तो बाइक वाला हेलमेट है ना।
1: अब आप नहीं पहन रहे तो सोचा हम ही पहन लेते हैं।
2: असलियत में हेलमेट किसको शोभा देता है ये तो सबको पता है। बाइक चलाते वक्त सर बचाएं, हेलमेट पहनें। Wear a helmet always, because helmet saves.
3: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है। पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: सुबह से मुंह फुला के घूम रही है ये।
6: मेरी बीवी को पता चल गया मैं किसी और से प्यार करता हूँ।
5: किससे?
6: वो मुझे भी नहीं पता, वो बस इसे ही पता है। रात को सपने में देखा था ना।

नमस्कार श्रोताओं, FM बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला दो है सभी ट्यून कर रहा और आऊँ सचिन कपूर हाजिर बुझको जनाब तुंदे सभी रे रेडियो सेट में चोर बज गया था हाजिर तब उन्होंने बहना श्रोता है ना जी आकर जो किंदे बहुत सारे श्रोता जो खास कर इंदे जो सियाने तीन जो बड़ा इंतजार रहता यूथ जो भी इवन की इंतजार रहता और एरुआ तो है असू के कितने सारे इंदे हल्के हल्के बच्चे गए ने जो इवन की कस की कोई गुरुकुल स्कूल पढ़ते हैं कोई सैक्रेड हार्ट स्कूल पढ़ते हैं सो बच्चे सो वो की किया सो इनकी अपनी बोली अंदर की सो गल करते हैं है ना। तो मेरा मतलब ये हा कि इस स्कूल रे बच्चे के न सो सो ज़्यादा कॉल करते हैं और मतलब मेरा अर्थार्थ तात्पर्य ये आ कि चलिए सभी स्कूलें की सो अख प्रकार पढ़ाई बंदे अख प्रकार रे किया सो तड़ी इंग्लिश भी बोलते हैं है ना, लेकिन फिर भी यारे स्कूलें रे जो पेरेंट हैं तीन या अपनी बोली होगी कि सो जोड़ के रुख रो और LKG UKG रे बच्चे असू कॉल कर दे फर्स्ट रे बच्चे कॉल कर देता एक कार्यक्रम अभी यूनिकनेस था शो तो इस कार्यक्रम रे यही यूनिकनेस था कि जो इन द मोटिव कि चलो जानकारी तो तुझ तक पहुँचानी ना अपनी बोली अंदर असू है ना।

पाँच बजे तक रिश्वत हो है ना। ता कॉल करी सकते हैं ना अपना पसंदीदा गीत हुनने वास्ते, अपना गादा गीत हुनने वास्ते। नंबर आऊँ तू होगे शेयर करी नो, साझा करी नो, 7 0 8 8 1 1 7 0 9 1 पर नंबर आक मौके फिरी, 7 0 8 8 1 1 7 0 9 1 पर तो है सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत क्या सो हो नहीं सकते हैं। श्रोताओं अपने क्षेत्र की जानकारी और वो गीत साझा कर सकते हैं। एक अल्लाह का खास ख्याल रहे श्रोताओं की जानकारी किया सो वीडियो मंच साझा करने लायक ज़रूर बुआ, जानकारी की सो वीडियो मंच दस लाइक ज़रूर बुआ जनाब। हाँ ना जी, ता चलिए जी आगाज री और चल बंदे ना बे कि करना आगाज था तू पता कि जरूरी बंदा आगाज था करना है यसू ता आगाज कर दें। नंबर में दसी था इस नंबर आमज तो है जुड़ी सकते हैं। आगाज तो पहले श्रोता हूँ थोड़ा केर धर्मशाला रे मौसम रे किनारे की सो नज़र दौड़ाए लंदे ने समय अगर हम गल करूँ श्रोता हूँ ता लगभग लगभग किया सो 19 डिग्री सेल्सियस रे आसपास किया सो मौसम दसु कर दसु के इस समय मौसम बन रहा। और न मेरी गल करूँ श्रोता हूँ जतियों अंग्रेजी में किया सो ह्यूमिडिटी बल देन कि हवा में नमी किया सो कितने हाँ ता सो लगभग लगभग 88% रे आसपास किया सो नमी है श्रोता हूँ। तो यह इस हमारा धर्मशाला धर्मशाला रा मौसम। ता चलिए जनाब आगाज कर लेन कार्यक्रम रहे इस गीता सोगे बने रहे तो सब आरजे सचिन कपूर सोगे गूंज अपने पन रहे और गूंज आज इतने भी इंदे प्यारे प्यारे श्रोता सोगी बन रहे। ये लेकर चल दे तू सब भी जो श्रोता हूँ इस गीत तरीके नारी।

0: शोध एफ एम बैंड 91.2 MHz पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रहा और आऊँ सचिन कपूर जी बिल्कुल हाजिर हाथ उन्दे वीडियो सेट में अपना गाधा कार्यक्रम लेकर इन दी अपनी गप्पा बहुत बहुत स्वागत है हार्दिक अभिनंदन है सभी होने वाले रहा सभी श्रोतागण रहा इन दे श्रोताओं से बिल्कुल कनेक्ट बच गए श्रोताओं और कुछ एक खास खबर के ना सो भी है तुसु तक पहुँचाने वास्ते बिल्कुल आतुर हिन आइए सभी पहले जानकारी पहुँचा दे फिर श्रोता जो कि है सो कनेक्ट जरूर करते हैं। हिमाचल सरकार की है श्रोताओं से सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त जो करू कर दिन लाभार्थी त्यारे आधार आधारित ई के वाई सी कराने वास्ते की है सौकी महीने अंतिम अवसर की असो दिता है श्रोताओं सरकार की स्पष्ट करी दिता है कि निर्धारित अवधि माँ की असो सत्यापन न कराने वाले लाभार्थी जो कि असो सामाजिक सुरक्षा पेंशन रे वास्ते पात्र नहीं मनना है ना और पेंशन लाभ प्रभावित भी किया सो बुझी सकते हैं श्रोतों सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता विभाग ने विभागे किया सो जुलाई 2025 में जिला और तहसील कल्याण अधिकारी रे माध्यमतों किया श्रोतों सो ई के वाई सी अभियान शुरू करो थू पहले ठेरी अंतिम तिथि की असो 28 फरवरी 2026 तक तय करी थी विभाग के अनुसार जिन्या लाभार्थी व सत्यापन अभी लिखी असो शेष आ तीनों अक महीने रे भीतर संबंधित तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय में पुजी करी कि असो ई के वाई सी पूरी करने हा जानकारी रा सिलसिला ही चलते रहना लेकिन चलते इन द श्रोतालय नमस्ते जी वेड़ी गुंजन माँ स्वागत है तुंदा
1: नमस्ते जी
0: नमस्ते जी नमस्ते
1: नमस्ते जी
0: जी कौन बल्लूंदन और कड़ी थों बल्लूंदन
1: वर्णिका
0: वर्णिका जी कंडी थों वर्णिका जी बहुत बहुत स्वागत है किनन कंडी आले
1: ठीक
0: अच्छा कंडी कड़ी ने तुंदे घर कंडी स्कूल के अतड़ी कड़ी ने
1: पचाईत करो अगो
0: पंचायत घर है अगो अच्छा क्या बात है चलिए था वर्णिका जी कस स्कूल पर दिन तो है
1: गुरुकुल
0: गुरुकुल स्कूल वाह वर्णिका जी हम तुंदे गल करो ही कर दा तो कि इन दे बहुत अले नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं सो गुरुकुल स्कूल पर दिन कुछ सैकड़े हड़ पर दिन तो सो भी किया अपनी बोली में गल कर दिन अच्छा मुझे ये दसा वर्णिका जी कि तू सो गद्दी बलना कुणी स्टार्ट करे मतलब मम्मी डैडी दादा दादी कुणी करवाए अपनी बोली हाँ जी
1: थोड़ी
0: इंडिया क्या बात है पर कसियों से के तो है अपनी बोली बोलना है
1: मासी ने बता रहा
0: मासी सिखाया
1: हां जी
0: अच्छा क्या नाम तुम्हारा मासी रा
1: वंशिका
0: अच्छा वंशिका ना चलिए ठीक है जी तुंदी मासी जो बिंदा नमस्ते या और तुसु जो भी की तो है इतनी अच्छी बोली की सो बल्लू कर देन अपनी बोली
1: यादी तुंदा स्टेशन सुन दिया मुझे बड़ा पसंद है तुंदा
0: अरे क्या बात है धन्यवाद जी और इन द स्टेशन ने इन दी एक खास कर एक कार्यक्रम किया सो इन दी पूरी कम्युनिटी रहा ना जी पूरे इन द जितने भी गाते मनु जड़ी जड़ी भी न जाए भरमौर न जाए लोल न जड़ी मर्जिन त्यारे सब भी रहे प्रोग्राम और तुंदा ये अच्छा पूरा हुन दे रोज
1: हां जी
0: क्या बात है अच्छा वर्णिका जी चलो तुसु थोड़ा हल्का ना सवाल पूछनो है कि क्या पसंद है तुसु इस कार्यक्रम मंच
1: गद्दी गाने
0: अच्छा गद्दी गाने और
1: तुसी जो अपनी गप्पा
0: अच्छा और चलिए
1: सब कुछ
0: चलिए वर्णिका जी तो है इतना गहरी बली तो सोई बहुत है कुंदन गीत होना पसंद कर ले जी क्या बात है ये वो वेरी सच्चे ना बंदे है क्या बात है चलिए जरूर होना ले वर्णिका जी तू सोए गीत
1: हां जी धन्यवाद
0: धन्यवाद जी धन्यवाद श्रोतो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर हवेली गुंजन धर्मशाला और आऊँ सचिन कपूर और आऊँ गाली करो करता था ना कि असोगे के या सो इंदा यूथ भी बनता इन द अपकमिंग जो यूथ असो भी बनता यानी कि हल्के बच्चे भी कार्यक्रम में जुड़ते हैं ना और सोगे सियाने तो बिल्कुल हिन्न हिन है ना तो बड़ा इम्पैक्टफुल ए कार्यक्रम रहता अपनी कम्युनिटी रहे कार्यक्रम अकादा कार्यक्रम खासकर और अकमुके फिर धन्यवाद देना चाहता बार बार देना चाहता इस मंच तो इन डायरेक्टर संदीप परमार सर जा की तो है आके प्लेटफॉर्म की सो रखुरा युवा वास्ते कि अपनी बोली में इच करी तो है बोली सकते अपनी रूट्स हो गए तो है कि सो जुड़े सकते हैं ना अपनी बोली जो तो है बोली ना सकते अपने विरासत में तो है वो जुड़ते हैं अपनी विरासत सो गए अपनी कितने इन दे सियाने के सो कितनी अच्छी अच्छी गल्ला के सो असू दस दर यह भी कोशिश कर दें कि कभी चंद्र भारद्वाज रहे माध्यम तो कभी राकेश रहे माध्यम तो राकेश भारद्वाज रहे माध्यम तो कभी इन दे अन्य और विशाल नेहरिया जी पूर्व विधायक इन दे धर्मशाला वे त्यारे माध्यम तो कभी इन दे जो गीत संगीत रहे इन दे गुणी कलाकार हिन नामी कलाकार हिन जाए सो सुनील राणा जी भून जाए ईशांत भारद्वाज जी भून जाए अन्य इन दे जितने भी कलाकार हिन शीला ठाकुर अन्य जितने भी कलाकार ने इंदे है ना तो यह भी कोशिश करते रहें कि इस प्लेटफॉर्म में माध्यम तो अपने यूथ्स होगी कि सो यह जुड़ाव रखना और अपनी बोली रहा जुड़ाव रखना खासकर बहरहाल इन दे अगले श्रोता होगी कनेक्टेड हिन नमस्ते जी
2: नमस्ते जी नमस्ते सचिन जी नमस्ते
0: नमस्ते जी नमस्ते
2: मैं राजू दारू बोलूंगा
0: अच्छा जी राजू जी नमस्ते क्या हाल चाल है ठीक ठाक ना
2: बढ़िया
0: बढ़िया जी और दारू वाले सभी हाल चाल ठीक ना
2: बढ़िया बढ़िया सब ठीक है
0: अच्छा कर कर लग रहे दारू वाले
2: लग रहे घा नदाई
0: अच्छा नदाई लग रहे चलिए आज तो मौसम थोड़ा ठीक ही रहो आज तक कमाने दिता हूँ ना
2: ठीक है बड़ी आज का
0: आज तक कमाई लो तो खा रहा है ना
2: हाँ जी हाँ जी हाँ जी
0: जी और कौन देने गीत तो होना पसंद कर ले
2: सचिन जी आपका गाना होना
0: जी
2: इसके मतलब मेरी ये क्या ले मुझे भूले हुआ जो याद हूँ ना
0: कोई गल ना बोलना इंसान री फितरत है जी
2: मुझे जो गुणु नाने मंजा बोली क्यों आने आज मेरे बाबू ही ना है
0: अच्छा आज मेरे
2: बाबू ही ना है
0: बाबू ही ना हो ईना तो नहीं कस की आज प्रोन का
2: ना है प्रोन का कस ईना को
0: अच्छा
2: पुराना में गाना मिलू है फोन लंदा
0: चलिए ठीक है बाचू जी जरूर तू सो गीत होने ले और तो है अपने कार्यक्रम सो के जुड़े तो दाऊ धन्यवाद करनो
2: ठीक है जी
0: नमस्ते जी चलिए और भी बहुत सारे श्रोता कॉल करो कर दिन सभी कनेक्ट है जरूर कर ले श्रोतों लेकिन थोड़ी थोड़ी जानकारी रही और भी की सोसु गाना बंदा और गीत संगीत भी इन दे श्रोता भी सब चीज़ अगेन सो बैलेंस करी करी चलना बिंदी तो चलिए अगस्त इन दा बुझेगो लेकिन ये गीत बड़ा प्यारा दसू है इन दी छोटी नी श्रोता कि सोने ते बुंदे वो माहियाँ पर एव वेरी सच्चे न बुंदे और दिलारे अच्छे न बुंदे पर चलिए मुझे लगता कि दिलारा अच्छा बुना कि ऐसा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है शो तो सच्चा बुना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना अच्छा बुना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सिर्फ और सिर्फ और वैसे भी ना शो तो यह हकीकत है इस ज़माने री इस दुनिया री की तुम्हें कुछ भी दसोगी ना लेकर गंदे सब कुछ इतनी तरह गंदा है ना सो प्यार बढ़ा अपना मिले जुलू करा और सच्ची यारी किया सो निभाओ करा

0: श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रो और कार्यक्रम इस वक्त इन दी अपनी गप्पा गैन सब बिल्कुल लाइव चल रही थी वेडियो सेट में इन दे बहुत सारे श्रोता सोगे कनेक्टेड हैं और बिल्कुल इस कार्यक्रम रे ताकत है कि इन दे जनता के स्वास होगे बढ़ते हैं श्रोतो ये कार्यक्रम रे इसरे ताकत भी है और अपनी रूट सोगे किया सो जनता बन देता खरा भी लगता है शो तो है ना। फिलहाल इन द अगले श्रोता सोगे कनेक्टेड हैं और इसी सो के श्रोतों अगली जानकारी भी तो सोगे की सो साझा करते चलते हैं कि प्रदेश सरकार के सो हिमाचल रे युवा जो विदेश में रोजगार रे अवसर बढ़ाने रे पहल किया सो करे हा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है किया सो प्रदेश में भवन एवं अन्य कामगार कल्याण बोर्ड रो विदेशी भाषा वे कोर्स शुरू करने की संभावनाएं क्या तीनों के असो दिशा निर्देश देते हैं शो तो राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश राज्य HPSEDC वे जरिए के असो युवा जो इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम रे या युवा जो भाषा कौशल रे वास्ते के असो नई विदेशी भाषा कोर्स शुरू करू कर दिया सुखु है बल्लू आ श्रोता हूँ कि सरकार विदेशी विदेशा में किया सो कार्यरत हिमाचली युवा भी सुरक्षा और कल्याण रे वास्ते किया का डिजिटल प्लेटफॉर्म भी विकसित किया सो करू कर दिया श्रोतों ते जानकारी रा पिटारे चलते रहना श्रोतों हिमाचल में अब केवल पर्यटन और प्राकृतिक सौंदर्य रा प्रदेश न रहना हा बल्कि निवेश वे राष्ट्रीय दौड़ भी किया सो अपनी मजबूती उपस्थिति दर्ज कराने लगो है अब नीति आयोग रे पहल है पूरी जानकारी तू सुन है पहुंचा ले लेकिन इन श्रोता के विश्वास को लगातार कॉल करो कर दें कनेक्ट कर दें। नमस्ते जी।
1: नमस्कार। नमस्ते जी। नमस्ते।
0: नमस्कार जी। नमस्कार।
1: सचनी क्या हाल है?
0: बहुत बढ़िया जी। कौन बोलूं देन और कड़ी थों बोलूं देन
1: जी? मैं अनिल जी धर्मशाला से।
0: अनिल जी ठीक ठाक राजी बाजी
1: जी? बिल्कुल ठीक जी बिल्कुल स्वस्थ है।
0: चलिए अनिल जी करे लग रहे ना क्या क्या करो कर दिन?
1: बस ये कुछ कुछ खास नहीं। मैं सोचते कि तो कुछ बता ही लेना। हाँ
0: जी अनिल जी आवाज क्लियर नहीं छूँ दी।
1: मतलब मैं तो है कुछ बता ही लेना कुछ समय तो आने बता ही लेना।
0: जी जी
1: अपने जो विचार है साझा कर लेना तो आने।
0: जी जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल ये प्लेटफॉर्म साझा करने वास्ते ये विचार जी।
1: तो सचिन जी आज मैं बोले तो पर्यटन के बारे में मैं थोड़ा पर्यटन के बारे में बोल लेना।
0: जी जी
1: मैं शुरुआत से कर रहा ना
0: जी।
1: देखा सचिन जी तो हम पर्यटन की गल करते हैं पर पर्यटन के मामले से सारी बात फिर फिलहाल अलग वो जीरो है।
0: अच्छा
1: मैं इसे बारे थोड़ी देर गलत थोड़ा हस्क से करा कर रहा
0: जी
1: क्योंकि हार्डली सिर्फ पिछले कल मेरा बेटा गया था अपने केदारनाथ।
0: अच्छा
1: रिसेंटली कल मतलब
0: जी
1: कल से वापस आया उससे
0: जी।
1: तो उससे मैं तुझे घटना सुनाया कर रहा
0: जी
1: कि सर जो फोटो इतना ब्यूटीफुल लग गया
0: जी
1: कि मैं बोला वाकई यार मैं तो उत्तराखंड में ऑलरेडी रह चुके हैं पर मैं देखा कि केदारनाथ में वाकई में ब्यूटीफुल है उषा कहीं नो डाउट क्योंकि खासे थी कि सबसे तो पर्यटन तो जल ऊपर पूजे था है तो तू एक बोर्ड लग गया मंदिर करना है
0: जी
1: किस तरह पता क्या रखा सिर्फ दर्शन नहीं कर्तव्य भी निभाए और अपना 2 किलो कचरा नीचे लेके जाए अपना 2 किलो कचरा नीचे लेके जाए मतलब केदारनाथ बिल्कुल हाइट पर है लोग इतने जाते हैं अपना कचरा ले जाते तो कचरा फैलाते इस कचरे को नीचे ले ना तेरा मैंडेटरी कितना कचरे हो कचरा बैग च ले जाना फिर नीचे नीचे इसी डिस्पोज करना
0: जी।
1: तो अगर इस सीरीज भी अगर इं करना तो थोड़ा क्या पर्यटन या धर्म थोड़ा धर्म सही हिमाचल खूबसूरत नहीं हो सकता
0: जी। एक काम आहां ता नहीं करना आहां ता एक ब्रिज है ता एक ब्रिज है ये काम कर देने एक काम तो है MC ऑफिस आ रहे बल्ला अपने पार्षद जो बल्ला है ना और तू सो लगता कि ये भूना चिंदा था अपने विधायक जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सुधीर शर्मा जी तीन होगी चिकरी तो है कि या तेरे ऑफिस में जो भी बैठ दें तीन तक तो है जानकारी कि ऐसा पहुंचाई सकते बहरहाल तो है। चलिए वीडियो रे माध्यम तो ये जानकारी पहुंचाओ कर दें था सो बहुत अच्छे
1: और
0: होगी कि ऐसा इस
1: सजनी
0: कार्यक्रम जो होने देना तो तू है क्या चांद दें तू है बस अपनी डिमांड रखा। मुझे पता है इस समय कि ऐसो ऑफिस रहे जितने भी सुधीर शर्मा जी रहे ऑफिस रहे जितने भी मेम्बर्स हैं सो इस कार्यक्रम जो ज़रूर होने देन का जो कि इस कार्यक्रम के जरिए तुझे बहुत कुछ चीज़ अगेन सो पता लग दिन की धर्म शाला में किया सो आम जनता क्या चाव कर दे क्या ना तो है क्या चांद देन ये डिमांड जरूर रखा कि क्या क्या धर्मशाला में किया सो भूना चिंदा कूड़े कचरे जो लेकर कस प्रकार रही तो है सोच रख देन।
1: देखो मैं तो अभी जितनी ऐसा एरी जितने खूबसूरत है ना करते तो इतना अच्छा लोग अपनी दायित्व समझ समझ रहे थे
0: जी
1: अकाउंटेबिलिटी मना कर दे सिर्फ
0: जी
1: प्रशासन भी तो
0: जी
1: सारे लोग क्या नहीं मना कर दे सारे लोग को इसके बाद भी कचरा जगह जगह पॉलिथीन बैग फैले हो बुरा हाल है तो होते कोई एक फोटो दस का मतलब कि इस फोटो जो आकाश है ना
0: जी
1: बिल्कुल डार्क मतलब डार्क ब्लू है ना तो मैं किस पूछे जगह है देखिए हैरान हुआ कि सारे एरिया जो आकाश है ना से धुंधला नजर आ गया धुंधला कर सा आकाश से फोटो से बिल्कुल बिल्कुल मतलब बिल्कुल डार्क ब्लू नजर आया करता तो देयर मतलब जिस डिफरेंस था तो मैं बोला भाई सारी चीज दिखने सुंदर नजर आया करती तो अहां लोग क्या पीछे है इधर रीजन है ना तो देखा भाई आज से कोई 15 साल पहले गल है मुझे पता कि एक दिल्ली का कॉन्टेस्ट होया ये रियलिटी था रियलिटी दिल्ली का कॉन्टेस्ट और ड्राइंग कॉन्टेस्ट होया तो तू दिल्ली के बच्चे थे कॉन्टेस्ट से हिमाचल के बच्चे थे तो दिल्ली के बच्चे मतलब तू आकाश शो करना था इस मतलब सीनरी जीते नहीं तो तेरा
0: जी
1: बच्चिया ना दिल्ली के बच्चे ने आकाश बनाया ना तो
0: जी
1: धुंधला बनाया धुंधला बनाया जो कि हिमाचल के बच्चे ने आकाश बनाया था इस टाइम सब मतलब ब्लू बनाया तो तेना तेना पूछा कुनी जेड़े ऑब्जर्वर होंगे बोले जी आपने आकाश धुंधला क्यों बना दिया तो दिल्ली का बच्चा रिप्लाई दिया बोले बोला कि अहा मतलब अहा ब्लू आकाश दिखे नहीं कहना हिमाचल बोले जी साढ़े का आकाश ही नीला होंगे बोलिया तो मैं चाहता कि आने वाला मैसेज है कि इतू आकाश धुंधला हो गया है सब तो बड़ा रीजन है इस चीज बारे कहना फर्क है चलो हम लोग नहीं जाग गए ना ये सारा सारे इक्वलिटी बनती दायित्व तो बनता कि हाँ इस एरिया जगह जगह जगह जगह खूबसूरत बना खुद बनी सरकार पर डिपेंड आ रहा है ना क्यों सरकार तो व्यवस्था कुछ नहीं कर रही है सारा सारे का दायित्व तो है सारा साझा बर्तन है ताकि आने वाली जी सारी जनरेशन सारी पीढ़ी है ना तो बोल मैं बुजुर्ग वाकई सी शिक्षा देगी मैं बोलता मैं पता चाहता कि साढ़े वाल एक सुनते सुनते कारा नहीं होनी चाहिए सारे संस्कार होने चाहिए कारा पाओ छोटी बोलना चल चल गई पर सारे संस्कार अच्छे होने चाहिए
0: चलिए ठीक है जी तो है जो गल रखे सो होप सो है सब ये होने ले और तो है पहले गल
1: मतलब
0: रखी थी कि इन धर्मशाला में ऐसा कौन या लेकिन जहन है बल्लू की तो है क्या है अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहते थे तो है बड़ा अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू भी किया सो अपना रखुआ होप सो किया है सब की ऐसा कोशिश ज़रूर कर ले कि अपने शहर जो किया सो है स्वच्छ भारत की ऐसा बनान और स्वच्छतारी और के न सो है सब की ऐसा ज़रूर बढ़न बाकी कुछ तो है चांदे हिन स्वच्छता रे बारे में बढ़ना तो सो तो है ज़रूर सो इस नंबर पर के ऐसा मैसेज कर सकते हैं ऐह तुंदी गल किया सो ज़रूर जड़ तक जस्ट डिपार्टमेंट तक पहुंचाने बोले जरूर पहुंच ले जनाब
1: जी धन्यवाद धन्यवाद
0: धन्यवाद जनाब। श्रोता एफ एम बैंड 91.2 MHz पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रहा और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा गया ने सो चल रही हिंद आइया कार्यक्रम जो फिलहाल है हगू लेकर ही चलते हिंद श्रोतों और इस कार्यक्रम माफ़ करे इस कार्यक्रम जो कि सो थोड़ा करे आगू बढ़ देने इस गीता री और चल देना और इतों बाद फरमाइश रद और के सो भी पूरा कर देना बने रहे जुड़े रहे आर जे सचिन कपूर सो के गूंज अपने पन रहे और गूंज आज इतने भी प्यारे प्यारे इंदे श्रोतागण तैयारी।

0: শুধু এফএম ব্যান্ড 91.2 মেগাহার্টজ পর রেডি গুঞ্জন ধর্মশালা তো হ্যাঁ সবই টিউন করো আর কার্যক্রম মিনতি হ্যাঁ আপনি গপ্পা তো হ্যাঁ বিলকুল লাইভ হোনো কর দে হিন আপনে আপনে রেডিও সেট মা তা চলিয়ে আবার দারনুরি কিনারিয়া সুকিয়া সো জরুর গানা হা রাজু জি রে ফরমাইশ হা তা সো ফরমাইশ ভি কিয়া মেরে জোবনু नरा ने है ना ये गीत भी किया सो असू जरूर होना ना हाँ बहरहाल तो सब असू के कनेक्ट हो सकते हैं चौथो 7088809 पर नंबर अक मौके फिर 7088809 पर तो है सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत किया सो हो नहीं सकते हैं अपने क्षेत्र की जानकारी अगोगे किया सो साझा कर सकते हैं श्रोतों एरा कि अजकल बरसाड़ा है बलू कर दिन कि ज़्यादा सफ़र किया सो ठीक नहीं और ज़्यादा सफ़र तो है कर दिन तकर कनकर का मतलब यात्रा है बल्लू कर दिन है श्रोतों की ज़्यादा इस समय ठीक नहीं है तेरा टाटा सुमो गिरे चट्टान चट्टाना मंच या चट्टान सारे ऊपर लुड़ो श्रोतों और तेरा मन उड़े किया सो मौत बुझ गई उदयपुर किलाड़ मार्ग पर किया सो श्रोतों ए दर्दनाक हादसा किया सो सामने आहा भरा निंद श्रोता सू के कनेक्टेड हैं नमस्ते जी माफ कर श्रोतों डिसकनेक्ट किया सो बुझ गया था कॉल तो सब कर सकते हैं जी 7088809 पर नंबर एक मौके फिर आऊँ कनेक्ट कर लूँ हाँ 7088809 पर तो सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत किया सो होने सकते हैं बो घाटी में किए श्रोतों सो सेनारा सर्च ऑपरेशन किया सो तेज हुआ हा खराब मौसम और भारी पत्थर बीच किया सो जवान ने किया सो थोड़ी करी गति थमी थी यारे कांगड़ा जिला वे शाहपुर क्षेत्र में श्रोतों स्थिति की सो बो घाटी में बदल फटने थो आई भयंकर आपदा रेबा दबे भारतीय सेना की सो सर्च ऑपरेशन तेज करी दिता है श्रोतों और सेना की टीम में किया सो प्रभावित स्थल पर पुजी करी बड़े बड़े पत्थर और मलबे वे बिच किया सो दबी मनुरी संपत्ति भी तलाश व्यवस्थ किया तलाश व्यवस्थ किया सो अभियान तेज करूँगा बहरहाल इन अगले श्रोता सुगी कनेक्टेड हिन पुस्तन कुंडल नमस्ते जी हेलो नमस्कार जी माफ कर जी न जाने करो डिसकनेक्ट बुझ गए छू कर देने इंदे श्रोता ता बिल्कुल श्रोतों और मनुरी संपत्ति की सो तोपू कर दे इंदी भारतीय सेना वाकई मैंने इंडियन आर्मी था श्रोताओं जड़ी मतलब चीज़ा असंभव बुझगन दी तड़ी इंडियन आर्मी जो हद लिया सो संभव करी दिन दिन असंभव थो संभव सो कर दिन नमस्ते जी
1: नमस्कार सचिन कपूर जी गुड इवनिंग
0: वेरी गुड इवनिंग जी नमस्कार कौन बोल लूंदेन और कड़ी थो बोल लूंदेन
1: सचिन कपूर जी प्रवीण पठानिया वलुदा
0: क्या बात है अगर आऊं
1: खन्यारे वलुदा
0: हां जी
1: खन्यारे हूं प्रवीण पठानिया वलुदा
0: प्रवीण जी अगर आऊं गलत नहीं हां तो है हिमाचल प्रदेश पुलिस में अपनी सेवाएं दिच्छु कर दे हैं और तुम तो बहुत एक फेमस गीत है ओ मेरी लाड़ी तेरे नखरे बड़े भारी बहुत बढ़िया प्रवीण जी तो बल्ले तो ठीक ठाक ने
1: बस बढ़िया प्रोग्राम
0: लेकिन अगल जो मैंने एनालाइज करे हा कि तुंदे इस गीत रे ज्यादा फरमाइश है वो मेरी लाड़ी तेरे नखरे बड़े भारी
1: चलो पब्लिक दा प्यार आ बाकी तुंदा रेडियो गुंजन दा जेड़ा सपोर्ट आ सो असी यो कि चलो करदे रहन गाने जान जाने टाइम टू टाइम
0: बिल्कुल प्रवीण जी, लेकिन ये कंटेंट के तो है क्रिएट करो तो है बड़ा अद्भुत कंटेंट क्रिएट कर रहा है, और इतनी बचत हो कि ऐसा तुसु इतना प्यार मोड़ो करता है
1: हाँ जी, हाँ जी, ये था
0: जी।
1: मेरा कंटेंट में तत्पर ज्यादा पब्लिक का प्यार।
0: जी, बिल्कुल।
1: अच्छा बीबू जी,
0: आज
1: गाना होना तो आज तुम तो करो फोन। हाँ
0: जी, कौन दिन की थोड़ा
1: जी, हाँ
0: तुसु।
1: जी, तो मिंजर लग पे है मेला शुरू होने देता हूँ।
0: जी बिल्कुल
1: तो कुंजू चंचलो रो गीत कपड़े यहाँ धोआ छम छम रोआ कुंजू। हाँ
0: क्या बात है, क्या बात है, फोग होना चंद दिन तो है।
1: जी,
0: चलिए ठीक है प्रवीण जी, जरूर तू सुकून जो चंचलो रहा ये गीत है जरूर होने ले, है
1: ठीक है जी, थैंक यू
0: ना जी।
1: सचिन कपूर जी।
0: चलिए धन्यवाद जी, और प्रवीण जी तू सो है बहुत जल्द की सो रेडियो रे माध्यम तो भी तुम लाइव इंटरव्यू की सो जरूर कर ले,
1: बिल्कुल
0: ताकि
1: जी, धन्यवाद,
0: थोड़ा
1: मैंने भी तो है
0: बहुत।
1: टाइम दे लिया था।
0: बिल्कुल
1: जरूर,
0: बिल्कुल, तो सुकाल के से ज़रूर कर ले प्रवीण जी।
1: ठीक है जी,
0: ठीक
1: थैंक
0: है
1: यू,
0: जी, नमस्ते।
1: ओके जी, नमस्ते जी।
0: श्रोताओं एफ एम बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून गुरु, और एक कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा गैन सो बिल्कुल लाइव चल रही है तुम्हें वेडियो सेट में वेड़ी गुंजन धर्मशाला मंच आइए जी। फिलहाल कार्यक्रम जो होगा बढ़ते हिन्न और फरमाइश और के सो पूरा करते चलते बने रहा जुड़ी रहा रेडियो गुंजन।

ছোট এফএম ব্যান্ডে কেন দি শামলা বা 2 MHz পর ভেড়িগুঞ্জন ধর্মশালা তো হ্যাঁ সব বিয়ে টিউন গুরু আর এই কার্যক্রম আর যে সচিন কাপুর সোকে বিলকুল লাইভ ফোন কর দেন আপনি আপনি রেডিও সেট মা তাই এ সত কার্যক্রম যে হগু বড়েন দেহিন আর লেকে চল দে তু সব বি যে থোড়া কারি আর হগু আর बिल्कुल श्रोता हूँ पूरे दिन री थकान वह बात किया सो इंसान अपने घर जुगाना चाहता है ना शांत शांत वातावरण यानी कि अपने घर जुगाना चाहता है और चैन री निंदर किया सो सुना चाहता है चैन रखाना किया सो खाना चाहता है और श्रोता हूँ कुछ नए सपने किया सो भी संजोई लेंदा है कुछ नए अच्छो तिनी सपने संजूरे बुंदे जो नव सपने हेरदा कि मुँह करें करना या इं करें करना सो भी किया सो तिनी संजूरे बुंदे और तैयारी और भी किया सो ध्यान सिरा कदी कदी चली गंदा हा कि आऊँ भी करी सकदा हूँ ये भी करी सकदा हा दिन भर री थकावट तो बाद इंसान जो सकून रहे दुई बल किया सो तो ज़रूर चीन देन है ना बहरहाल लेके चलते तू सभी जो इंदे बहुत ही अच्छे गदयाली गायक और बिल्कुल हिमाचल प्रदेश पुलिस में अपनी सेवाएं दे चुके कर दे हिन प्रवीण जी तैयारी पसंद में ये गीत हिमाचली फोग बहुत प्यारा फोग कनैल राणा जी री आवाज़ में ये गीत है

छोटो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून को रॉ और कार्यक्रम इंदी अपनी का पाहुनु कर देती है। श्रोतों अब तो सुतों चाहिए था वाट फेरे रूब रूब उन्दन कुछ एक और खास जानकारी लेकर ही और गुड इवनिंग धर्मशाला मंच ते तक इंजॉय कर रहे तो है सब रेडी गुंजन धर्मशाला तुंदा अपना सामुदायिक रेडियो दो तो थो शोतो मिंजरा के सो बिल्कुल शुरू हिन 26 तरीक का तो है ना और हम मिंजर मा के सो में भी बड़ी पहले परफॉर्म कर रहा है। परिस्थिति कुछ ऐसी नहीं सिचुएशंस कुछ ऐसी इनकी घिची नहीं सकते इन्हें इंसान वाकई में ना इंसान शब्द ना बंदे कदी कदी मिंजल है अपने आप जो भी बयां करने वास्ते। लेकिन चलिए बल देना कि इंसान सोई बेहतरीन है जो हर परिस्थिति में ढलना किया सो सीखेगा। अच्छा फिलहाल आऊँ सचिन कपूर ले लेने तो सुधो इजाजत नमस्ते धर्मशाला इंजॉय कर रहे थे तेरे प्यारे दया गीत मिंजरा जो चलते सब इकट्ठे।

नमस्कार 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। अब आप सभी सुनेंगे आज का ये खास समाचार बुलेटिन रुचिका के साथ। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पर। एक माह में केवाईसी नहीं कराई तो रुक जाएगी सामाजिक सुरक्षा पेंशन। विदेशों में रोजगार के लिए शुरू किए जाएंगे विदेशी भाषा के कोर्स। निवेशकों की पसंद बन रहा हिमाचल पहाड़ी राज्य में तीसरा स्थान। देश में बनेंगे 3 बड़े केमिकल पार्क। 3030 करोड़ की योजना मंजूर। बीवीजी रामजी कानून लागू। 60 दिनों के पीक कृषि सीजन में बंद रहेंगे सभी सरकारी कार्य। अब समाचार विस्तार से।

हिमाचल सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रहे लाभार्थियों को आधार आधारित ई केवाईसी कराने के लिए एक माह का अंतिम अवसर दिया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अवधि में सत्यापन नहीं कराने वाले लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए पात्र नहीं माना जाएगा और पेंशन लाभ प्रभावित हो सकता है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने जुलाई 2025 में जिला और तहसील कल्याण अधिकारियों के माध्यम से ई केवाईसी अभियान शुरू किया था। पहले इसकी अंतिम तिथि 28 फरवरी 2000

हिमाचल प्रदेश राज्य के जरिए युवाओं इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम रही है। युवाओं को भाषा कौशल के लिए नए विदेशी कोर्स शुरू होंगे। सुखू ने कहा कि सरकार विदेशों में कार्यरत हिमाचली युवाओं की सुरक्षा और कल्याण के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी विकसित कर रही है। हिमाचल अब केवल पर्यटन और प्राकृतिक सौंदर्य का प्रदेश नहीं रहा, बल्कि निवेश की राष्ट्रीय दौड़ में भी अपनी मजबूती उपस्थिति दर्ज कराने लगा है। नीति आयोग के पहले इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026 में हिमाचल प्रदेश ने पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी में तीसरा स्थान हासिल कर ये संकेत दिया है कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद राज्य निवेशकों के लिए भरोसेमंद और आकर्षक गंतव्य बन रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में तीन बड़े केमिकल पार्कों की स्थापना के लिए 3030 करोड़ रुपए की एक नई योजना को मंजूरी की घोषणा की। इसके जरिए भारत को रसायन क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक में भारत औद्योगिक अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की विकास योजना रसायन भव्य रसायन को मंजूरी दी गई। ग्रामीण विकास विभाग ने नई दिल्ली के 1 जुलाई 2026 के आदेश के तहत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को आधिकारिक रूप से समाप्त करते हुए प्रदेश में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण यानी बीबीजी रामजी एक्ट 2025 लागू कर दिया है। नए कानून की धारा 6(1) और 6(2) के तहत अब वित्त वर्ष में 60 दिनों के पीक कृषि सीजन के दौरान इस योजना के तहत कोई भी सरकारी कार्य नहीं होगा। इस कदम का मुख्य उद्देश्य खेती के समय किसानों को आसानी से खेतिहर मजदूर उपलब्ध करवाना है ताकि कृषि कार्यों में कोई बाधा ना आए। उपमंडल धीरा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के 11 और सहायिकाओं के 28 रिक्त पदों को साक्षात्कार के माध्यम से भरा जाएगा। इच्छुक पात्र उम्मीदवार सादे कागज पर सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों के सत्यापित प्रतियों के साथ अपने आवेदन 18 अगस्त 2026 तक जमा करवा सकते हैं। साक्षात्कार 21 अगस्त 2026 को प्रातः 10 बजे उपमंडल अधिकारी कार्यालय धीरा में आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त उपमंडल पालमपुर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के 16 एवं सहायिकाओं के 32 रिक्त पड़े पदों को साक्षात्कार के माध्यम से भरने के लिए भी पात्र महिला उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पालमपुर उपमंडल के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है, जबकि साक्षात्कार 22 अगस्त 2026 को प्रातः 10 बजे उपमंडल अधिकारी कार्यालय पालमपुर में आयोजित किए जाएंगे। राज्यपाल ने आज श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय कटरा में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय श्री महाराजा रणवीर सिंह परिसर जम्मू तथा श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 4 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी शक्ति मीमांसा के शुभारंभ सत्र को संबोधित किया। संगोष्ठी का विषय 51 शक्तिपीठ भारतीय विरासत के आध्यात्मिक स्तंभ था। राज्यपाल ने कहा कि शक्ति केवल आराधना का विषय नहीं बल्कि सृजन ज्ञान करुणा साहस और राष्ट्र चेतना की शाश्वत ऊर्जा है। भारतीय दर्शन में शक्ति संपूर्ण सृष्टि की मूल प्रेरक शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित है। उनका कहना है कि शक्तिपीठ सदियों से भारत की सांस्कृतिक एकता को सुदृढ़ करते आए हैं और ये केवल पूजा अर्चना के स्थल नहीं बल्कि भारतीय कला स्थापत्य साहित्य संगीत और लोक परंपराओं के महत्वपूर्ण केंद्र भी हैं। सीबीएसई से संबद्ध सरकारी स्कूलों में 9वीं और 11वीं कक्षा की टर्म परीक्षाएं स्कूल स्तर पर आयोजित होंगी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए उपनिदेशकों को सूचना भेजी है। निर्देशों के अनुसार ये परीक्षाएं सीबीएसई के नवीनतम व स्वीकृत पाठ्यक्रम तथा प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृत वार्षिक शैक्षणिक कैलेंडर के अनुरूप आयोजित की जाएंगी। ये व्यवस्था सीबीएसई परीक्षा उपविधियों के अध्याय 7 क्लॉज 37(2) के अनुसार लागू होंगी, जिसमें कक्षा 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं विद्यालय स्तर पर आयोजित करने का प्रावधान है। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा का अधिकार कानून के तहत किए गए नए संशोधनों को अब प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में लागू किया जाएगा। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी जिला उपनिदेशकों को राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन हिमाचल प्रदेश प्रथम संशोधन नियम 2026

रूल्स को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। निदेशालय की ओर से जारी पत्र में बताया गया है कि 11 जुलाई 2026 को प्रदेश सरकार के शिक्षा सचिव द्वारा अधिसूचित संशोधित नियमों की प्रति सभी जिलों को भेज दी गई है। जिला उपनिदेशकों से कहा गया है कि वे इन संशोधित नियमों का अच्छी तरह अध्ययन कर और अपने अधीन आने वाले सभी स्कूलों के प्रधानाचार्यों, मुख्य अध्यापकों तथा खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी करें। इसी के साथ आज का ये खास समाचार बुलेटिन यही समाप्त होता है। धन्यवाद।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो श्रोतो, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

नमस्कार श्रोताओं, FM बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूं आपके साथ आपका अपना रेडियो जॉकी सचिन कपूर। बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है सभी सुनने वालों का, सभी श्रोतागण का। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और अपने घर में खुश होंगे और तंदुरुस्त होंगे। बहुत ज़रूरी है खुश रहना भी, तंदुरुस्त रहना भी श्रोताओं। तो आइए जी, कार्यक्रम का आगाज़ आप सभी बखूबी जानते हैं कि

जो है वो नमी इस समय बनी हुई है रेडी गुंजन धर्मशाला में। तो देखिए बहुत सारे प्यारे प्यारे गीत हैं हमारे पास जो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। श्रोताओं आइए कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ, चुरा के दिल मेरा गोरिया चली।

तो FM बैंड 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे रेडियो जो कि सचिन कपूर। जानकारियों का सिलसिला, जानकारियों का पिटारा यूं ही खुलता रहेगा। श्रोतो आइए अब लेके चलते हैं आप सभी को अगली जानकारी की ओर। बोघाटी में सेना का सर्च ऑपरेशन जो है वो तेज है। बिल्कुल श्रोतो, कांगड़ा जिला के शाहपुर क्षेत्र में स्थित बोघाटी में बादल फटने से आई भयानक आपदा के बाद अब भारतीय सेना ने सर्च ऑपरेशन जो है वो तेज कर दिया है। क्योंकि भारतीय सेना का वहां पहुंचना इसलिए हुआ है क्योंकि दुर्गम क्षेत्र होने के कारण जो है वो भारी मशीनरी जैसे जेसीबी और अन्य मशीनें जो है वो वहां पर पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल है और इसके कारण जो है अब सेना वहां पर पहुंची है और लोगों के जो घरों का सामान वहाँ दबा हुआ है, श्रोताओं अनेक चीज़ें वहाँ पर दबी हुई हैं, ज़रूरी चीज़ें लोगों के घरों की वहाँ दबी हुई हैं, तो उनको निकालने के लिए सेना जो है वहाँ पर तैनात हुई है, पहुँची हुई है श्रोताओं। और इसी बीच में हमारे विधायक धर्मशाला की आन बान शान श्री सुधीर शर्मा जी जो है वो भी वहाँ पर सबसे पहले जाकर उन्होंने जो है वहाँ लोगों की मदद की, श्रोताओं लोगों से जाकर मिले और उनकी एक वीडियो जो है वो काफ़ी वायरल भी हुई है इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर। सबसे पहले मिले और लोगों को जो है वो 25-25 हज़ार उस समय और 25-25 हज़ार उनके अकाउंट में डालने का जो है वो श्री सुधीर शर्मा जी जो धर्मशाला के विधायक हैं उन्होंने वो वादा किया है। और सबसे पहले जी बिल्कुल, ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि सबसे पहले वहाँ पर जो है वो पहुँच कर उन्होंने लोगों की मदद की, जो कि उनका इस प्रकार का उनका नेचर भी है, वो इस प्रकार की उनका जो है वो हमेशा से नेचर रहा है। तो हम छोटे होते उन्हें देख रहे हैं, वो हमेशा से ऐसे ही हैं, हमेशा आगे रहते हैं, चाहे वो बात कोरोना की हो, चाहे वो बात फिर कुछ इस प्रकार की आपदा की हो। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं श्रोताओं, और कार्यक्रम में अब आपको लेकर चलते हैं इस प्यारे से गीत की ओर। उसके बाद श्रोताओं बिल्कुल जो देश में हो रहा है उसके बारे में आपको रूबरू जरूर कर

शोधो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेडी गुंजन धर्मशाला, आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना आरजे वेडी जो कि सचिन कपूर। पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है जी। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब कार्यक्रम में श्रोताओं लेके चलते हैं आप सभी को इस विशेष जानकारी की ओर। जी बिल्कुल, जानकारियों का पिटारा तो श्रोताओं यूं ही चलता रहेगा, जानकारियों का पिटारा यूं ही खुलता रहेगा, गीत संगीत भी यूं ही चलेंगे, लेकिन अब लेके चलते हैं आप सभी को इस विशेष जानकारी की ओर श्रोताओं। जी बिल्कुल, शिक्षा व्यवस्था पर और पेपर लीक मामले पर। भारत में प्रतियुग परीक्षा केवल एक परीक्षा नहीं होती श्रोतों, ये केवल एक नौकरी या किसी उच्च शिक्षण संस्थान में प्रवेश की पर्ची नहीं है। ये करोड़ों युवाओं और उनके मध्यवर्गीय परिवारों की सालों की तपस्या, त्याग और सपनों की भीड़ है। एक छात्र जब किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी शुरू करता है तो सिर्फ वही नहीं पढ़ता श्रोतों, पूरा परिवार उस परीक्षा को जीता है। जी बिल्कुल, परिवार अपनी गाड़ी कमाई में से कोचिंग की फीस भरता है, किताबों का खर्चा उठाता है, रहने खाने का इंतज़ाम करता है, माता पिता अपनी ख्वाहिशों को मारकर जो है वो बच्चे का भविष्य तय करते हैं, बच्चे के भविष्य पर दाव खेलते हैं, दाव लगाते हैं। लेकिन सोचिए, जब महीनों और सालों की इस मेहनत के बाद खबर आती है पेपर लीक हो गया, तब क्या टूटता है? केवल एक परीक्षा रद्द नहीं होती, पूरी व्यवस्था से एक आम नागरिक का विश्वास हमेशा के लिए कट जाता है, वो दिल हमेशा के लिए टूट जाता है, वो दिल में दर्द जो है वो हमेशा के लिए रह जाता है, वो विश्वास टूट जाता है। पिछले कुछ वर्षों के आंकड़ों पर नज़र डाले श्रोता हूँ तो ये स्पष्ट होता है कि पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में जो है वो इस तरह की घटनाएं किसी एक राज्य की नहीं बल्कि हर एक राज्य की, किसी एक संस्था तक सीमित नहीं हुई है, एक राज्य तक सीमित नहीं रही है। मैं बात करूँ राजस्थान की रीट की परीक्षा हो या उत्तर प्रदेश की UPTET की, विभिन्न राज्यों के पुलिस भर्ती बोर्ड और कर्मचारियों चयन आयोग SSC के परीक्षा हो या फिर हाल ही में देश को झकझोर देने वाली NEET UG और UGC NEET जैसी वास्ट स्तर के मामले हों। ये घटनाएं बताती हैं कि समस्या अब कोई छिटपुट सी नहीं रही है, समस्या कोई अब छोटी सी नहीं है, ये समस्या बहुत बड़ी समस्या जो है वो हो चुकी है और काफ़ी बड़ा रूप जो है वो ले चुकी हैं। जब देश के सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल और शोध प्रवेश परीक्षाओं पर सवाल उठते हैं तो ये सीधे तौर पर हमारी शिक्षा व्यवस्था की बिल्कुल आहत करती है, हमारी शिक्षा व्यवस्था को ये चीज़ें। श्रोताओं जानकारियां और भी हैं, बिल्कुल शेयर करेंगे आपके साथ, बने रहेगा, जुड़े रहेगा वेड़ी गुंजन की इसी गूंज के साथ। लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर।

किया है और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना आरजे वीडियो जो कि सचिन कपूर। पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में। शो तो आइए कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और अगली कुछ जानकारी के साथ आपको रूबरू करवाते हैं। शो तो हिमाचल सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रहे लाभार्थियों को आधारित ई KYC कराने के लिए जो है वो 1 महीने का अंतिम अवसर दिया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अवधि में सत्यापन नहीं कराने वाले अब लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए जो है वो पात्र नहीं माना जाएगा और पेंशन लाभ प्रभावित हो सकता है। जी बिल्कुल, सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता विभाग ने जुलाई 2025 में जिला और तहसील कल्याण अधिकारियों के माध्यम से EKYC अभियान शुरू किया था। पहले इसकी अंतिम तिथि 28 फरवरी 2026 तय की गई थी। विभाग के अनुसार जिन लाभार्थियों का सत्यापन अभी शेष है उन्हें हर महीने के भीतर संबंधित तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय में पहुँच कर EKYC पूरी करनी होगी। तो जानकारियों का पिटारा श्रोतों यूं ही घोलता रहेगा, यूं ही चलता रहेगा श्रोतों। और साथ ही साथ जो आज हमारा शिक्षा व्यवस्था पेपर लीक मामले पर टॉपिक है, इस टॉपिक को भी हम जो है वो यूं ही निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे श्रोतों। अब सवाल ये उठता है कि हम इस मोड़ पर पहुँचे कैसे, जब सरकारी अफसर और प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की संख्या बेतहाशा बढ़ी तो परीक्षा तंत्र में जिस स्तर का नीतिगत और सुधार होना था, नीतिगत सुधार होना चाहिए था, वही नहीं हुआ। नतीजा यह हुआ कि स्कूल और यूनिवर्सिटी स्तर की पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं के स्तर पर एक बड़ा अंतर गैप जो है वो पैदा हो गया। इसी खाई को भरने के लिए देश में जो है वो असंगठित कोचिंग उद्योग का अभूतपूर्व विस्तार हुआ श्रोतों। आज स्थिति ये है कि बिना महंगी कोचिंग के किसी प्रतियोगी परीक्षा की, कोई भी कितनी भी प्रतियोगी परीक्षा को जो है वो क्रैक करना लगभग असंभव सा माना गया है। और ये असल बात है, ये सच बात है श्रोतों। मेडिकल क्षेत्र का ही उदाहरण ले लीजिए श्रोतों। सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीटें बेहद सीमित हैं जबकि अभ्यर्थियों की संख्या लाखों में है। दूसरी ओर निजी मेडिकल कॉलेजों में सीटें तो उपलब्ध हैं लेकिन उनकी फीस इतनी अधिक है कि एक सामान्य मध्यवर्गीय या निम्न मध्यवर्गीय परिवार के लिए जो है वो असंभव है, वो राह बंद हो जाती है। साधारण भाषा में कहूँ तो जब ईमानदारी से मेहनत करने वाले छात्र के सामने आर्थिक तंगी और लीक माफिया की दीवार खड़ी हो जाती है तो ये केवल एक शैक्षणिक विफलता नहीं रहती, यह सामाजिक असमानता, सोशल जिसको कहा जाता है इनक्वालिटी को और गहरा करती है। बिल्कुल, जानकारियों का पिटारा जो है वो यूं ही चलेगा शो, तो आंकड़े भी आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे हम। आइए लेके चलते हैं आप सभी को इस गीत की ओर।

श्रोता एफ एम बैंड 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं इस समय आरजे सचिन कपूर के साथ बिल्कुल लाइव अपने अपने रेडियो सेट पर रेडियो गुंजन धर्मशाला में। पुनः आप सभी का बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं श्रोताओं। आइए तो जानकारियों का सिलसिला तो यूं ही चलता रहेगा श्रोताओं, जानकारियों का पिटारा जो है वो भी यूं ही खुलता रहेगा वीडियो गुंजन धर्मशाला में। लेके चलते हैं आप सभी को श्रोताओं अब एक और जानकारी की ओर। मैं कहा जानकारियों का पिटारा सिलसिला जो है, जानकारियों का पिटारा सिलसिला जो है श्रोताओं वो यूं ही खुलता रहेगा, यूं ही चलता रहेगा। आप सभी बने हुए इस समय आरजे सचिन कपूर के साथ कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला सुन रहे हैं। आइए जी लेके चलते हैं आप सभी को अगली जानकारी की ओर। बिल्कुल श्रोताओं, प्रदेश सरकार ने हिमाचल के युवाओं को विदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाने की पहल की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश भवन एवं अन्य कामगार कल्याण बोर्ड को विदेशी भाषा के कोर्स शुरू करने की संभावनाएं तलाशाने के निर्देश जो हैं वो दिए हैं। राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश राज्य HPSEDC के जरिए युवाओं को इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम रही है श्रोताओं। युवाओं को भाषा कौशल के लिए नए विदेशी भाषा कोर्स शुरू होंगे। सुक्खू ने कहा कि सरकार विदेशों में कार्यरत हिमाचली युवाओं की सुरक्षा और कल्याण के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी विकसित कर रही है। इसी के साथ श्रोताओं, जो आज हमारा टॉपिक है, जिस टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे हैं श्रोताओं, उस टॉपिक को थोड़ा सा और आगे जो है वो ज़रूर हम बढ़ाते हैं जी। बिल्कुल, शिक्षा व्यवस्था पेपर लीक मामले पर हम चर्चा कर रहे हैं श्रोताओं। तो आइए इस मामले को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं, इस टॉपिक को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं श्रोताओं। अक्सर जब कोई पेपर लीक होता है तो सरकारें कुछ गिरफ्तारियां करती हैं, FIR दर्ज होती हैं और मामले को केवल कानूनी और व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर की समस्या बनाकर जो है इसे साइड कर दिया जाता है। लेकिन क्या कुछ लोगों की गिरफ्तारी से ये समस्या जड़ से ख़त्म हो सकती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पेपर लीक एक राजनीतिक या प्रशासनिक दावपेच से कहीं अधिक एक नीतिगत और संरचनात्मक विफलता है जी। बिल्कुल श्रोताओं, आज हमारी परीक्षा प्रक्रियाओं को गौर से देखिए आप। आधुनिक भारत में जहां हम डिजिटल क्रांति की बात करते हैं, वहीं हमारी परीक्षा जो है वो आज भी सुरक्षित और मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन का अभाव है। इसका समाधान क्या है श्रोताओं? हम सभी यही सोच रहे हैं। अगर हमें इस संकट से बाहर निकलना है तो हमें तत्कालिक बयानों से आगे बढ़कर नीतिगत और संरचनात्मक सुधार, पॉलिसी रिफॉर्म्स की ओर जो है वो कदम बढ़ाने होंगे। सुरक्षित एवं आधुनिक परीक्षा तकनीकी जी बिल्कुल, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, इसके बारे में हम आपसे ज़रूर चर्चा करेंगे श्रोताओं और ज़रूर आप तक ये बातें जो है वो ज़रूर पहुंचाएंगे। जानकारियों का सिलसिला जो है वो यूं ही चलता रहेगा, बने रहेगा आरजे सचिन कपूर के साथ। लेकिन चलते हैं आप सभी श्रोताओं को अब इस प्यारे से गीत की ओर।

श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना आरजे रेडियो जो कि सचिन कपूर। बहुत प्यारा सा गीत आप सभी ने सुना, क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं सनम। फिलहाल चलते हैं और आप सभी को सात समुंदर पार लेके चलते हैं, उसके बाद जानकारियों का पिटारा जो है वो यूँ ही चलता रहेगा, गीत संगीत का पिटारा यूँ ही खुलता रहेगा। श्रोतो आइए इंजॉय करते हैं इस प्यारे से गीत को थोड़ा सा, क्योंकि इंसान थका होता है, थकावट के बाद अपने घर की ओर रुख करता है, और इसी बीच में अगर ये मस्त भरा गीत हो जाए श्रोताओं तो एनर्जेटिक इंसान जो है वो हो जाता है साथ ही साथ।

शोधो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम इस वक्त गुड इवनिंग धर्मशाला जो है वो चला हुआ है, बिल्कुल लाइव ये कार्यक्रम चला हुआ है। आइए जी कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं श्रोताओ, और अगली कुछ जानकारियों के साथ जो है वो आपको रूबरू करवाते हैं श्रोताओ। जी बिल्कुल, हिमाचल में अब केवल पर्यटन और प्राकृतिक सौंदर्य का प्रदेश नहीं रहा बल्कि निवेश के राष्ट्रीय दौड़ में भी अपनी मजबूती उपस्थित दर्ज कराने लगा है। नीति आयोग के पहले जो है श्रोताओं इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलींस 2026 में हिमाचल प्रदेश ने पहाड़ी और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में तीसरा स्थान जो है वो हासिल कर ये संकेत दिया है कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद राज्य निवेशकों के लिए जो है वो भरोसेमंद और आकर्षक बन रहा है श्रोताओं। इसी के साथ श्रोताओं आपसे कुछ ही देर में यानी कि पूरे 7 बजे जो है वो आप सुनेंगे समाचार वेड़ी गुंजन धर्मशाला में। आइए तब तक सुनाते हैं आप सभी को ये प्यार।

0: आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
1: श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने की मांग स्वीकार कर ली है।
2: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो, और अगर है तो वो विड्रॉ हो, और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा, इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स है और प्रोटेस्टर्स है उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
1: श्री नड्डा ने कहा कि परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए दिए गए CGPA के सुझावों पर विचार किया जाएगा।
2: हम एजुकेशन के एग्जामिनेशन के रिफॉर्म्स के लिए जो आपका चार्टर है उस पर हम गहन चिंतन भी करेंगे, और आपके डेलीगेशन के साथ बातचीत करके जो कुछ भी हम डेलीबरेट कर सकेंगे वो हम करने का प्रयास करेंगे।
1: आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार को पूरी सहानुभूति है और सरकार नियमों के अनुसार अधिकतम मुआवजा सुनिश्चित करेगी। इससे पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिन से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से व्यथित हैं। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठा सकें, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया। श्री प्रधान ने कहा कि NEET UG परीक्षा में अनियमितताओं के बाद सरकार ने जांच CBI को सौंप दी और परीक्षा रद्द कर दी। भारतीय जनता पार्टी ने संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा से कांग्रेस के पीछे हटने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया है कि कुछ लोगों का एकमात्र उद्देश्य राजनीतिक लाभ उठाना है, ना कि छात्रों की चिंताओं का समाधान करना। दिल्ली पुलिस ने भारी भीड़ और यातायात जाम के कारण लोगों को नई दिल्ली क्षेत्र की ओर जाने से बचने की सलाह दी है। पुलिस ने यात्रियों को निर्देश दिया है कि वे देरी से बचने और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने सभी 18 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश द्वार यात्रियों के लिए खोल दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया। श्री मोदी ने कहा कि सारनाथ का भगवान बुद्ध से गहरा संबंध है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे दुनिया भर के लोग सारनाथ आने और भगवान बुद्ध के आदर्शों से जुड़ने के लिए प्रेरित होंगे। प्रधानमंत्री कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमेनिया की यात्रा पूरी करने के बाद नई दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं। यात्रा के अंतिम चरण में उन्होंने रोमेनिया के राष्ट्रपति निकुसेवर डेन के साथ व्यापार, निवेश, रक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक चर्चा की। हरारे में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 220 रन का लक्ष्य दिया है। ईशान किशन ने 81 और तिलक वर्मा ने नाबाद 60 रन की शानदार पारी खेली। ताजा समाचार मिलने तक जिम्बाब्वे ने 7वें ओवर में 4 विकेट पर 49 रन बना लिए थे। अनहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंच गई हैं। फाइनल में उनका सामना

आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: सचू ने
2: 5 यूट्यूब वीडियो को लाइक करके 5 लोगों को स्क्रीनशॉट भेजने से पर वीडियो 500 रुपए अर्न करे।
1: क्या बात कर रहा
2: है? हाँ देख,
1: तुझे क्या लगता है ये जेन्यून है?
2: अरे हमें कहाँ पैसे देने हैं, ट्राई करके देखते हैं ना। ला देख। अरे हाँ यार, मुझे 500 रुपए मिल गए। इटमीन्स ये जेन्यून है।
1: अरे अब तो मुझे भी ये करना है।
2: 20,000 रुपए में प्राइम मेंबरशिप लेने से 50,000 तक अर्न कर सकते हैं।
3: क्या बात है यार।
4: अरे ठहरो, ये क्या करने जा रहे हो?
2: ऑनलाइन टास्क से पैसे कमा रहे हैं।
4: अननोन लिंक पर क्लिक करके पैसे देकर ऐसा नहीं करना चाहिए। SMS, WhatsApp, ईमेल या टेलीग्राम पर आने वाले किसी भी अननोन लिंक को क्लिक ना करें। कोई भी अजनबी अगर आपको ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करने के लिए कहें तो उसे बिल्कुल भी डाउनलोड ना करें। ऑनलाइन टास्क के जरिए ज्यादा पैसा कमाने के लालच देने वाले विज्ञापनों से दूर रहें। सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बिना पूरी जानकारी के कोई भी वित्तीय लेन देन ना करें और उनकी लालच भरी बातों में तो बिल्कुल ना फंसें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में।
5: अब उठो, देश के भाग जगाने हैं आपको। निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं आपको। अब कोना कोना जगमग जगमग होना ही है। अब ठान के मुद्दे स्वच्छता की ज्योत जागी रहे। स्वच्छता की ज्योत जागी रहे।

श्रोतो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे वेड़ी जो कि सचिन कपूर। पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। श्रोतो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और लेके चलते हैं अगली कुछ जानकारियों की। और आपको दोस्तों नीट की बात करें तो वर्ष 2026 में हिमाचल के 18,648 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, 16,774 ने परीक्षा दी। 2025 में 19,665 रजिस्टर्ड थे। पिछले 10 सालों में हिमाचल से करीब 1.8 से 2 लाख छात्र नीट दे चुके हैं। जेई और अन्य परीक्षाओं को मिलाकर कुल 5 से 7 लाख हिमाचली युवा इन सालों में प्रतियोगी परीक्षाओं में उतरे हैं। लेकिन समस्या क्या है? 2022 सबसे काला साल रहा। पुलिस कांस्टेबल भर्ती में 75,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी प्रभावित हुए, परीक्षा रद्द करनी पड़ी। श्रोतों HPSSC की JOA IT समेत 70 से ज़्यादा परीक्षाएं प्रभावित हुई, 2500 पद जो हैं वो अटक गए। श्रोतों 2026 में फिर नीट रद्द होने से लगभग 13,000 हिमाचली छात्रों का दोबारा जो है वो तैयारी उन्हें करनी पड़ी। श्रोतों कल्पना कीजिए ज़रा, एक गांव का लड़का या लड़की, परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, फिर भी कोचिंग के लिए जो है वो कर्जा लेता है, रात रात भर पढ़ता है और फिर खबर आती है पेपर लीक। हमने 2 साल की मेहनत की सर, कोई कहता है सर, कोई कहता है मैडम, हमने 2 साल की मेहनत की थी, 75,000 छात्रों के साथ हमारा भी साल बर्बाद हो गया, अब दोबारा तैयारी, परिवार कैसे सहारा देगा। 2022 का पुलिस भर्ती घोटाला, 2026 का नीट विवाद, ये सिर्फ आंकड़े नहीं, हजारों परिवारों की टूटी उम्मीदें हैं। विशेषज्ञ के अनुसार हिमाचल में पेपर लीक की समस्या नीतिगत विफलता है। परीक्षा प्रक्रियाओं में बायोमेट्रिक AI निगरानी और सख्त जवाबदेही की कमी है। 2025 में सरकार ने सख्त कानून बनाया है, 3 से 10 साल जेल और 10 करोड़ तक जुर्माना, अब इसे सख्ती से लागू करना होगा। श्रोतों हमें चाहिए डिजिटल और बायोमेट्रिक सुरक्षा, परीक्षा आयोजक एजेंसियों पर जवाबदेही, कोचिंग माफिया पर नकेल। दोस्तों हिमाचल की मेहनती और सपने देख, दोस्तों हिमाचल के लोग, हिमाचल का युवा भी जो है वो मेहनती तो है ही है, मेहनती युवा है वो भी सपने देखने का हक जो है वो ज़रूर रखता है। पेपर लीक ना सिर्फ उनकी मेहनत चुराते हैं बल्कि उनके पूरे भविष्य को जो है वो अंधेरे में धकेल देते हैं। सरकार, प्रशासन और समाज तीनों को मिलकर इस व्यवस्था को बदलना होगा और तीनों को मिलकर इस व्यवस्था पर बदलाव जो है वो लाना होगा। श्रोतों आप सभी सुन रहे हैं इस समय वेड़ी गुंजन धर्मशाला और मैं हूँ सचिन कपूर। लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को अगीत संगीत का पिटारा जो है वो यूं ही खुलता रहेगा। श्रोताओं लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर।

शोध एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे वेड़ियो जो कि सचिन कपूर। बहुत बहुत स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का, हार्दिक अभिनंदन है श्रोताओं। हिमाचल प्रदेश अगली जानकारी की ओर लेके चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के CBSE से सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में पढ़ने वाले 9वीं और 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अहम बदलाव किया गया है श्रोतम। शिक्षा निर्देशालय ने निर्देश जारी कर कहा है कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 से इन दोनों कक्षाओं की प्रथम और द्वितीय टर्म परीक्षाएं अब संबंधित स्कूल स्वयं आयोजित करेंगे। साथ ही श्रोतम इन कक्षाओं के विद्यार्थियों की लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स भी अब हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड को नहीं भेजी जाएगी बल्कि सीधे CBSE पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। श्रोतों शिक्षा निर्देशालय द्वारा जारी आदेशों के तहत ये व्यवस्था CBSE की परीक्षा उप विधियों और नए पाठ्यक्रमों के अनुसार लागू की जा रही हैं। कक्षा 11वीं की परीक्षाएं पूरी तरह स्कूल स्तर पर जो है वो लागू की जा रही है। श्रोतों जानकारियों का सिलसिला, जानकारियों का पिटारा आश्रोतों यूं ही चलता रहेगा। बने रहिएगा वेड़ी गुंजन धर्मशाला के साथ और लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को इस प्यारे से गीत की ओर। यही होता प्यार है क्या।

श्रोतो एफ एम 91.2 MHz पर रेडियो इंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे रेडियो जो कि सचिन कपूर। पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में। आइए श्रोतो लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को इस प्यारे से गीत की ओर।

श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और अब वक्त हो गया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला में एक छोटे से अंतराल का।

आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: सचू ने
2: 5 यूट्यूब वीडियो को लाइक करके 5 लोगों को स्क्रीनशॉट भेजने से पर वीडियो 500 रुपए अर्न करे।
1: क्या बात कर रहे?
2: हाँ देख,
1: तुझे क्या लगता है ये जेन्यून है?
2: अरे हमें कहाँ पैसे देने हैं, ट्राई करके देखते हैं ना। ला देख। अरे हाँ यार, मुझे 500 रुपए मिल गए। इतने से ये जेन्यून है?
1: अरे अब तो मुझे भी ये करना है।
2: 20,000 रुपए में प्राइम मेंबरशिप लेने से 50,000 तक अर्न कर सकते हैं।
3: क्या बात है यार।
4: अरे ठहरो, ये क्या करने जा रहे हो?
2: ऑनलाइन टास्क से पैसे कमा रहे हैं।
4: अननोन लिंक पर क्लिक करके पैसे देकर ऐसा नहीं करना चाहिए। SMS, WhatsApp, ईमेल या टेलीग्राम पर आने वाले किसी भी अननोन लिंक को क्लिक ना करें। कोई भी अजनबी अगर आपको ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करने के लिए कहें तो उसे बिल्कुल भी डाउनलोड ना करें। ऑनलाइन टास्क के जरिए ज्यादा पैसा कमाने के लालच देने वाले विज्ञापनों से दूर रहें। सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बिना पूरी जानकारी के कोई भी वित्तीय लेन देन ना करें और उनकी लालच भरी बातों में तो बिल्कुल ना फंसें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में।
5: अब उठो, देश के भाग जगाने हैं आपको। निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं आपको। अब कोना कोना जगमग जगमग होना ही है। अब ठान के मुद्दे स्वच्छता की ज्योत जागी रहे। स्वच्छता की ज्योत जागी रहे।

0: कुछ दूं पर एचआईवी कभी न दूं।
1: अगर आप मां बनने वाली हैं तो एचआईवी टेस्ट जरूर करवाएं। सरकारी अस्पताल के आईसीटीसी में सलाह और एचआईवी टेस्ट मुफ्त है और गोपनीय भी। बच्चे को एचआईवी से बचाने के लिए जल्द पता लगाना और वक्त पे दवाई दिलवाना जरूरी है।
2: एक कदम जिंदगी की ओर।
3: जितनी होशियारी करनी है कर लो, जितनी चालाकी करनी है कर लो, जितनी बेईमानी करनी है कर लो, जितनी फरेबी चाल चलनी है चल लो, लेकिन याद रखना जब तुम्हारा कर्म तुम्हारे पास लौट कर आए तो उस समय हैरान मत होना, उस समय परेशान मत होना, उस समय घबराना मत, क्योंकि जो आपने किया है अगर छल किया है, कपट किया है, किसी के साथ गलत व्यवहार किया है, तो वो कई गुना होकर आपके पास जब लौटेगा उस समय आश्चर्य मत करना, क्योंकि कर्म की अदालत में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। जैसा किया है वैसा भोगना ही पड़ेगा। कर्म के सिद्धांत को कोई बदल नहीं सकता। जय बिहारी जी।

0: अरे भैया ये आप सबने हेलमेट क्यों पहना है? ये तो बाइक वाला हेलमेट है ना।
1: अब आप नहीं पहन रहे तो सोचा हम ही पहन लेते हैं।
2: असलियत में हेलमेट किसको शोभा देता है ये तो सबको पता है। बाइक चलाते वक्त सर बचाएं, हेलमेट पहने। वेयर अ हेलमेट ऑलवेज बिकॉज हेलमेट सेव्स।
3: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: क्यों सुबह से मुंह फुला के घूम रही है ये?
6: मेरी बीवी को पता चल गया मैं किसी और से प्यार करता हूँ।
5: किससे?
6: वो मुझे भी नहीं पता, वो बस इसे ही पता है, रात को सपने में देखा था ना।

श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला, और अब आप सुनेंगे वेड़ी गुंजन धर्मशाला में प्रादेशिक समाचार कुछ ही देर में। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

0: बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की। निवेश अनुकूलता सूचकांक में हिमाचल प्रदेश ने पर्वतीय और उत्तर पूर्वी राज्यों में हासिल किया तीसरा स्थान। प्रदेश में जल शुद्धिकरण व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए लागू होगी 2000 करोड़ रुपए की व्यापक योजना। कांग्रेस सरकार की कथित जन विरोधी नीतियों के खिलाफ भाजपा अगले माह शुरू करेगी बड़ा जन आंदोलन। और प्रदेश में वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी, अगले 48 घंटों में कुछ जिलों में वर्षा का येलो अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार द्वारा मांगे स्वीकार किए जाने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी CJP ने आंदोलन समाप्त करने की घोषणा कर दी है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज CJP प्रतिनिधिमंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता की, जिसमें परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों से संबंधित मुख्य मांगों पर चर्चा की गई। नड्डा ने कहा कि CJP की इस मांग को स्वीकार कर लिया गया है कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं की जाएगी।
1: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो, और अगर है तो वो विड्रॉ हो, और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं, उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
0: आत्महत्या करने वालों को मुआवजे के मुद्दे पर नड्डा ने कहा कि सरकार नियमों और विनियमों के अनुसार अधिकतम मुआवजा सुनिश्चित करेगी। इस बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री को भेजे त्याग पत्र में धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि उन्होंने त्याग पत्र इसलिए दिया ताकि जंतर मंतर और देश में जो वर्तमान स्थिति बनी है उसका राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सकें। हिमाचल प्रदेश में निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में पर्वतीय और उत्तर पूर्वी राज्यों में तीसरा स्थान हासिल किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ये उपलब्धि राज्य सरकार द्वारा व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देने और निवेशकों का विश्वास मजबूत करने के लिए किए गए प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने लगातार बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान पर विशेष बल देते हुए व्यापार सुगमता को बढ़ावा दिया है। वहीं उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि ये उपलब्धि राज्य सरकार द्वारा निवेश पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए किए गए प्रयासों की महत्वपूर्ण मान्यता है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि जल शक्ति विभाग में इस वित्त वर्ष में 4000 पद भरे जाएंगे। ऊना जिले में हरोली के पालकवाह में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकार विभाग को सुदृढ़ बनाने सहित युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने पर विशेष जोर दे रही है। अग्निहोत्री ने बताया कि प्रदेश में पेयजल की गुणवत्ता सुधारने और जल शुद्धिकरण व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए करीब 2000 करोड़ रुपए की व्यापक योजना लागू की जाएगी। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि अगले वर्ष से जल शक्ति विभाग में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित करने की परंपरा शुरू की जाएगी। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि शिमला जिले में सुन्नी पेयजल योजना का 95% कार्य पूरा हो चुका है। उन्होंने आज सुन्नी में एक कार्यक्रम में बताया कि अगले एक माह के भीतर ये योजना जनता को समर्पित कर दी जाएगी। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि क्षेत्र में कई सड़कों का निर्माण कार्य प्रगति पर है और सुन्नी बस डिपो को 10 नई इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध करवाई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि सुन्नी लुहरी सड़क के विस्तारीकरण का कार्य जल्द पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विदेश से MBBS करने वाले स्नातकों की इंटर्नशिप अवधि एक वर्ष करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने COVID-19 महामारी में उत्पन्न अपरिहार्य परिस्थितियों के चलते ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से अध्ययन करने वाले स्नातकों को एक वर्ष की इंटर्नशिप की अनुमति प्रदान करने के भी निर्देश दिए हैं। शिमला में आज एक बैठक में उन्होंने कहा कि सरकार प्रभावित विद्यार्थियों की चिंताओं का समाधान निष्पक्ष, व्यावहारिक और छात्र हितैषी दृष्टिकोण के साथ करेगी। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि जन समस्याओं का समयबद्ध निपटारा करना सरकार की प्राथमिकता है। घुमारवीं में जन सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार न केवल जन समस्याओं को गंभीरता से सुन रही है बल्कि इनके त्वरित समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं। धर्माणी ने अधिकारियों से कहा कि जनहित से जुड़े कार्यों में कोताही स्वीकार नहीं की जाएगी। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्सेंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। भाजपा ने प्रदेश कांग्रेस सरकार के खिलाफ आगामी अगस्त महीने से बड़ा जन आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया है। शिमला में आज हुई एक बैठक के बाद प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस सरकार की कथित जन विरोधी नीतियों के विरोध में भाजपा मंडल स्तर से लेकर राज्य स्तर तक जन आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा विभिन्न मुद्दों को जनता के बीच ले जाएगी और सरकार से जवाब मांगा जाएगा।
2: जन आंदोलन मंडल स्तर से प्रारंभ किया जाएगा। जो जन विरोधी निर्णय तालाबंदी की गई है स्कूलों की, कॉलेजेस की, अस्पतालों की, पीएचसीज की, उन तालाबंदी को लेकर, जनता के मुद्दों को लेकर जन आंदोलन हो, सड़कों की दुर्दशा को लेकर, बिजली पानी के बढ़े हुए बिलों को लेकर, और 3.5-4 साल में जनता को परेशान करने का काम वर्तमान सरकार ने किया है, तो जनता के मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी अगस्त के महीने से और निरंतर जन आंदोलन करेगी।
0: इस अवसर पर विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि चुनावी वायदे पूरा न कर कांग्रेस सरकार ने जनता को निराश किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है और विकास कार्य पूरी तरह ठप हुए हैं।
3: आगे बढ़ने के लिए सरकार सुनी जाती, लेकिन यहाँ आगे बढ़ने की बात तो छोड़िए, सारे काम जो चले हुए थे सारे के सारे बंद कर दिए गए हैं, और उन तमाम मुद्दों को लेकर के चाहे झूठी गारंटियां दी है, उन गारंटियों को भी एक्सपोज करने का, जब ये हमारा कार्यक्रम हमारा जन आंदोलन का होगा वो भी शुरू होगा, और उसके अतिरिक्त जो भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांग दी, जन विरोधी फैसले, टैक्स पर टैक्स लगाते हुए जो हमारे प्रदेश की जनता के ऊपर जो है जिस प्रकार से बोझ लाद दिया, उन तमाम मुद्दों को लेकर के हम बात करने वाले।
0: जयराम ठाकुर ने कहा कि पंचायती राज और नगर निकाय चुनावों में जनता ने परिवर्तन की शुरुआत कर दी है और भाजपा इस जनादेश को अंजाम तक पहुंचाएगी। स्थानीय निधि लेखा समिति की बैठक समिति के सभापति संजय रतन की अध्यक्षता में आज शिमला स्थित विधानसभा परिसर में हुई। इस बैठक में ठियोग में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति छात्रावास भवन निर्माण को लेकर चर्चा की गई। समिति ने शिक्षा विभाग को 1 माह के भीतर छात्रावास भवन निर्माण के लिए भूमि का चयन कर इसे हिमुडा को सौंपने के निर्देश दिए हैं। समिति ने हिमुडा को इस भवन का निर्माण अपने संसाधनों से 1 वर्ष के भीतर करने को कहा है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने पिछले कल उदयपुर किलाड़ सड़क मार्ग पर कड़ू नाले के समीप हुई सड़क दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। शोक संदेश में उन्होंने मृतकों के परिजनों से गहरी संवेदना जताई है। पठानिया ने आम लोगों से बरसात के मौसम में अनावश्यक यात्राओं से बचने और एहतियात बरतने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 136वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी व दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर मन की बात कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसके अलावा AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना व प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। प्रदेश के अधिकांश भागों में मॉनसून सक्रिय बना हुआ है। इसके प्रभाव से वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है। कांगड़ा जिले में हाल ही में हुई मूसलाधार वर्षा व बादल फटने की घटनाओं से अब तक करीब 80 करोड़ रुपए के नुकसान का प्रारंभिक आकलन किया गया है। उपायुक्त हेमराज बैरवा ने बताया कि सभी विभागों को राहत व पुनर्बहाली के कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान कुछ जिलों में वर्षा का

अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार द्वारा मांगे स्वीकार किए जाने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की। निवेश अनुकूलता सूचकांक में हिमाचल प्रदेश ने पर्वतीय और उत्तर पूर्वी राज्यों में हासिल किया तीसरा स्थान। प्रदेश में जल शुद्धिकरण व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए लागू होगी 2000 करोड़ रुपए की व्यापक योजना। कांग्रेस सरकार की कथित जन विरोधी नीतियों के खिलाफ भाजपा अगले माह शुरू करेगी बड़ा जन आंदोलन। और प्रदेश में वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी, अगले 48 घंटों में कुछ जिलों में वर्षा का येलो अलर्ट। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।

नहीं मरना गवारा प्यार में, तुमसे ये कहना है, तुम्हें भी जिंदा रहना है, मुझे भी जिंदा रहना है।

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख

0: भी साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड में फंस जाना तो कॉल 1930 पर लगाना। ऑनलाइन होने वाले धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड से पीड़ित होने पर गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिकृत वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।
1: पवन आ गया।
2: पवन वहाँ क्यों बैठा है?
1: पता नहीं, टीवी है।
2: और भाई लास्ट बेंच का मजा अकेले अकेले।
3: पता है ना मुझे टीबी है।
2: चल चल, तुझे पता है ना इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी के दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा?
4: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें।
5: सुनो, तुम्हारे पास 5,000 रुपए पड़े हैं?
6: 5,000? मेरे पास 500 रुपए नहीं है, तुम 5,000 पूछ रहे हो?
5: Oh, no. देख लो कहीं थोड़े बहुत पड़े हो।
6: तुमने दिए कभी जो थोड़े बहुत कहीं पड़े होंगे?
5: किचन के किसी डब्बे वब्बे में छुपाए हो या किसी कपड़े के नीचे?
6: तुम्हें सच में लगता है मैं तुमसे पैसे छुपाती हूँ? अरे नहीं है यार मेरे पास पैसे।
5: कसम खाओ।
6: कसम से मेरे पास 1 रुपया नहीं है।
5: तो फिर ये ड्रेसिंग टेबल के कपड़े के नीचे 5,000 किसने रखा? मेरा ही होगा लगता, रख के भूल जाऊंगा ना। अब तुमने तो कसम खाई है, तुम्हारे तो है नहीं। मेरे ही होंगे इस घर में और रहते ही कौन है।
7: भारी मिस्टेक हो गया सर।
6: नहीं मतलब तुम्हारे ही होंगे।
8: गजब टूबी वाला।

नमस्कार। 91.5 ओमेगा हर्ट्स पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। अब आप सभी सुनेंगे आज का ये खास समाचार बुलेटिन रुचिका के साथ। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पर। एक माह में केवाईसी नहीं कराई तो रुक जाएगी सामाजिक सुरक्षा पेंशन। विदेशों में रोजगार के लिए शुरू किए जाएंगे विदेशी भाषा के कोर्स। निवेशकों की पसंद बन रहा हिमाचल पहाड़ी राज्य में तीसरा स्थान। देश में बनेंगे 3 बड़े केमिकल पार्क। 3030 करोड़ की योजना मंजूर। बीबीजी रामजी कानून लागू। 60 दिनों के पीक कृषि सीजन में बंद रहेंगे सभी सरकारी कार्य। अब समाचार विस्तार से।

सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रहे लाभार्थियों को आधार आधारित ई केवाईसी कराने के लिए एक माह का अंतिम अवसर दिया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अवधि में सत्यापन नहीं कराने वाले लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए पात्र नहीं माना जाएगा और पेंशन लाभ प्रभावित हो सकता है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने जुलाई 2025 में जिला और तहसील कल्याण अधिकारियों के माध्यम से ई केवाईसी अभियान शुरू किया था। पहले इसकी अंतिम तिथि 28 फरवरी 2026 तय की गई थी। विभाग के अनुसार जिन लाभार्थियों का सत्यापन अभी शेष है उन्हें एक माह के भीतर संबंधित तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय में पहुंचकर ई केवाईसी पूरी करनी होगी। प्रदेश सरकार ने हिमाचल के युवाओं को विदेशों में रोजगार के अवसर बढ़ाने की पहल की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश भवन एवं अन्य सनिर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की विदेशी भाषा के कोर्स शुरू करने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए। राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश राज्य के जरिए युवाओं इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम रही है। युवाओं को भाषा कौशल के लिए नए विदेशी कोर्स शुरू होंगे। सुक्खू ने कहा कि सरकार विदेशों में कार्यरत हिमाचली युवाओं की सुरक्षा और कल्याण के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी विकसित कर रही है। हिमाचल अब केवल पर्यटन और प्राकृतिक सौंदर्य का प्रदेश नहीं रहा बल्कि निवेश की राष्ट्रीय दौड़ में भी अपनी मजबूती उपस्थिति दर्ज कराने लगा है। नीति आयोग के पहले इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026 में हिमाचल प्रदेश ने पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी में तीसरा स्थान हासिल कर ये संकेत दिया है कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद राज्य निवेशकों के लिए भरोसेमंद और आकर्षक गंतव्य बन रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में तीन बड़े केमिकल पार्कों की स्थापना के लिए 3030 करोड़ रुपए की एक नई योजना को मंजूरी की घोषणा की। इसके जरिए भारत को रसायन क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक में भारत औद्योगिक अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की विकास योजना रसायन भव्य रसायन को मंजूरी दी गई। ग्रामीण विकास विभाग ने नई दिल्ली के 1 जुलाई 2026 के आदेश के तहत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को आधिकारिक रूप से समाप्त करते हुए प्रदेश में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण यानी बीबीजी रामजी एक 2025 लागू कर दिया है। नए कानून की धारा 6(1) और 6(2) के तहत अब वित्त वर्ष में 60 दिनों के पीक कृषि सीजन के दौरान इस योजना के तहत कोई भी सरकारी कार्य नहीं होगा। इस कदम का मुख्य उद्देश्य खेती के समय किसानों को आसानी से खेतिहर मजदूर उपलब्ध करवाना है ताकि कृषि कार्य में कोई बाधा न आए। उपमंडल धीरा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के 11 और सहायिकाओं के 28 रिक्त पदों को साक्षात्कार के माध्यम से भरा जाएगा। इच्छुक पात्र उम्मीदवार सादे कागज पर सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों के सत्यापित प्रतियों के साथ अपने आवेदन 18 अगस्त 2026 तक जमा करवा सकते हैं। साक्षात्कार 21 अगस्त 2026 को प्रातः 10 बजे

विश्वविद्यालय कटरा में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय श्री महाराजा रणवीर सिंह परिसर जम्मू तथा श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 4 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी शक्ति मीमांसा के शुभारंभ सत्र को संबोधित किया। संगोष्ठी का विषय 51 शक्तिपीठ भारतीय विरासत के आध्यात्मिक स्तंभ था। राज्यपाल ने कहा कि शक्ति केवल आराधना का विषय नहीं बल्कि सृजन ज्ञान करुणा साहस और राष्ट्र चेतना की शाश्वत ऊर्जा है। भारतीय दर्शन में शक्ति संपूर्ण सृष्टि की मूल प्रेरक शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित है। उनका कहना है कि शक्तिपीठ सदियों से भारत की सांस्कृतिक एकता को सुदृढ़ करते आए हैं और ये केवल पूजा अर्चना के स्थल नहीं बल्कि भारतीय कला स्थापत्य साहित्य संगीत और लोक परंपराओं के महत्वपूर्ण केंद्र भी हैं। सीबीएसई से संबद्ध सरकारी स्कूलों में 9वीं और 11वीं कक्षा की टर्म परीक्षाएं स्कूल स्तर पर आयोजित होंगी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए उपनिदेशकों को सूचना भेजी है। निर्देशों के अनुसार ये परीक्षाएं सीबीएसई के नवीनतम व स्वीकृत पाठ्यक्रम तथा प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृत वार्षिक शैक्षणिक कैलेंडर के अनुरूप आयोजित की जाएंगी। ये व्यवस्था सीबीएसई परीक्षा उपविधियों के अध्याय 7 क्लॉज 37(2) के अनुसार लागू होंगी, जिसमें कक्षा 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं विद्यालय स्तर पर आयोजित करने का प्रावधान है। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा का अधिकार कानून के तहत किए गए नए संशोधनों को अब प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में लागू किया जाएगा। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी जिला उपनिदेशकों को राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन हिमाचल प्रदेश प्रथम संशोधन नियम 2026 को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। निदेशालय की ओर से जारी पत्र में बताया गया है कि 11 जुलाई 2026 को प्रदेश सरकार के शिक्षा सचिव द्वारा अधिसूचित संशोधित नियमों की प्रति सभी जिलों को भेज दी गई है। जिला उपनिदेशकों से कहा गया है कि वे इन संशोधित नियमों का अच्छी तरह अध्ययन कर और अपने अधीन आने वाले सभी स्कूलों के प्रधानाचार्यों मुख्य अध्यापकों तथा खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी करें। इसी के साथ आज का ये खास समाचार बुलेटिन यही समाप्त होता है। धन्यवाद।

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा

बेटा, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: मुझे लगता है इस दुनिया में सबसे बड़ा दान ना पैसे का है, ना कपड़े का है, ना किसी चीज सामान का है। दुनिया में सबसे बड़ा दान है किसी दुखी को आप अपनी एक बात देकर के उसको खुश कर दो। आप उसके चेहरे पर प्रसन्नता लाओ और आप ऐसा कुछ कर दो जो उसके जीवन के दुख खत्म हो जाए। वो आपको देख करके कुछ समय के लिए भूल जाए कि वो कितना दुखी।

0: फिर भी साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड में फंस जाना तो कॉल 1930 पर लगाना। ऑनलाइन होने वाले धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड से पीड़ित होने पर गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिकृत वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।
1: पवन आ गया।
2: पवन वहाँ क्यों बैठा है?
1: जैसे टीवी है।
2: और भाई लास्ट बेंच को मजा अकेले अकेले।
3: पता है ना मुझे टीबी है।
2: चल चल तुझे पता है ना इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी की दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा?
4: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें।
5: सुनो तुम्हारे पास 5,000 रुपए पड़े हैं?
6: 5,000? मेरे पास 500 रुपए नहीं है। तुम 5,000 पूछ रहे हो?
5: Oh, no. देख लो कहीं थोड़े बहुत पड़े हो।
6: तुमने दिए कभी जो थोड़े बहुत कहीं पड़े होंगे?
5: किचन के किसी डब्बे वब्बे में छुपाए हो या किसी कपड़े के नीचे?
6: तुम्हें सच में लगता मैं तुमसे पैसे छुपाती हूँ? अरे नहीं है यार मेरे पास पैसे।
5: कसम खाओ।
6: कसम से मेरे पास 1 रुपया नहीं है।
5: तो फिर ये ड्रेसिंग टेबल के कपड़े के नीचे 5,000 किसने रखा? मेरा ही रहेगा लगता, रख के भूल जाऊंगा ना। अब तुमने तो कसम खाई है, तुम्हारे तो है नहीं। मेरे ही होंगे इस घर में और रहते ही कौन है।
7: भारी मिस्टेक हो गया सर।
6: नहीं मतलब तुम्हारे ही होंगे।
8: गजब डूबी बाजा।

नमस्कार दोस्तों, ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला 91.2 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका, हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मन पसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों आप सभी, गीत सुहाने नए पुराने। इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: मुझे लगता है इस दुनिया में सबसे बड़ा दान ना पैसे का है, ना कपड़े का है, ना किसी चीज सामान का है। दुनिया में सबसे बड़ा दान है किसी दुखी को आप अपनी एक बात देकर के उसको खुश कर दो। आप उसके चेहरे पर प्रसन्नता लाओ और आप ऐसा कुछ कर दो जो उसके जीवन के दुख खत्म हो जाए। वो आपको देख करके कुछ समय के लिए भूल जाए कि वो कितना दुखी।

0: टीबी है।
1: चल चल, तुझे पता है ना, इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी के दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा?
2: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें।
3: सुनो, तुम्हारे पास 5,000 रुपए पड़े हैं?
4: 5,000? मेरे पास 500 रुपए नहीं है, तुम 5,000 पूछ रहे हो?
3: Oh, no. देख लो, कहीं थोड़े बहुत पड़े हो।
4: तुमने दिए कभी जो थोड़े बहुत कहीं पड़े होंगे?
3: किचन के किसी डब्बे वब्बे में छुपाए हो या किसी कपड़े के नीचे?
4: तुम्हें सच में लगता है मैं तुमसे पैसे छुपाती हूँ? अरे नहीं है यार मेरे पास पैसे।
3: कसम खाओ।
4: कसम से मेरे पास 1 रुपया नहीं है।
3: तो फिर ये ड्रेसिंग टेबल के कपड़े के नीचे 5,000 किसने रखा? मेरा ही होगा लगता, रख के भूल जाऊंगा ना। अब तुमने तो कसम खाई है, तुम्हारे तो है नहीं। मेरे ही होंगे इस घर में, और रहते ही कौन है?
5: भारी मिस्टेक हो गया सर।
4: नहीं मतलब तुम्हारे ही होंगे।
6: गजब टूबी बाजा।

गुंजन रेडियो घर घर पहुंचाए आपकी आवाज, बने आपका अपना रेडियो। हम सबका यही है प्रयास, दुनिया के किसी भी कोने में रहें आप सुन सकते हैं गुंजन रेडियो की आवाज। सो स्टे ट्यून्ड विद रेडियो गुंजन 91.2 FM।

ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्म शाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दो शशि के साथ।

हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।